100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि और विक्रम संवत 2083, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, तदनुसार 19 जून 2026। सुबह के 5:55 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

हर सुबह होती है एक नई शुरुआत, जब हर किरण एक नई आशा लेकर आती है, और जब सुबह का ये शुभ क्षण ईश्वर स्मरण से आरंभ हो तो जीवन की हर दिशा में शांति, शक्ति और सकारात्मकता अपने आप उतर आती है। तो आइए ऐसे में हम अर्पित करें अपने इष्ट, अपने आराध्य के चरणों में भावों के वो पुष्प जो हम लेकर आए हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि के माध्यम से। और इसमें आज आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त सुस्मित, 100.7 FM रेनबो पर। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रथम सुपूजित भगवान श्री गणेश की इस वंदना के साथ।

सुबह की पहली किरण जब नील गगन को छूती है तो हर दिशा में एक अद्भुत चेतना जागृत हो उठती है। ऐसे में श्रद्धा से भरा मन पुकारता है भगवान भोलेनाथ को, जिनके नाम मात्र से ही बंधन टूटते हैं, भय मिटता है और जीवन में आशा की रोशनी भर जाती है। तो आइए उन्हें जगाते हैं अपने प्रेम से, अपने स्वर से, और अर्पित करते हैं ये भावपूर्ण आराधना।

जब मन कहता है मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, वहीं से शुरू होती है सच्ची भक्ति। वास्तव में भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी दिखावे, किसी प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भगवान तो चाहते हैं बस सच्चे भाव अपने भक्तों से। तो आइए सच्चे मन से पुकारें ऐसे प्रभु को।

ईश्वर की महिमा जितनी अपरंपार है, उतनी ही सरल है उनसे जुड़ने की राह। जिसने एक बार मन से पुकारा, प्रभु ने उसकी झोली भर दी। तो आइए हम भी अपनी अंतरात्मा की आवाज को ईश्वर के चरणों में अर्पित करें इस भजन के साथ।

मन को आत्मिक सुख देने वाले प्रभु के नाम का सुमिरन करते रहिए 100.7 FM रेनबो पर कार्यक्रम पुष्पांजलि के माध्यम से। और इस कार्यक्रम में आज मैं सुस्मित हूं आपके साथ। आइए जुड़ते हैं एक और भक्तिमय प्रस्तुति से।

जब जीवन के रास्ते उलझ जाएं, जब मन असमंजस में घिर जाए और जब कोई राह न सूझे, तो ईश्वर का नाम ही सहारा बनता है। भवसागर से पार लगाने वाले, मन की पीड़ा को हर लेने वाले प्रभु नाम की महिमा ही कुछ ऐसी है जो हर बिगड़ी को संवारने की ताकत रखती है।

हम सबके जीवन में कई बार पहाड़ों जैसी विपत्तियां आती हैं और मन ऐसे में घबरा उठता है कि हम इससे कैसे पार पाएंगे, क्या होगा हमारा, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जब ईश्वर साथ हो तो हर शिखर एक साधना बन जाता है, हमें एक संबल मिलता है प्रभु का, प्रभु की शक्ति का, और हर अंधकार प्रकाश से भर उठता है, हमारे लिए राहें आसान हो जाती हैं। उन पहाड़ जैसी विपत्तियों से पार पाना हमें आसान लगने लगता है और हम सहजता से आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए हमें सदैव अपने सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए।

भक्ति भाव, ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और निस्वार्थ समर्पण का हृदय से किया गया अनुभव है। ये केवल पूजा पाठ या कर्म कांड तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वो आंतरिक अवस्था है जो हमें निरंतर सकारात्मकता और शांति प्रदान करती है। आध्यात्मिक साधना और भक्ति का मूल उद्देश्य हमारे मन से स्वार्थ, अहंकार और कपट को मिटाकर प्रभु की कृपा और आत्मिक शांति प्राप्त करना है। और इसी कामना के साथ हम ध्यान कर रहे हैं ईश्वर का

दोस्तों, आप सुन रहे थे भक्ति भाव में डूबी पुष्पांजलि, जहां इस भक्ति भरे संग में हमने अपने मन को शांत किया, आत्मा को छू लिया और उस परम शक्ति को याद किया जिसने हमें जीवन का सबसे सुंदर उपहार दिया। तो प्रभु की कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ अब मुझे यानी सुस्मित को अनुमति दीजिए कार्यक्रम पुष्पांजलि से। अब से थोड़ी देर में होंगे समाचार और उसके बाद हम मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम सदाबहार गीत में। तो बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर आ रहा है ये अंतिम प्रस्तुति के रूप में भजन।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: 102.2 FM पर आप कनेक्ट हो चुके हैं FM रेनबो कानपुर के साथ।

Well, you are enjoying soulful melodies with me, RJ Lakshmi. And before we continue in Good Morning Kanpur, jaan lete hain what's coming up in today's program. So, 8:30 पर आप enjoy करेंगे old melodies शुरू की पुरानी महफिल program में. 9:00 हम लेकर आएंगे प्रोग्राम रस बहार, जिसमें आज बातें होंगी यादों की, उन पुरानी गलियों की. नौ बजकर 9:45 पर आज सजेगी महफिले कव्वाली और 11:00 हम लौटेंगे अपनी दोस्त और को होस्ट आरजे वंदना के साथ प्रोग्राम हम नवा लेकर. दिन में 3:00 आप एंजॉय करेंगे म्यूजिकल प्रोग्राम म्यूजिकल एंड 3:45 का समय होगा हेल्थ मैगजीन का, जिसमें डॉक्टर प्रवीण कटियार से बातचीत करेंगी दीप शिखा गुप्ता. विषय है एनीमिया. और 4:00 आप सुनेंगे अपनी पसंद के सॉन्ग प्रोग्राम आपकी पसंद में. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज रेनबो कानपुर प्रोग्राम्स. नाउ वी आर बैक विद गुड मॉर्निंग कानपुर.

And before we dive into today's update, share karte hain thought of the day. Gautam Buddha said, "Never say sorry for being honest. Maturity is learning to walk away from people and situation that threaten your peace of mind, self-respect, values, morals, and self-worth." ईमानदार होने के लिए कभी माफ़ी मत मांगिए। समझदारी इसी में है कि उन लोगों और हालातों से दूर हो जाएं जो आपकी मानसिक शांति, आत्मसम्मान, मूल्यों, नैतिकता और खुद की अहमियत के लिए खतरा हों।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पहला नशा, पहला खुमार।
4: हाय, दिस इज उदित नारायण, यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट को।
5: वेल गाइस, यू आर एंजॉयिंग गुड मॉर्निंग कानपुर। चलिए

ये डालते हैं एक नजर, व्हाट इज ट्रेंडिंग अक्रॉस सोशल मीडिया। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया कि आने वाली जनरेशन स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध बने, प्राकृतिक खेती इस दिशा में एक प्रभावी माध्यम बन सकती है। प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन एवं अन्नदाता किसानों को नवीनतम तकनीक से जोड़ने हेतु कल कानपुर में आयोजित प्राकृतिक खेती कार्यशाला 2026 कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों को सम्मानित किया। एंड पीएमओ इंडिया एक्स हैंडल पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री प्रताप राव ने शेयर किया कि कैसे पुराने ग्रंथों से लेकर दुनिया भर में पहचान बनाने तक योग ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में अपनी जड़ें जमाए रखते हुए सीमाओं को पार किया है। आज दुनिया भर में इसका जश्न इस हमेशा रहने वाली परंपरा की नई तारीफ दिखा रहा है। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ड्यूरिंग वीवा टेक 2026 इन पेरिस एक्स हैंडल पर शेयर किया कि फॉर इंडिया एआई मींस ऑल इंक्लूसिव।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्वनामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
2: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।
3: तब तक जहां वे सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहां वे मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू।
4: Well, you are tuned into Good Morning Kanpur on 102.2 FM Rainbow Kanpur, and I'm your radio host RJ Lakshmi. And social media buzz reflect karta hai pulse of the present. Now let's travel back in time and see what history has to say about this date.

In 19 June 1910, the first Father's Day was celebrated in Washington on this day. 19 June 1947 को भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकन नॉवलिस्ट एंड नोबेल प्राइज लॉरिएट सलमान रश्दी का जन्म हुआ। June 1999 में ग्रुप 8 शिखर सम्मेलन कोलोन जर्मनी में शुरू हुआ। एंड 19 जून यानी आज वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड 19 जून यानी आज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जर्व किया जाता है।

0: आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।
2: Well, you are spending your morning with us only on 102.2 FM Rainbow Kanpur. Good morning, Kanpur. Enjoy kar rahe hain aap, and you know history is the greatest teacher. And national and international news tells us where we are heading.

सो इसे नेशनल न्यूज कहें या फिर इंटरनेशनल, ये हम आप पर छोड़ते हैं। इंटरनेशनल प्राइवर्सलीज आर्किटेक्चर एंड डिजाइन अवार्ड 2026 ने दुनिया के 7 मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स की लिस्ट में इंडिया के 2 एयरपोर्ट ने अपनी जगह बनाई। भारत का नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भारतीय संस्कृति के प्रतीक कमल की झलक के साथ हरे भरे ओपन एरियाज, नेचुरल लाइट और आधुनिक सुविधाओं के साथ भारतीय वास्तुकला की नई पहचान बनाया। वहीं गोपीनाथ बोरदोलोई गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पूर्वोत्तर भारतीय सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है और बांस से बना इंटीरियर इसकी सबसे बड़ी खासियत है। एंड स्थानीय कला, लोक कथाएं और स्थानीय शिल्प कौशल इसकी जीत में इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा। और 4 जुलाई को उत्तराखंड पहुंचेगा कैलाश मानसरोवर का पहला दल। हर दल में होंगे 50 श्रद्धालु। स्टे और भोजन से लेकर हर अरेंजमेंट की जिम्मेदारी संभालेंगे कुमायूं मंडल विकास निगम।

This is Good Morning Kanpur, only on 102.2 FM Rainbow Kanpur, and let's zoom in from the global stage. बात कर लेते हैं अपने कानपुर की. IIT कानपुर ने पहली बार 4 साल बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी कोर्स में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है. मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 12th पास स्टूडेंट्स 22 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

और अब आपको लेकर चलते हैं खेल के मैदान में एंड कैच अप विद द लेटेस्ट। मिडफील्डर मनप्रीत सिंह इंडिया के लिए सबसे ज्यादा हॉकी मैचेस खेलने वाले प्लेयर बन गए हैं। जर्मनी के अगेंस्ट उन्होंने 413वां मैच खेला। एंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप में स्मृति मंधाना मेंस एंड विमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 चौके पूरे करने वाली पहली बल्लेबाज बनी।

वेल डन मंदाना, वी आर रियली रियली प्राउड ऑफ यू। एंड साथ ही इंडिया के लिए सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।

वेल गाइस, हम आ पहुंचे हैं लास्ट सेगमेंट वेदर फोरकास्ट में और कानपुर इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस अ वार्म डे टुडे। और आपको बता देते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी 5 दिनों में हल्के बादल छाए रहने के आसार हैं, किंतु वर्षा की कोई भी संभावना नहीं है तथा लू का प्रकोप भी जारी रहने के आसार हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर है 39.6 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम टेम्परेचर होने वाला है 27.4 डिग्री सेल्सियस।

गुड मॉर्निंग कानपुर में टाइम वाइंड अप का, कीप स्माइलिंग, स्टे पॉजिटिव एंड मेक टुडे काउंट. लक्ष्मी इज साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, टेक केयर.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है

0: भारतों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
0: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने सातवें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
3: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुनी

0: जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द है, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल कदम नहीं होंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important alongside trade.
7: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके, और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
6: मिस्टर मोदी फर्दर सेड द कंट्री इज इन्वेस्टिंग अक्रॉस सेक्टर्स दैट विल ड्राइव ग्रोथ, इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर जनरेशंस टू कम। Mr. Modi added that at the G7 meeting in Evian, he emphasized the importance of partnerships based on trust. He said India's message to the G7 summit was clear that global governance will only be effective when it is inclusive. Moreover, Mr. Modi said, he arrived in France when his government had completed 12 years and India has witnessed transformative growth across sectors in these years.
7: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
6: Earlier, the Indian community in France welcomed Prime Minister Modi with the message Bonjour Modi or Hello Modi and chants of Bharat Mata Ki Jai. Prime Minister Modi has left for New Delhi after concluding his successful and productive visit to Paris, marking the third leg of his two-nation visit to France and Slovakia. In a social media post, Mr. Modi said that the India-France friendship will become even stronger in the times to come as he concludes his visit to France. French President Emmanuel Macron also recorded a special farewell video message in Hindi for Prime Minister Modi as he was wrapping up his trip to France.
8: Priye Mitre Narendra, Mujhe Bahut Khushi, we aapka Nice, Evian, or Paris. Main isse saath re daure ke liye swagat karke France aur Bharat ki dosti amar rahe.

102.2 FM पर आप सुन रहे हैं FM रेनबो कानपुर। लीजिए करते हैं उस महफिल का आगाज जहां गूंजेगा शब्दों, भावनाओं और संगीत का मुकम्मल तालमेल, यानी प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल। आवाजें हैं बप्पी लहरी की और लिरिक्स इंदीवर के, म्यूजिक बप्पी लहरी का।

प्रोग्राम का अगला गीत आ रहा है फिल्म रफू चक्कर से, आवाजें हैं शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और लिरिक्स गुलशन बाबरा के।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए। आइए सुनते हैं योग प्रशिक्षक राहुल यदुवंशी से अतीक सिद्दीकी की बातचीत। विषय है जीवन में योग।
1: इनसे मिलिए कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को अतीक सिद्दीकी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, आगामी 21 जून को हम मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आज का हमारा विषय भी योग से संबंधित है, जीवन में योग। और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक राहुल यदुवंशी जी को, जो पिछले 10 वर्षों से योग संबंधी सेवाएं दे रहे हैं। तो राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज में।
2: सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। आकाशवाणी कानपुर का बहुत बहुत आभार।
1: राहुल जी, आप लोगों को योग सिखा रहे हैं, उनकी जीवन शैली बदल रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आपके जीवन में योग की शुरुआत कैसे हुई?
2: जी, आजकल के दौर में हर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति अवेयर होता है। जब मैं 17-18 साल की जब मेरी आयु थी, तो उस समय मैं थोड़ा सा क्या था कि मेरे अंदर एक अध्यात्म के प्रति रुचि थी, तो कुछ एक डायरेक्शन एक की कमी थी और थोड़ा सा एक विजन के तहत मतलब हम काम नहीं कर पाते थे। तो उस दौरान मैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से मिला और योग ध्यान की मेरे अंदर एक प्रेरणा जागृत हुई और मैंने अपने जीवन में योग को उतारा और मैंने अध्ययन किया। और अब मैं पिछले कई सालों से 10-12 वर्षों से इस योग ध्यान की विधि को, प्राचीन विधा को मैं आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूं और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत पूरे भारत देश में मैं काम कर रहा हूं।
1: जी, आशा है आप इस तरह लगातार काम करते रहेंगे और लोगों के जीवन शैली में बदलाव आएंगे। अब आप हमें ये बताइए आसान भाषा में कि योग क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या विशेष महत्व है।
2: जी,

0: बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है सर। योग का मतलब होता है कि जोड़ना।
1: जी
0: योग ये बहुत ही प्राचीन विधा है, पद्धति है। हमारा शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चेतना, ये सारा एक लयबद्ध हो जाए। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हम इसके अंतर्मुखी चेतना का हमारे विकास होता है, जागृत होती है, और मानसिक और शारीरिक रूप से योग हमारे जीवन में काम करता है।
1: जी अब मैं यह जानना चाहूँगा कि हमें योग को अपने जीवन शैली में शामिल क्यों करना चाहिए? आखिर क्यों करें हम लोग योग?
0: जैसा कि भारत सरकार और ये हम जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, तो विश्व के कई देशों ने इसको माना है, शामिल किया है। तो योग क्यों महत्वपूर्ण है? प्राचीन अगर देखा जाए तो इतिहास में जो वर्णन है, 5000 वर्ष पूर्व योग की जो प्राचीन विधाई चला आ रहा है, लेकिन अब इसकी एक अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ी है। तो जब लोगों ने इसका अनुभव किया है योग को, जो जैसा कि मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है, लोग भी इसको देख रहे हैं। अगर देखें तो हमारा बहुत सारी चीज़ें हैं, मानसिक रूप से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, शारीरिक रूप से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तनाव होता है। तो उसके लिए अगर हम अपने जीवन में थोड़ा सा अगर समय देते हैं, योग को अपनाते हैं, दैनिक दिनचर्या में अगर शामिल करते हैं, तो शारीरिक और मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहते हैं। इसके लिए सभी को योग करना चाहिए, ये मेरी सबसे अपील भी है।
1: जी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण योग को किस तरह से देखता है, अगर आप ये बताना चाहें?
0: जी बिल्कुल सही बात है। अगर साइंटिफिक तरीके से हम देखें तो इसका योग का रिसर्च भी हुआ है। जितने भी आसन है, अगर पतंजलि योग सूत्र में जितने भी आसन दिए गए हैं, तो उनका साइंटिफिक रिसर्च हुआ है। हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गेन्स पे ये सारे आसन काम करते हैं और वो बीमारियों के लिए भी फायदेमंद होते हैं। तो योग अपने आप में वैज्ञानिक है। अगर देखा जाए सारे आसन, प्राणायाम सारे वैज्ञानिक हैं, तो वो हमारे बॉडी पे अलग अलग ऑर्गेन्स पे काम करते हैं।
1: जी, इसीलिए योग दिवस को एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी दी गई है। मेरा अगला सवाल यह है कि अष्टांग योग क्या होता है?
0: जी जी बिल्कुल, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। और अष्टांग योग से ही, क्योंकि सारा जो योग है वो अष्टांग योग में ही समाहित है। इसके 8 लिम्स होते हैं, जैसा कि हम पहले उससे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये
1: जी
0: 8 लिम्स होते हैं। तो यम के भी 5 प्रकार होते हैं, फिर नियम के भी 5 प्रकार होते हैं। तो जब हम आसन से चलते हैं और समाधि तक की एक यात्रा होती है, रीच टू गो समाधि। तो योग को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें यम को फॉलो करना होता है, फिर नियम को फॉलो करना होता है, उसके बाद हम आसन पे आते हैं, फिर प्राणायाम पे आते हैं, फिर प्रत्याहार होता है, फिर धारणा होती है, फिर ध्यान होता है, उसके बाद हम समाधि की अवस्था में जाते हैं। तो इसका अगर हम और डीप में बात करेंगे तो ये बहुत ही मतलब विस्तृत प्रश्न है। तो संक्षिप्त शब्दों में यही है, समाधि की एक अवस्था में जाने के लिए यम से लेकर के समाधि तक की एक यात्रा है। तो उसके बीच में 8 लिम्स होते हैं, 8 अंग, 8 प्रकार के रूप में इसको अष्टांग योग को वर्णित किया गया है।
1: जी, क्या कोई विशेष समय होता है योग को करने का?
0: देखिए, सबसे पहले तो इस थोड़ा खाली पेट होना चाहिए, है ना। तो 2 से 2.5 घंटे का गैप बहुत आवश्यक है, अगर हम प्रॉपर योगाभ्यास और प्राणायाम कर रहे हैं तो। वैसे तो ऐसा कुछ समय नहीं निर्धारित है, रात में नहीं करना चाहिए। अगर प्रातःकालीन इसको करते हैं तो इसके थोड़े फायदे ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि एक हम वातावरण के साथ एक कनेक्ट हो पाते हैं। और वैसे अगर आपके पास नहीं समय है तो आप रात में ना करें, और शाम के समय या थोड़ा खाली पेट होना चाहिए, बस 2 से 2.5 घंटे का। वैसे तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि अगर प्रातःकालीन करते हैं आप, 5 बजे से लेकर 10 बजे तक अगर इसका अभ्यास करें तो ज़्यादा सुंदर रहेगा।
1: और क्या इससे भी कोई प्रभाव पड़ता है कि हम योग घर के अंदर कर रहे हैं या खुले आसमान के नीचे कर रहे हैं?
0: ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा क्या है कि एक स्वच्छ वातावरण का एक माहौल होना चाहिए, एक शांति का माहौल होना चाहिए, इसलिए उसको ऐसे बोला जाता है। बाकी आप अगर खुले में कर रहे हैं तो एक खुले वातावरण की एक वायु, एक ऊर्जा होती है, तो वो भी हमको मिलती है, वो भी हमारे जीवन मतलब शरीर पे उसका भी प्रभाव पड़ता है।
1: जी, और क्या किसी विशेष आयु वर्ग के, क्या बच्चे भी कर सकते हैं या बुजुर्ग कर सकते हैं, या सभी के लिए योग बराबर प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर?
0: जी, ये बिल्कुल सब भ्रांतियां हैं कि योग एक अवस्था के बाद करना चाहिए। अब तो देखा इतना ट्रेंड चल रहा है, किड्स योगा भी होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है। किसी भी आयु वर्ग के लिए, सबके लिए योग बहुत ही आवश्यक है। बच्चों के लिए तो और अच्छा होता है, अगर वो अल्पायु में इसका अभ्यास स्टार्ट कर देंगे तो उनका ब्रेन पावर और मेमोरी पे बहुत फर्क पड़ता है। उनका इंट्यूशन लेवल जो होता है, प्रज्ञा शक्ति होती है, वो बहुत बढ़ती है। उनका आईक्यू लेवल भी बढ़ता है अगर योग का अभ्यास शुरुआत करेंगे।
1: जी, हम इस इंटरेस्टिंग बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि आप हमारे

0: हमारे श्रोताओं को अपनी पसंद का कोई एक गीत सुनवा दें।
1: ठीक है, गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन योग पे चर्चा हो रही है तो मैं चाहूंगा कि जो एक केदारनाथ मूवी का एक गीत है
0: जी,
1: नमो नमो हे शंकराय, तो वो तो क्या है कि प्रकृति से हमको कनेक्ट करता है और नेचर के साथ हमें थोड़ा सा अध्यात्म की ओर भी ले जाने का, और यूथ के लिए काफी ट्रेंडी भी है
0: जी। आइए सुनते हैं योगाचार्य राहुल जी की पसंद का ये गीत।

0: सर हम बातचीत कर रहे थे योग के बारे में और योग से क्या फायदे हैं हमारे शरीर के लिए, क्या इससे कोई मानसिक फायदे भी होते हैं, मन मस्तिष्क या आत्मा की शांति के लिए भी क्या योग किया जाता है?
1: देखिए, जीवन में हम जो भी करते हैं वो शांति के लिए करते हैं, खुशी के लिए करते हैं, हैप्पीनेस के लिए करते हैं। तो जब हमारे हैप्पीनेस नहीं होती तभी हमारा उसका मन पे प्रभाव पड़ता है, तो तनाव आता है, एंजाइटी आता है, डिप्रेशन आता है। तो उन सारी चीज़ों के लिए अगर देखा जाए तो जो तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन है, उन्हीं की वजह से हमारे जो डायबिटीज़ है और जो ये लाइफ स्टाइल डिजीज होती हैं। तो योग जो प्राणायाम है, ध्यान है, ये सारी चीज़ें हैं, अगर इन प्रक्रियाओं को हम फॉलो करते हैं तो निश्चित और पे सबसे पहले हमारे मानसिक स्तर पे ही इसका प्रभाव पड़ता है।
0: जी, आजकल के दौर में हम देख रहे हैं कि लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, तनाव और व्यस्तता लोगों की बढ़ रही है, लोगों के शेड्यूल काफ़ी बिजी हैं, तो उनकी तनाव भरी ज़िंदगी के बीच में योग कितना कारगर साबित होता है उनके लिए?
1: मैंने तो इसका खुद भी अनुभव किया है और अब तक मैंने पूरे भारत में इसकी हजारों कार्यशालाएं भी ली हैं। मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ही मैंने वर्कशॉप ली हैं। तो मैंने देखा है कि विद इन 15 मिनट और 20 मिनट में प्राणायाम और ध्यान के बाद उनके मानसिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। और अगर इसका अभ्यास करेंगे, कुछ कुछ प्राणायाम के अभ्यास होते हैं, मेडिटेशन की जो टेक्निक्स होती हैं, तो अगर इनको हम लोग फॉलो करते हैं तो होल पूरा हमारे नर्वस सिस्टम पे इसका प्रभाव पड़ता है और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हम इससे स्वस्थ रहते हैं।
0: जी, हमें किन बेसिक आसनों से शुरुआत करनी चाहिए जो लोग नए हैं योग करना चाहते हैं? आसान से कुछ आसन बता दीजिए जो वो कर सकें।
1: देखिए, जो बिगनर्स लोग होते हैं अगर योग की शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले तो 21 जून का जो कॉमन योगा का जो प्रोटोकॉल है उसमें बहुत ही आसान से सिंपल से आसन है, उसका पीडीएफ जो

0: दिया हुआ है। तो अगर जिन्होंने योग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो वो देखिए, सबसे पहले बॉडी वार्म अप जो सूक्ष्म में जो व्यायाम होते हैं उनसे आप उसका प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद कुछ खड़े होने वाले जो आसन होते हैं, ताड़ आसन हो गया, हस्तपाद आसन हो गया, त्रिकोण आसन हो गया, वृक्षासन हो गया, इनकी आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार को भी इसको अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार जो एक सन सल्यूशन होता है वो होल बॉडी के लिए एक्सरसाइज होती है। इसके बाद कुछ लेटने वाले भी आसन होते हैं तो बहुत इफेक्टिव आसन होते हैं, तो मंडूक आसन हो गया, तो ये हमारे डायबिटीज पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। बाल आसन हो गया, चाइल्ड पोज हो गया, शशांक आसन हो गया, ये ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। और फिर इसके बाद प्राणायाम आता है, तो प्राणायाम में आप लोग कपाल भांति है, नाड़ी शोधन है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, इसको भी शामिल कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप जितना आपके पास समय है आधे घंटे या एक घंटे का अपने जीवन में इसको शामिल कर सकते हैं।
1: जी, 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाने वाले हैं उसके लिए आपका क्या संदेश है?
0: मेरी सबसे यही गुजारिश है, अपील है, निवेदन है कि 21 जून को तो हम लोग योग दिवस मना रहे हैं, बहुत सारा प्रचार प्रसार हो रहा है, तो योग केवल योग दिवस तक ही सीमित ना रहे, इसको हम अपने रूटीन में शामिल करें, अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करें, अपने जीवन में शामिल करें और अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, तभी ये हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक और मानसिक रूप से भी। और इस बार की जो थीम भी है कि स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए, तो हम जो एक आने वाला हमारा जो एक समय है, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ रही है, तो जब हम अभी से स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जो वृद्धावस्था होगी, आने वाला जो समय होगा, तो हम स्वस्थ तरीके से हम अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। तो मेरा सबसे अपील है, गुजारिश है सभी श्रोताओं से कि योग दिवस के अवसर पर ये हम संकल्प लें कि अपने जीवन में इसको उतारें, अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करें और अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।
1: जी, तो राहुल जी, आपने अपने अनुभव और ज्ञान से योग की बारीकियों को इतनी सहजता से समझाया और हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सभी को मेरा प्रणाम।
2: इनसे मिलिए कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे योग प्रशिक्षक राहुल यदुवंशी से अतीक सिद्दीकी की बातचीत। विषय था जीवन में योग।
3: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
4: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
3: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप, तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
4: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
3: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:15 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर। मेल मिलाप।

नमस्कार दोस्तों, जज्बातों के मुख्तलिफ रसों को बिखेरता रस बाहर लेकर हाजिर है आपकी आज लक्ष्मी। आज हम आपको लेकर चलते हैं उन पुरानी गलियों में जहां जिंदगी अपनी सबसे खूबसूरत शक्ल में नजर आती है। गलियां महज रास्ते नहीं होती बल्कि यादों, रिश्तों और कहानियों का खजाना होती हैं।

दोस्तों, हर शहर की पहचान उसकी इमारतों से नहीं बल्कि उसकी गलियों से हुआ करती है। गलियां जो खामोश जुबां से काफ़ी कुछ बयां कर जाती हैं, जिसकी

सीली हुई दीवारों पर चढ़ी होती है वक्त की परत, जिसमें बसे होते हैं अनगिनत किस्से, यादें और जज्बात।

वो गलियां जहां बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती है तो कहीं पतंगों की डोर उलझ जाती है, कहीं शाम के वक्त चाय की दुकानों पर दोस्तों की महफिल सजती है और किसी पुराने से घर की खिड़की से आती रसोई की खुशबू और छत पर सूख रहे आम के अचार की महक पूरे माहौल को महका देती है।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़ी गई,
2: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।
4: दोस्तों, यही वो गलियां हैं जहां हमने पहली बार साइकिल चलाना सीखा, क्रिकेट खेला, शाम ढलते घरों के बाहर बैठकर दिन भर की बातें शेयर की और गली के नुक्कड़ पर रेडियो से निकलती वो पुराने गानों की धुनें हवाओं में घुल जाती थी। हर गली के मोड़ पर एक कहानी होती है दोस्तों, कहीं बचपन की शरारतें तो कहीं बुजुर्गों की दुआएं, वो त्योहारों की रौनक और कभी ना भूलने वाली बरसात की भीगी हुई यादें।

एफएम रेनबो कानपुर पर आप सुन रहे हैं रस बाहर लक्ष्मी के साथ, जिसमें बातें हो रही हैं उन पुरानी गलियों की जिसका इश्क से भी गहरा नाता रहा है। एक जमाना था जब मोहब्बत सोशल मीडिया स्क्रीन पर नहीं बल्कि गलियों के मोड़ पर सांसें लिया करती थी। कितनी ही मोहब्बतें ऐसी थी जिसकी खबर पूरी गली को थी, फिर भी कोई जुबान पर नहीं लाता था। वो भी क्या दिन थे जब एक दीवाना सुबह से शाम तक गली के कोने में यूं ही टहलता रहता था। दोस्तों से बातें तो महज बहाना होती थी, मगर निगाहें टिकी होती थी किसी छत की मुंडेर पर, किसी खिड़की के पर्दे के हिलने पर, जहां से महबूबा की मुस्कुराती हुई एक झलक के लिए घंटों का इंतजार भी कम लगता था।

दोस्तों, मोहब्बत उस दौर में शायद ज़्यादा सच्ची इसलिए भी थी क्योंकि उसमें इंतज़ार था, सब्र था और खामोशी में छिपे हज़ारों जज्बात। कभी किसी दीवार पर उकेरा गया नाम तो कभी गली के मोड़ पर हुई एक छोटी सी मुलाकात। गलियां गवाह रही हैं उन अनकहे अफसानों की जहां इश्क ने बगैर कुछ कहे अपनी सबसे खूबसूरत दास्तान लिखी।

200 गलियां हमारी जिंदगी की पहली किताब के वो पन्ने होती हैं जिनमें बचपन की सबसे खूबसूरत इबारत लिखी होती है। हम बेटियां जिन्होंने घर की चौखट पर सपने सजाए, मोहल्ले की गलियों में दौड़ते हुए अपना बचपन जिया, हर मोड़ हर दरवाज़ा हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। मगर फिर एक दिन शहनाइयाँ गूंजती हैं, दुआओं के साए में विदाई का लम्हा आता है और उसी पल हमारी दुनिया बदल जाती है। जब डोली उस गली से आखिरी बार गुजरती है तो हमारी निगाहें उन दीवारों, खिड़कियों और रास्तों को चुपचाप देख रही होती हैं जिनसे हमारा बरसों का नाता रहा।

और हम जैसे ही नए घर की चौखट पर पहुंचते हैं, नए रिश्ते हमारे लिए बाहें फैलाए खड़े होते हैं। हमारी मुस्कान वही रहती है, मगर पहचान बदल जाती है, गली बदल जाती है, घर का पता बदल जाता है, मगर मायके की गलियां कभी भी दिल से रुखसत नहीं होती। हम बेटियां कहीं भी चले जाएं, हमारा एक हिस्सा हमेशा उन्हीं गलियों में बसा होता है जहां हमने पहली बार चलना सीखा था।

दोस्तों, आप दुनिया में कहीं भी हों, जब भी कभी मौका मिले तो अपने बचपन की उन पुरानी गलियों में ज़रूर जाइएगा। यकीन मानिए, पूरा बचपन आपकी आंखों के सामने जीवंत हो जाएगा। हो सकता है कोई पुरानी याद आपका इंतज़ार कर रही हो। फिलहाल रस बाहर से लक्ष्मी को दीजिए इजाज़त, कुछ ही पलों में लेकर हाजिर होते हैं महफिल कव्वाली।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी

0: सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: 102.2 FM पर आप कनेक्ट हैं FM रेनबो कानपुर के साथ। पेश है रूहानियत, मोहब्बत और सूफियाना रंगों को पिरोती एक ऐसी संगीत शैली जिसमें जब तबले की थाप, हारमोनियम की सदा और कव्वालों की बुलंद आवाजें फिजाओं में गूंजती हैं तो इश्क और इबादत ढल जाते हैं एक ही सुर में। लीजिए सुनिए प्रोग्राम महफिले कव्वाली। अजीज नाजक की आवाज में

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री देश भर के लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। योजना के तहत प्रदेश के लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी और मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी सेक्टरों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। आगरा में आज भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पहले ब्रिक्स एमएस

एसएमए फोरम और तीसरी एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। इस कार्यक्रम की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखी गई है। ब्रिक्स फोरम की बैठक में ब्राजील, चीन, मिस्र, रूस, दक्षिण अफ्रीका और भारत सहित ब्रिक्स देशों और सहयोगी देशों के नीति निर्माता, उद्योगपति और उद्यमी हिस्सा लेंगे। बैठक में एमएसएमई के लिए वित्त और तकनीक तक पहुंच, सतत विकास तथा वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये फोरम सहभागी देशों के ज्ञान का आदान प्रदान करने और उभरते अवसरों की पहचान करने और समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास में योगदान देने वाली साझेदारियां बनाने का अवसर भी प्रदान करेगा। बुंदेलखंड के बांदा जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और 48 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच रहे तापमान को लेकर शासन ने गंभीर पहल की है। जिलाधिकारी अमित आसेरी के अनुरोध पर शासन स्तर से 6 वैज्ञानिकों की एक टीम गुरुवार को बांदा पहुंची। ये टीम आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों और उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह पता लगाएगी कि जिले में लू और भीषण गर्मी का प्रभाव अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक क्यों देखने को मिलता है। वैज्ञानिकों की टीम जिले के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण करेंगी। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान के 6वें चरण की शुरुआत कल लखनऊ में प्रदेश की महिला कल्याण बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए बच्चों का सुपोषित होना बहुत जरूरी है। और अंत में मौसम विभाग ने आगामी 24 जून तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस के क्रमिक बढ़ोतरी की भी संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के पश्चिमी जिलों में आज और कल, जबकि पूर्वी जिलों में आज कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन आप 11 बजे सुन सकते हैं। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
4: भाई अब मैच का क्या होगा,
3: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
5: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं,
6: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
5: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
6: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
7: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
8: इस ऑसम से डे और ऑसम से सुबह में एक बार फिर से आपके साथ मैं आ चुकी हूँ, आपकी आरजे होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला आप सबके बीच, और अच्छे अच्छे ढेर सारी सॉन्ग्स लेकर आई हूँ मैं अपने पिटारे में, तो बस इसे एंजॉय करने के लिए आप तैयार हो जाइए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जो है धड़कन लखनऊ की।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और दोस्तों सुपरहिट म्यूजिक यहीं पर, सुपरहिट सॉन्ग्स यहीं पर वाइंड अप करने का टाइम है. और अगले प्रोग्राम में बस कुछ ही देर बीच में होगा समाचार और उसके बाद आ जाऊंगी आपका हिट प्रोग्राम लेकर. संदेश आपके गीत हमारे, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो.

एफएम रेनबो कानपुर अपने सभी लिसनर्स का हार्दिक स्वागत करता है हमारे हमनवा प्रोग्राम में। आप सभी श्रोताओं को लक्ष्मी का प्यार भरा नमस्कार। और अगर आपने गुड मॉर्निंग कानपुर सुना है तो आपको पता होगा कि हमारी हमनवा दोस्त कौन है, तो चलिए उनकी तरफ से

0: प्यारा हो गया है कि मैं उनका इंट्रो आपको दे दूं। तो आज के हमनवा प्रोग्राम में मेरे साथ हैं वंदना। तो वंदना जी, आपका भी स्वागत हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार लक्ष्मी जी, आपका भी बहुत स्वागत, और आपने मेरा स्वागत किया उसके लिए धन्यवाद। और हमारे श्रोताओं का मैं भी अपनी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम हमनवा में। और बताइए लक्ष्मी, आपका क्या हाल चाल है? बहुत गर्मी हो रही है फिर से।
0: हाँ भाई, सुबह से ही बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, और आज तो बिल्कुल भी हवा भी नहीं चल रही थी, इस वजह से गर्मी ज्यादा कुछ लग रही थी। और इस समय तो आप आई हैं, तो इस वक्त तो और टेम्परेचर बढ़ चुका है मेरे ख्याल से।
1: तेज है, हाँ, धूप बहुत ज्यादा तेज है, और गर्मी तो बिल्कुल अपने चरम पर है, दिखा रही है कि मैं, मतलब मैं ही मैं हूँ आज।
0: हाँ, तो ऐसा कुछ अभी लग नहीं रहा है कि मानसून का क्या आना है। वैसे पहले सुना था कि 20 तारीख तक आ जाना है मानसून, लेकिन फिलहाल तो कानपुर में ऐसा कुछ आसार नजर नहीं आ रहे।
1: बस हमको ही अपने घरों के अंदर, मतलब अपने आपको सेफ रखना है, एनी हाउ अगर बहुत जरूरी है तो निकलना है।
0: हाँ,
1: अन्यथा घर में ही रहना चाहिए।
0: पानी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते रहें, क्योंकि एक पानी ऐसी चीज है जो बॉडी को हाइड्रेट रख पाती है। और
1: पानी की आपने बात करी, तो पानी के लिए मैं एक और छोटा सा संदेश, बहुत प्यारा सा, जरूरी सा देना चाहूंगी दोस्तों को, कि मैं कानपुर में बहुत लोगों को देखती हूँ कि पानी अगर उनके यहाँ अच्छे से आता है तो वो बहुत वेस्ट करते हैं। तो हम सबकी, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है श्रोताओं की, आप अगर अपने आसपास भी ऐसे लोगों को देखें तो प्लीज उनको नो कहिए कि वो ये काम ना करें। पानी बहुत कीमती है, इसकी एक एक बूंद हमें बचानी है।
0: बिल्कुल सही बात है। और आसपास तो देखे ही, लेकिन कई बार होता है घर में हम लोग बहुत बिजी होने की वजह से, अगर कोई नल खराब है, वो थोड़ा थोड़ा सा टप टप कर रहा है, तो उसको अवॉइड करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, तो उसको पहले से करा ले। और हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो कहा भी करते थे कि अगर पानी बराबर गिरता रहता तो वो अच्छा नहीं माना जाता घर के लिए। तो इस तरह भी आप, मतलब पानी एक एक बूंद भी बचाएं, तो तभी हम पानी को बचा पाएंगे। और वैसे भी पानी वेस्ट करना बहुत खराब माना जाता है, क्योंकि बहुत जगह तो पानी मिलता ही नहीं है।
1: हाँ,
0: ऐसी जगह पे लोग बचा बचा के जरा जरा से पानी से यूज करते हैं। और
1: तो इसमें हमें अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानना चाहिए, और भगवान का धन्यवाद अदा करते हुए और आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई, बहुत सारे संदेश हो गए।
0: और
1: हम अपने दोस्तों को बता देते हैं कि आज का हमारा हमनवा किन किन विषयों पर आधारित है, क्या क्या हम लेकर आए हैं अपने श्रोताओं के लिए।
0: आज हम बताते हैं कि आज दिन विशेष के बारे में, यानी इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। और सेकंड टॉपिक हमारा है घर के कार्यों में सभी सदस्यों का योगदान होना क्यों जरूरी है, इस पर हम चर्चा करेंगे।
1: भाई भाई, ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इस पर मुझे लगता है लोगों की ज्यादा इसमें ध्यान जाएगा कि घर में ये सभी सदस्यों का योगदान, इसको सुनना भी चाहिए लोगों को। और बातें होंगी साथियों फैमिली क्वालिटी टाइम की इम्पोर्टेंस पर, और बच्चों से संवाद होना क्यों जरूरी है, और किसी भी काम को शुरू करने का सबसे अच्छा दिन है आज, क्योंकि कल कभी नहीं आता।
0: और अब है हमारा साइंस सेगमेंट, यानी ज्ञान विज्ञान, जिसमें हम बातें करेंगे एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स के बारे में। और लास्ट में हमारी हमनवा रसोई में क्या पकने वाला है
1: वो ये आपको बाद में।
0: जी बिल्कुल, फिलहाल सुनाते हैं खूबसूरत सा सॉन्ग।
1: हाँ।

0: और इसी गाने के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वंदना पहला जो हमारा विषय है, आज विशेष दिन है 19 जून और हर साल आज के दिन मनाया जाता है संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस टर्म रिफर करता है, मतलब इससे ये है कि रेप, सेक्सुअल स्लेवरी या फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, प्रेगनेंसी अबॉर्शन या फोर्स्ड मैरिज मैरिजेस जो हैं वो किसी भी तरह का सेक्सुअल वायलेंस जो है जिसमें बच्चे, महिलाएं, पुरुष या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड हों, जिसमें संघर्ष की सिचुएशन में सेक्सुअल वायलेंस या एक्सप्लॉयटेशन के उद्देश्य से की गई मानव तस्करी भी इसमें शामिल है।
1: हाँ, कई बार हम देखते हैं कि बहुत जो ये आपने जो नाम लिया सेक्सुअल वायलेंस और संघर्ष में जिंदगी जीते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे समाज में हैं जो निरंतर इन चीज़ों को, इन गतिविधियों को अपने जीवन में झेल रहे होते हैं और फिर भी एक संघर्ष भरा जीवन जी रहे होते हैं पर किसी से कह नहीं पाते हैं। और एक लगातार बनी रहने वाली चिंता ये भी है लक्ष्मी कि भय और सांस्कृतिक कलंक संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा के पीड़ितों को विशाल पीड़ितों के जो विशाल बहुमत है इनको ऐसी हिंसा की एक रिपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ने से रोकते हैं।
0: हाँ, वो एक जो उनके डर होता है एक समाज का कि लोग क्या कहेंगे, हाँ तो उसमें वो बहुत चीज़ें छुपा जाते हैं, दबा जाते हैं और झेलते रहते हैं, जिससे बढ़ावा मिलता है इन सब चीज़ों को, जो इस तरह के लोग होते हैं जो परेशान करते हैं उनको बढ़ावा मिलता है, हिम्मत बढ़ती है। और इसके चलते यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 19 जून 2015 को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट प्रोक्लेम्ड किया ताकि

0: कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस को खत्म करने के लिए अवेयरनेस रेज की जा सके, अराउंड द वर्ल्ड विक्टिम और सर्वाइवर को सम्मानित किया जा सके और उन सभी को ट्रिब्यूट दी जाए जिन्होंने इस क्राइम को एलिमिनेट करने के लिए साहस के साथ अपनी लाइफ डिवोट की और अपनी जान गंवा दी।
1: जी हाँ, उनका बहुत बड़ा रोल है एक्चुअली इस तरीके की चीजों में। और 19 जून 2008 को सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1820 को अपनाने की स्मृति में चुनी गई, जिसमें परिषद में ने यौन हिंसा की युद्ध की रणनीति और शांति निर्माण में बाधा के रूप में निंदा भी की थी।
0: और सिक्योरिटी एक इसमें ये चीज भी शामिल की गई कि सिक्योरिटी काउंसिल ने 2016 रेजोल्यूशन जो इनका था उसको अडॉप्ट किया, जिसमें ये बात थी कि सेक्सुअल वायलेंस को एज ए टैक्टिक ऑफ टेररिज्म एक्नॉलेज किया जाए, मतलब कि टेररिस्ट ग्रुप द्वारा की गई ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी और सेक्सुअल वायलेंस विक्टिम को एज ए टेररिज्म विक्टिम आधिकारिक मुआवजे का अधिकार होना चाहिए। मतलब जो टेररिज्म जिनके साथ आतंकवाद होता है वो विक्टिम होते हैं, उनको मुआवजा दिया जाता है। सेम उसी तरह इस तरह जो सेक्सुअल वायलेंस होता है जिनको एक्सप्लॉयट किया जाता है, जिनको परेशान किया जाता है और इस तरह का जो ट्रैफिकिंग की जाती है उनको भी उस उनसे जो जूझ रहे हैं लोग, वो जो झेल रहे हैं उनको भी मुआवजा दिया जाए।
1: देखिए जिंदगी में बहुत सारे संघर्ष हैं हर एक व्यक्ति के जीवन में और किसी तरीके के तो संघर्षों से तो जीवन कहीं ना कहीं भरा हुआ है ही, लेकिन हमें किसी भी संघर्ष को करने से ना पीछे हटना है और ना ही अपनी जिंदगी से हार माननी है।
0: हार भी नहीं माननी है और ऐसे लोगों को रोशनी में लाना भी है, क्योंकि अगर हम जब तक हम किसी को अंधेरे में छुपाएंगे तो हम इसको बढ़ावा देंगे एक तरह से। अगर हम उसके लिए रिपोर्ट नहीं करेंगे, हम डरेंगे किसी भी चीज़ के लिए। और आज तो बहुत समय बदल गया है कि बहुत सारे ऐसे नंबर्स गवर्नमेंट ने जो है प्रोवाइड करा दिए हैं कि आप अपनी पहचान को छुपा कर, अब बिना अपनी पहचान को बताए हुए आप अपराध जो हो रहा है आपके साथ कुछ भी
1: बता सकते हैं
0: और रिपोर्ट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो संघर्ष से और जीवन से हार नहीं माननी है और हमको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जैसे कि अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ने जा रहे हैं और सुनवा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा गीत जो हमें जीवन में जीने के लिए प्रेरणा दे रहा है।

0: बिल्कुल जिएंगे और बहुत अच्छे से जिएंगे, बहुत सुंदर जिंदगी दी है ईश्वर ने और बहुत बहुत खूबसूरती से उसको जीना है ना लक्ष्मी जी?
1: बिल्कुल जी।
0: और बताइए, अब थोड़ी देर बाद बस आप फुर्सत पाने वाली हैं, आप क्योंकि सुबह की आई हुई हैं और उसके बाद अब आपको बस 12 बजे के बाद मैं आपको रिलीफ दे दूंगी कि
1: मन की बात पढ़ ली है तुमने वंदना, क्योंकि अभी मैं यही सोच रही थी कि बहुत सारी एक लंबी लिस्ट दिमाग में चल रही है।
0: अच्छा, कि उधेड़ बुन ये चल रही थी कि क्या करना है घर जाके। मैं अब जाके एक्चुअली पूछ यही रही हूँ कि अब आप घर जाके क्या करेंगे, सोएंगे जाकर क्योंकि सुबह जल्दी उठी होंगी?
1: नहीं तो जल्दी क्या उठी है, वो तो मॉर्निंग में तो सोना होता ही नहीं है रात का, तो काफी चीजें पेंडिंग में रहती है। अच्छा कई बार ये होता है कि ये हम बाद में कर लेंगे इसको आकर, तो वो एक पूरी एक लिस्ट बन जाती है, लेकिन वो खत्म होने का नाम नहीं लेती है, कितना भी कोशिश कर ले रात
0: दिमाग में चलती रहती है ना।
1: काम कितना भी पूरा हो जाए कभी खत्म नहीं होता। कहते हैं ना कि हम महिलाओं को तो मरने की भी फुर्सत नहीं मिलती है अगर कई बार
0: अगर भाई ऐसी बात है तो अच्छा वो फुर्सत आपको ना ही मिले ना।
1: तो भाई हम लोग अक्सर यही कहते ही हैं, जब भी किसी से पूछो कि भाई हमें फुर्सत नहीं है, तो हमारा इतना काम है घर के,
0: फुर्सत नहीं है। बहुत वैसे बहुत पेट डाले, बहुत मजेदार लगता है कभी भी सुन के।
1: भाई ऐसा होता क्या है ना वंदना, कि जो घर की महिला होती है जैसे हम लोग होते हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग सारा काम खुद अकेले कर लें,
0: ये बात
1: है ना। बच्चों का भी सारा, बच्चों को भी नहीं इन्वॉल्व करते हैं उसमें, और घर के जो बड़े बूढ़े हैं जो हस्बैंड है उनको भी इन्वॉल्व नहीं करते हैं। वो एक मन में ये चीज रहती है कि पता नहीं वो इतने अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और जल्दी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।
0: एक हंसी की बात बोलूं इसी में, मुझे एक और बात याद आई, और कई महिलाओं को, कई अपनी दीदियों को या चाची मौसी नानी इन सबको कहते सुना, अरे हम ना हो तो काम ना हो इस घर।
1: हाँ बिल्कुल सही। और काम होता क्या है, काम खत्म ही नहीं होता, वो रह जाता है लास्ट तक।
0: और कई बार हम ये परफेक्शन के चलते ही,
1: परफेक्शन
0: कहा ना कि सारा काम खुद ही कर ले, ये तुम सही नहीं कर पाओगे ये भी मैं कर देती हूँ, बस तुम वो नहीं कर पाओगे ये भी मैं कर देती हूँ।
1: तो उसमें होता क्या है कि परिवार के जो सदस्य होते हैं वो कुछ भी करने से भी थोड़ा सा घबराते हैं,
0: लगते कि आपको
1: वो
0: तो
1: सोचते हैं डांट ना पड़ जाए,
0: आपको तो पसंद नहीं आएगा,
1: पसंद नहीं आएगा तो इससे अच्छा मत करो।
0: कई बार ऐसा भी होता है कि इससे फिर ना छोटे बच्चे, बच्चों बुरा मत मानिएगा अगर आप लोग सुन रहे हो, बच्चे कामचोर हो जाते हैं ना, कई बार कहते हैं मम्मी आपको पसंद ही नहीं आएगा तो हम क्यों करें।
1: हाँ, और वो एक डर भी रहता है कि पता नहीं हम अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग कह कह कर उनको ये शो कर देते हैं कि वो काम नहीं कर पाएंगे, बल्कि उसके बजाय उनको जो है सपोर्ट करना चाहिए। वो जैसा भी कर रहे हैं, खराब करें, वो जब तक करेंगे नहीं
0: कैसे
1: तक सीखेंगे नहीं।
0: सही बात। और इससे हम ना कई बार मैं ये कह सकती हूँ कि इससे महिलाएं जो है शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं उसका एक थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट ब्रेन पर भी पड़ता है, मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है, एक चिड़चिड़ापन सा
1: चिड़चिड़ापन होता है। और दूसरा ये भी रहता है कि रात दिन काम कर रहे हैं फिर भी कमी रह जा रही है, फिर भी लोगों को शिकायतें बनी हुई हैं घर के लोगों को। लेकिन अब जो बनना, जो अब सिनेरियो है ऐसा आ गया है कि धीरे धीरे लोगों की सोच जो है वो बदल रही है, घर के सभी मेंबर्स घर के कामों में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और लड़के लड़कियों का भी अंतर खत्म हो रहा है, बच्चे भी लड़के जो हैं घर के लड़के

0: वो खाना भी बना रहे हैं,
1: हाँ।
0: वो इंटरेस्ट भी ले रहे हैं किचन में जाने में, और प्लस पॉइंट इसका मेन यही है कि सभी फैमिली मेंबर्स जो है प्रॉपर क्वालिटी टाइम मिल जाता है सबको, अगर काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सब में तो, और हेल्थ सबकी अच्छी रहती है,
1: किसी एक पर बोझ पड़ना सही
0: नहीं
1: है।
0: होता
1: और
0: है, हाँ।
1: देखिए घर जो है ना वो एक छोटी सी दुनिया जैसी है, और इसे व्यवस्थित करने में हर सदस्य का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो घर का माहौल बहुत ही हैप्पी हैप्पी रहता है, खुशहाल रहता है, और एक बैलेंस हम देखते हैं इसमें बना
0: बिल्कुल।
1: रहता है। जैसे हम बात करें अगर, तो पिता की जिम्मेदारी होती है कि घर की जरूरी वस्तुओं की खरीदारी वो करते हैं, और बिजली पानी ईंधन आदि के बिल का ध्यान रखते हैं कि हाँ अब ये इस टाइम पर ये बिल देना है वो करना है, तो घर की मरम्मत और रख रखाव से जुड़े काम देखते हैं कि भाई अब हमें यहाँ पे रिपेयरिंग करानी है तो ये इसके लिए कुछ इंतजाम करने हैं, साथ ही बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की योजनाएं बनाते हैं वो।
0: और
1: और
0: वही जो जब इनका जो घर के जो पुरुष है उनका ये काम होता है, वहीं पे घर की जो महिला है उसके हिस्से में आता है कि खाना बनाना, किचन को संभालना, फैमिली की हेल्थ का ख्याल रखना, घर की साफ सफाई हो, सारे अरेंजमेंट हैंडल करना, साथ ही सभी फैमिली मेंबर्स के बीच में एक हार्मोनी मेंटेन भी रखना है कि लड़ाई
1: बिल्कुल
0: झगड़ा ना
1: बिल्कुल,
0: हो
1: हाँ
0: आपस में और समझा सकें सबको,
1: हाँ
0: और घर की महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब होनी भी चाहिए।
1: बिल्कुल। बच्चे अपना रूम और स्टडी टेबल ही अगर साफ कर लें तो स्कूल बैग किताबें सही सामान सब सामान व्यवस्थित रख दें। इसके अलावा बच्चे क्या कर सकते हैं कि गार्डनिंग गार्डन में जाकर या जो भी आपके घर में कम ज्यादा जो भी पौधे लगे उनको पानी दे सकते हैं, छोटे छोटे घरेलू काम कर सकते हैं कि जो वाटर बॉटल्स खाली हो जाती हैं फ्रिज वाली वो
0: वो
1: भर
0: भर
1: भर के रख
0: सकते
1: सकते
0: हैं।
1: हैं, और कूलर में पानी डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, जैसे जो भी अपने वो उनकी जितनी भी वो हो कि हाँ जितनी भी वो छोटी बकेट उठा सकते हैं उतना उतना छोटा छोटा पानी डाल सकते हैं, कपड़े व्यवस्थित करके रख सकते हैं बस, और इसी से अनुशासन बना रहता है, वो धीरे
0: हाँ,
1: धीरे
0: इसके
1: काम सीख
0: साथ ही
1: जाते हैं।
0: बच्चों को जो है छोटी छोटी चीजें मंगाने की भी प्रैक्टिस उनको डालनी चाहिए,
1: जी
0: जिससे
1: हाँ
0: पास की जो भी हमारी दुकान होती
1: हाँ,
0: कन्फेक्शनरी की,
1: सीखते तो
0: तो
1: इसी से
0: उससे
1: है ना
0: वो
1: बच्चे।
0: मैथ मैथ उनकी अच्छी होती है, क्योंकि वो जानते हैं, वो प्लस माइनस करना समझते हैं
1: और
0: पैसों
1: इससे
0: को।
1: एक और समझदारी भी आती है कि मान लीजिए जैसे कभी कोई दुकानदार आप बच्चे को एकदम फटा हुआ नोट दे रहा है वापस में, तो बच्चा अगर जैसे भोला भाला बच्चा होता है जब पहली बार वो शॉप पे जाता है, और अगर पहली बार ऐसा होता है तो बिना कुछ देखे सुने ले आता है, फिर घर में उसे डांट पड़ती है या समझाया जाता है, तब वो धीरे धीरे धीरे धीरे करके वो समझ जाता है कि हमें जब सामने से भी कोई चीज लेनी है तो वो भी देख सुन के लेनी है।
0: वहीं पे होता है कि बात हो गई बच्चों की, महिलाओं की, पुरुषों की, लेकिन हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उनकी जिम्मेदारी भी कई मायने में परिवार के बीच में होती है, कि बच्चों को वो अगर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो बच्चों को अपने पास बिठा के उनको मॉरल्स जो हैं,
1: बिल्कुल
0: सांस्कृतिक
1: सिखाएं।
0: मूल्य हैं उनको सिखाएं, अपने उनके जो एक्सपीरियंस है उसे परिवार को जो
1: बताएं
0: है मोटिवेट करें, मार्गदर्शन करें उनका,
1: बिल्कुल,
0: और वक्त वक्त पर जो परिवार में इमोशनल सपोर्ट ज़रूर करें।
1: बहुत बहुत जरूरी होता है बड़े बुजुर्गों का ये, बहुत इमोशनल सपोर्ट
0: हाँ,
1: देना बहुत जरूरी
0: और
1: होता है।
0: छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, जैसे पास में अगर सब्जी की दुकान है तो उनको वो जाकर ला सकते हैं, उससे एक फायदा ये होता है कि वो चलते फिरते रहते हैं, उनका अगर वो चलते
1: बच्चों को
0: फिरते
1: हाथ
0: रहते
1: पकड़ के
0: हैं,
1: जा सकते
0: हाँ
1: हैं तो इससे उनकी
0: बच्चों
1: बॉन्डिंग बच्चों के साथ अच्छी भी बनी रहती
0: वो
1: है
0: भी होता
1: घूमने
0: है,
1: जाने
0: दूसरा
1: से,
0: उनकी जो फिजिकल मेंटेन रहता है
1: वो भी
0: पूरा, उनकी
1: मेंटेन होता
0: हेल्थ भी
1: है।
0: मेंटेन रहती है,
1: तो
0: और
1: लक्ष्मी यहाँ
0: परिवार
1: पे हम यही कहेंगे कि परिवार के सभी सदस्य साझा जिम्मेदारी निभा सकते हैं घर को साफ रखने और व्यवस्थित रखने में, पानी बिजली की बचत करके और एक दूसरे का सम्मान भी करके, ये सारी चीजें हमारे मॉरल वैल्यूज भी क्रिएट करती हैं और कहीं ना कहीं हमारी फैमिली को हैप्पी रखने का एक बहुत अच्छा सा साधन है। और इसी बात पर हमारी एक श्रोता हैं, आइए देखते हैं वो क्या कह रही हैं।
2: नमस्कार सभी को, मैं डॉरथी त्रिपाठी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में टीजीटी इंग्लिश के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करना चाहूंगी कि क्या घर के कामों में सभी की भागीदारी होनी चाहिए या ये सिर्फ एक या दो लोगों का ही काम है। देखिए, जिस तरह एक मकान को बनाने के लिए कई तरीके की सामग्री की आवश्यकता होती है, उसी तरह एक परिवार को बनाने के लिए सभी सदस्यों की बराबर की भागीदारी लगती है। एक परिवार तभी सफलतापूर्वक चलता है जब सभी लोग प्रेम, सहयोग और साथ निभाई गई जिम्मेदारियों को साथ लेकर चलते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि जिन परिवारों में सारी जिम्मेदारियां एक ही व्यक्ति पर डाल दी जाती हैं, उस परिवार में लोग मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। ऐसे घरों में नेगेटिविटी बहुत रहती है। लोग कभी आपस में हंसते बोलते नहीं हैं, क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करते हैं साथ में, और तो और इन सब चीजों का बच्चों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कम और गैजेट्स के साथ

टाइम स्पेंड करते हैं। उसी जगह एक ऐसा परिवार है जहां सभी लोग अपनी क्षमता अनुसार घर का थोड़ा थोड़ा काम मिल बांट कर करते हैं। बच्चे भी बड़ों को देखकर सीखते हैं कि अपना काम करने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, कोई भी काम जेंडर बायस्ड नहीं है। इससे घर का माहौल भी हल्का रहता है, लोगों में अपनापन ज्यादा रहता है, लोग खुश रहते हैं और तो और डिसिप्लिन भी बना रहता है। देखिए, ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर घर सबका है तो घर के सारे काम भी सबकी उम्र और क्षमता के हिसाब से सबके ही हैं, तभी तो बनेगी एक हैप्पी फैमिली। थैंक यू।

बिल्कुल भाई, हाथ बढ़ाना और एक अकेला वाकई में अगर सब कुछ करेगा तो थक जाएगा, तो घर के सभी कामों का मिलकर बोझ उठाना है ना। तो ये गाना हमें बहुत सही सीख भी दे रहा है और बहुत सही वक्त पे ये गाना हमने सुना दोस्तों। और साथ ही साथ अब हम बात कर रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चों की और उनके साथ संवाद क्यों जरूरी है और फैमिली टाइम का हमारे लिए हमारे जीवन में महत्व क्या है। तो लक्ष्मी, जीवन का जो गोल्डन पार्ट जो होता है, जहाँ होती हैं अपार खुशियाँ, छोटी छोटी टिमटिमाती आंखों में न जाने कितने सपने, बहुत भोला सीधा साधा मन, जहाँ अच्छी या खराब हर बात असर कर जाती है, जहाँ और दूर तक साथ चलती है, या तो अच्छी सीख बनकर या बनकर खराब आदत,

0: बताइए वो कौन सा पीरियड है। जी हम
1: भाई हम बात कर रहे हैं
0: बच्चों की बचपन की, जिसे सीख लेने या बिगड़ जाने में वक्त नहीं लगता है। बहुत हल्की सी दीवार होती है उस फर्क की, जहां हम थोड़ा सा ध्यान देकर या तो बच्चों को संभाल ले जाते हैं या फिर आ जाती है माता पिता और बच्चों के बीच में एक जनरेशन गैप की दीवार।
1: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात कह रही हो वन्ना, क्योंकि होता क्या है कि आजकल के टाइम में तो और ज्यादा गैप आने लगा है। वो उसका जो मेन रीजन है वो है हमारा मोबाइल, क्योंकि ना माँ को टाइम है कि बच्चों से बात कर पाए, और बच्चे ये सोचते हैं कि माँ बिजी है तो हम उनको क्या बात करें, उनसे क्या बताएं, तो बहुत सारी बातें ऐसे ही दबी रह जाती हैं मन में और बच्चे कह नहीं पाते हैं।
0: जी देखिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा, भोजन और परवरिश देने के बराबर ही जरूरी है कि हम
1: जरूरी
0: खुलकर बातें करें।
1: बिल्कुल जरूरी है।
0: कई बार ऐसा होता है लक्ष्मी कि बच्चे बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उनको कोई सुनता ही नहीं, क्योंकि
1: सुनता
0: बच्चे
1: नहीं।
0: हैं। अरे तुम क्या जानो ऐसे कहकर हम उन्हें ना आगे बढ़ा देते हैं, चलो ठीक है खेलो जाकर, है ना, ऐसा होता है बहुत ज्यादा, हम देखते होंगे
1: कई बार।

0: और परवरिश देने के बराबर ही जरूरी है कि हम उनसे खुलकर बातें करें।
1: बिल्कुल जरूरी है।
0: कई बार ऐसा होता है लक्ष्मी कि बच्चे बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उनको कोई सुनता ही नहीं, क्योंकि
1: सुनता
0: बच्चे
1: नहीं
0: है। अरे तुम क्या जानो ऐसे कहकर हम उन्हें ना आगे बढ़ा देते हैं, चलो ठीक है खेलो जाकर, है ना, ऐसा होता है बहुत ज्यादा, हम देखते होंगे
1: कई बार। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बच्चा बताना चाह रहा है तो उस समय खास तौर से महिलाएं जो हैं घर की वो उनको टाले नहीं और चीजें रोक दें और बच्चे को सुने, क्योंकि एक जो बचपन निकल जाता है तो फिर वो मन में दबी बातें वो कहीं ना कहीं किसी रूप में आ जाती हैं सामने, जो बाद में फिर उसको अफसोस करने के अलावा और कोई हमारे पास वो नहीं होता है।
0: हाँ, कोई चारा नहीं होता है इसके अलावा।
1: और संवाद जो है केवल शब्दों का ही आदान प्रदान नहीं है बल्कि इससे भावनाओं का भी आदान प्रदान होता है। एक दूसरे के बीच जब कम्युनिकेशन मजबूत होता है तो बच्चे कॉन्फिडेंट बनते हैं और उनके अंदर मैच्योरिटी भी आती है।
0: बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि जिस बच्चे को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है उसमें हर तरीके से आत्मविश्वास होता है और उसकी छवि बेहतर बनती है और वो अच्छे से अपनी हर बात को हर जगह कम्युनिकेट करना जान पाता है।
1: इसके विपरीत जो वो बच्चे हैं जिनको गुस्सा, चिड़चिड़ापन, झिझक या अकेलापन जिनके अंदर पनपने लगता है,
0: इसलिए मौका नहीं मिलता कहने का,
1: और बच्चों से डेली उनकी जो भी पर्सनल बातें हैं वो जरूर पूछनी चाहिए।
0: बिल्कुल पूछनी चाहिए, इससे बच्चे अकेलापन नहीं फील करते और उनको लगता है हमारा भी घर पे कोई स्थान है, कोई प्लेस है। तो कम्युनिकेशन या संवाद से जब बच्चा अपने मन की खुशी, परेशानी, चिंता, डर या किसी भी असहज स्थिति को अगर खुलकर कह लेता है तो उसके मन का बोझ हल्का ही हो जाता है।
1: सही बात,
0: हम सभी हैं तो अगर किसी दोस्त से अपनी समस्या कोई बता देते हैं तो हमारा मन का बोझ हल्का हो जाता है, वैसे ही बच्चों के साथ है।
1: और इसीलिए सबसे पहले तो अगर बच्चा कुछ कहना चाह रहा है तो उसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स को उसका विश्वास जीतने की जरूरत बहुत है। अगर उसको उनको लगेगा कि अगर हम ऐसी बात बता रहे हैं और उसके उससे पेरेंट्स गुस्सा ना हो जाएं या उससे वो उनको वो बच्चे को पीट ना दें या ऐसा कुछ कोई पनिशमेंट ना दे दें तो वो बच्चा बताने से झिझकेगा, वो छुपाएगा चीजें। इसलिए उसको पूरी तरह से श्योर करें कि जो भी कहना है वो कह लो और हम किसी भी तरह का कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे, अपने मन की बात कह लो।
0: क्योंकि तो मुझे लगता है कि माता पिता को बच्चों के साथ दोस्त बन के
1: हाँ, क्योंकि बिना किसी एक्सप्रेशन मतलब किसी तरह के दिखा के और बच्चे की बात पूरी सुने, आराम से सुने, बीच में कोई क्वेश्चन ना करें उनको, जिससे वो अपनी पूरी बात कह सके। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कि जो चेहरे के भाव होते हैं वो बच्चे बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना, चेहरे के भाव पढ़ लेते हैं। और अगर आपके चेहरे पे कुछ ऐसा आ रहा है कि जो उनको लग रहा है कि शायद हम आगे और बताएंगे तो इससे उल्टा मेरे ऊपर ही बात आ सकती है, तो वो चीजों को छुपा लेंगे।
0: अच्छा, और उससे क्या होता है ना कि बच्चे अगर मन में दबाए रखते हैं बात और एक बात दो बात बहुत सारी बातें हो जाती हैं तो ना जब वो अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं तो उनकी नींद में और उनकी हार्मोनल बैलेंसेज में भी दिक्कतें आने लगती हैं, पढ़ाई में दिक्कत आने लगती है और भावनात्मक उनको राहत नहीं मिल पाती।
1: राहत नहीं, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है।
0: एकाग्रता भी नहीं रह पाती है।
1: माँ बाप को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखनी है, इवन वो भी जो कर रहे हैं वो ऐसे काम करें जो घर में इस तरह का माहौल बनाए जिससे बच्चों को भी, जो बच्चे हैं वो इंस्पायर हो सके।
0: जी, अगर तो हम यही कहेंगे कि माहौल बनाने के लिए डेली आप 30 मिनट्स स्पेशली अपने बच्चों के लिए जरूर निकालें और जिसमें टीवी, मोबाइल और अन्य लोगों से आप बात ना करें, केवल आप हों और आपके बच्चे हों।
1: बिल्कुल,
0: है ना, और केवल बच्चे को ही इम्पोर्टेंस दें, उनकी पसंद नापसंद, उनकी मर्जी, उनके सपने, उनकी सोच, हर चीज पर बात करें, हर विषय पर बात करें और उन्हें केवल पेरेंट्स बनके डांटिए नहीं।
1: हाँ, जुड़ना बहुत जरूरी होता है, बच्चों के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है और सिर्फ बातें करने से जुड़ना नहीं होगा बल्कि बच्चों के साथ आजकल तो मोबाइल पे भी लूडो, कैरम, ये सारे गेम, तो पजल गेम है, वर्ड वाले गेम है, वर्ड फॉर्म करना हो कोई तो इस तरह से आप बच्चों के साथ बैठ के गेम खेलें, उनको इनकरेज करें कि आए चलो एक एक चांस खेलते हैं। उसमें ये भी ना करें कि आप जानबूझ के हार जाएं।
0: हाँ।
1: होता क्या है कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि अरे बच्चा है तो उसको जीतने दें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल जो फेयर गेम है वही खेलें। हाँ। आप भी जीतिए, जिससे
0: बच्चों का दोनों का बच्चे को भी
1: पता होना चाहिए।
0: बात की बच्चों के बीच में माहौल इस तरीके का बनाने के लिए कि तुलना ना करें किसी दूसरे,
1: ये तो बहुत खराब चीज है, तुलना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हर एक की परिस्थिति, घर में भी जितने मेंबर्स होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते हैं, तो बाहर पड़ोस के तो हो ही नहीं सकते। इसलिए कभी भी किसी को कंपेयर ना करें बच्चे अपने बच्चे से, हर एक बच्चे के अंदर एक टैलेंट होता है। मेरे ख्याल से दुनिया में हर बच्चे के अंदर एक अपना एक टैलेंट होता है, बस उसको समझने की जरूरत होती है।

0: अगर बच्चे का किसी चीज में मन लग रहा है तो उस पे अपने विचार या अपनी चीजें ना थोपें, उसको उसी दिशा में आगे बढ़ने दें ताकि वो आगे जाकर उस चीज को मन से कर पाए और उसको करियर के रूप, अपने करियर के रूप में चुन सके उसको।
1: बिल्कुल। तो चलिए अब इस बात के बाद हम एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना प्ले कर देते हैं अपने दोस्तों के लिए, और उसके बाद वापस हम नवा में हम फिर से जुड़ेंगे।

0: la la la la la la la.
1: FM 102.2 रेनबो कानपुर पर इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमनवा. आज आपके साथ हैं हम दो हमनवा, वंदना और लक्ष्मी. और दोस्तों, अब हमनवा में थोड़ी सी जानकारी हम साझा करेंगे हमारे शरीर से जुड़ी हुई हमारी हेल्थ की. और ज्ञान विज्ञान के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की. हमारे बहुत से साथी इनके नाम से वाकिफ होंगे और बहुत सारे साथी हमारे पूरी जानकारी भी रखते होंगे, लेकिन ये दोनों ही नाम हमारे स्वास्थ्य से गहराई से नाता रखते हैं, इसीलिए ये विषय आज डिस्कस हो रहा है ज्ञान विज्ञान में.
2: तो पहले यहाँ बात कर लेते हैं फ्री रेडिकल्स की. फ्री रेडिकल्स मनुष्य के शरीर में बनने वाले अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स यानी अस्थिर अणु होते हैं और ये हमारी स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाते हैं.
1: हाँ, और जब ये स्वस्थ कोशिकाओं के इलेक्ट्रॉन छीनते हैं, वैज्ञानिक भाषा में दरअसल इनको, ये वो अणु होते हैं जिनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और अस्थिर होने के लिए या कहिए पेयर बनाने के लिए ये शरीर के अन्य स्वस्थ कोशिकाओं से इलेक्ट्रॉन्स चुराने की कोशिश करते हैं.
2: और जब ये
1: हाँ, इनको चुराते हैं. हाँ, आप बताइए, अच्छी जानकारी है, आप बताइए.
2: हाँ हाँ, जब ये स्वस्थ कोशिकाओं के इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं या चुरा लेते हैं तो वो स्वस्थ कोशिकाएं भी डैमेज हो जाती हैं.
1: बिल्कुल.
2: और इस प्रोसेस में जो हेल्दी सेल्स होती हैं वो उनके प्रोटीन और डीएनए को नुकसान पहुंचता है.
1: हाँ, तो ये फ्री रेडिकल्स दरअसल लक्ष्मी, इनका निर्माण होता है सांस लेने से और मेटाबॉलिज्म से, प्रदूषण से, तनाव से, धूम्रपान से और अल्ट्रा वायलेट किरणों से भी. इनकी संख्या हमारे शरीर में बहुत तेजी से बढ़ती है और शरीर में इनकी मात्रा बहुत जब ज़्यादा हो जाती है ना, तो हमें एंटीऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और इसके नतीजतन क्या होता है कि असमय हमें बुढ़ापा आ जाता है और हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ बढ़ने लगती हैं, इम्यून सिस्टम हमारा गड़बड़ हो जाता है और गठिया और हार्ट डिजीज जैसे रोग भी लग जाते हैं.
2: बिल्कुल सही कहा तुमने वंदना. और ये सब जानने के बाद कि क्या है फ्री रेडिकल्स, आइए बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की. तो ये ऐसे यौगिक हैं जो फ्री रेडिकल्स को अपने इलेक्ट्रॉन देकर उन्हें शांत कर देते हैं एक तरह से, और स्वस्थ कोशिकाएं नुकसान से बच जाती हैं.
1: बिल्कुल. और सबसे प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट्स तो हमारे सभी साथियों को पता ही होगा, विटामिन सी और विटामिन ई और खनिज, जिसमें सेलेनियम प्रमुख है और बीटा कैरोटीन है. और इसके अलावा कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं उनका निर्माण हमारा शरीर खुद करता है ना. और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर के दोस्त होते हैं, आप ये कह सकते हैं. तो लक्ष्मी जी, अब मुझे लगता है कि हमारे दोस्तों के मन में ये विचार आ रहा होगा या ये एक सवाल आ रहा होगा कि एंटीऑक्सीडेंट्स हम दवाओं से ही प्राप्त कर सकते हैं
2: या उसको नेचुरल भी कहीं से मिल सकता है.
1: तो साथियों, हम बता दें आपको कि प्राकृतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट्स प्राप्त करने के लिए हमें जो फ्रूट्स हैं, वेजीज हैं और जो और भी खाने पीने की चीज़ें हैं, उन्हें हमें उनका सेवन करना चाहिए, जिसमें से कुछ मुख्य हम आपको नाम बताते हैं. जितने भी रंग बिरंगे फल हैं, जैसे कि नाम बता दें, जामुन, अनार, अंगूर, संतरा और सेब, इनमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. वेजीज में बात करें तो पालक, गाजर और ब्रोकली.
2: और अगर और चीज़ों की बात करें तो ग्रीन टी में मिलता है हमें एंटीऑक्सीडेंट. डार्क चॉकलेट आप खा सकते हैं, नट्स, बादाम, अखरोट, अलसी के कद्दू के बीज, इन सबसे आपको प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट मिल सकता है.
1: तो कोई भी काम देखिए, आज ही से अगर आप चाहें तो एंटीऑक्सीडेंट्स को जो है लेना शुरू कर सकते हैं और इसको टालिएगा नहीं कल पे, क्योंकि अभी हम बात ये भी करने वाले हैं कि कल नहीं, आज ही सब कुछ है ना लक्ष्मी जी.
2: बिल्कुल तो, सही बात है, कल कभी नहीं आता है.
1: अरे देखिए ना, ये जो कल है ना, ये कभी सामने आता ही नहीं है. इसको ना ही इस पर छोड़ी कोई बात कभी पूरी होती है. आप खुद जानती हैं, हम जानते हैं, हमारे सभी साथी जानते हैं. आपने देखा होगा एक जो छोटा सा शब्द है ना कि कल करेंगे, ये बड़ा धोखेबाज है ना. और दिन बीतते ही वापस ये कल बन जाता है,
2: कल बन जाता है.
1: और आज कभी बन ही नहीं पाता है ये वर्तमान.
2: आज जो है वही कल होता है पास्ट, और आज जो है हमारा निकल जाता है वो पास्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है. इसलिए जो आज का काम है वो हमें आज कर लेना चाहिए, अदरवाइज वो रह ही जाता है.
1: एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो आप अपने शरीर में आज ही से बढ़ाना शुरू कर दीजिए. आज ही आप लेना शुरू कर दीजिए सारे वो खाद्य पदार्थ जिनके हम लोगों ने आपको नाम बताए. या आप भी कुछ जानते हैं तो आप भी हमसे अपनी जानकारी को साझा भी कर सकते हैं.
2: लेकिन सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट लेने से कुछ भी नहीं होगा, आपको पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी.

0: अपनी बॉडी को पूरा जो है हर तरह से, हर आपका हर बॉडी का पार्ट जो है पूरी तरह से एक्टिव होना चाहिए, तभी आपका, आप जो भी एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं या वेजीज लेते हैं या फ्रूट्स लेते हैं तो प्रॉपर
1: तभी, हाँ, कर
0: तभी काम कर पाता है बॉडी में।
1: ये नहीं कि जैसे हम आज कर लें फिर अगर आज हमारे पास अवेलेबल नहीं, आज हमने कर लिया कल फिर उसको छोड़ दिया, कह दिया कल करेंगे। अच्छा,
0: बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स होते हैं कि हम शुरुआत करते हैं कि हम आज नहीं करेंगे, कल से करेंगे, या पर्टिकुलर डेट से स्टार्ट करेंगे या पर्टिकुलर डे से स्टार्ट करेंगे। खासतौर से ज्यादा होता है कि भाई नहीं, सोमवार से या मंगलवार से नहीं करेंगे तो उसको थर्सडे से करते हैं, या फ्राइडे बहुत अच्छा दिन होता है उसी दिन, लेकिन कोई ना कोई काम ऐसा आ जाता है कि आप उस दिन भी शुरू नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए कोई भी मुहूर्त होना जरूरी नहीं है, आप सेम डे सेम टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं।
1: देखिए लक्ष्मी, ये कल आज की बातें ये सब अपनी जगह है, लेकिन हमें ये सोचना है कि हम ये जो करते हैं ना, ये कल कर लेंगे, ये केवल एक टाल मटोल है, ठीक है, और बहानेबाजी इसको कह सकते हैं। तो हम ये करते ही क्यों हैं, हमें इसको सोचना चाहिए। और इसका अगर मनोवैज्ञानिक से पूछेंगे तो इसका जवाब ये है कि पता है क्या होता है, जो लोग बहुत कल पे टालते हैं उनके अंदर या तो उस काम के असफल हो जाने का डर होता है, या उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, या फिर कहीं ना कहीं साधनों की कमी होती है, या आलस होता है, या काम का बहुत बड़ा दिखना होता है।
0: और साथ ही साथ बहुत लोग ये कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, एक्चुअली वो व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त रहते हैं, जिसकी वजह से
1: ये बात आपने बहुत अच्छी कही,
0: जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पाते हैं, वो प्रॉपर अस्त व्यस्त रहते हैं, वो तो मैनेज नहीं है, वो मैनेजमेंट उनका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से वो हर काम को कर नहीं पाते, क्योंकि 24 आवर्स तो पूरी दुनिया में हर आदमी के पास है, हर एक के पास है, और 24 आवर्स में तो बहुत कुछ हो सकता है, पूरी दुनिया बदल जाती है यहाँ बैठ के, और लोग जो है फॉरेन तक पहुँच जाते हैं 24 आवर्स में, और हम घर में एक जगह एक चेयर पे या एक बेड पर बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हाँ आज नहीं कल करेंगे,
1: और
0: इसको
1: कल करते हैं। इसमें देखिए ना कितने सपने टूट जाते हैं, कितने मौके हमारे हाथ से निकल जाते हैं। और दुनिया के सफल लोगों की जो आपने बात करी, वो अपने हर काम की शुरुआत यही सोचकर करते हैं कि आज ही उनका है, और वो ये पास्ट में उस चीज को नहीं सोचते हैं, और पार्ट पार्ट में अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं, वेट नहीं करते और शुरू कर देते हैं आज से ही।
0: तो शुरू, श्रोताओं, हम आप लोगों से यही कहेंगे कि कोई भी काम अगर आपके मन में है, आपके दिल में है, तो उसको आज शुरू कर दीजिए। बस स्टार्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, फिर तो काम चल निकलता है कि नहीं। स्टार्ट ही नहीं होगा तो फिर काम नहीं होगा। भले आप उसको स्टार्ट करें और जरा सा करके और फिर छोड़ दें, तो आपके दिमाग में एक चीज रहेगी कि हाँ, ये काम हमने कल शुरू किया था, इसको हमें कंटिन्यू करना है, तो इसको करते रहिए और आज ही करिए, स्टार्ट करिए। योगा डे जो है 21 जून को आ रहा है, तो उस दिन का भी वेट मत करिए।
1: अगर आपने सोचा हुआ कि योगा उस दिन से,
0: हाँ, उस दिन से स्टार्ट करें,
1: तो नहीं, बिल्कुल गलत।
0: तो ये बिल्कुल मत करिए, रेजोल्यूशन लें कि हम 21 डे को ही योगा करेंगे। हो सकता है संडे के दिन आपका कोई घर का काम एक्स्ट्रा निकल आए, आपको शॉपिंग करने जाना पड़ जाए, और फिर आप टाल दें कि नहीं फिर उसके नेक्स्ट दिन करेंगे, तो वो हो नहीं पाता।
1: एक बात मैं कहना चाहूंगी, बस चलते चलते ये गाना आपको सुनाऊंगी, बहुत प्यारा सा गीत आपका इंतजार कर रहा है, कि जीवन हर सुबह नया अवसर हमें देता है, और लेकिन ये अवसर केवल उनके लिए होता है जो आज को पहचानते हैं। बीता हुआ कल इतिहास है, आने वाला कल रहस्य है, और जिस पर हम खड़े हैं, आंखों से उसे देख रहे हैं, वो आज है, वो अवसर है, वो पुरस्कार है, और शायद इसीलिए इसे प्रेजेंट कहते हैं, है ना।
0: बहुत अच्छी बात कही है आपने।
1: तो चलिए, इस किसी भी काम को टालिए नहीं, और आज से ही हर चीज शुरू करिए जो आप चाहते हैं, अपनी हर लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो भी आप कदम बढ़ाना चाहते हैं, आज से शुरू करिए, और ईश्वर जरूर उसमें आपको सफलता देंगे।

0: हमारा लास्ट सेगमेंट जो है वो हमारी हमनवा रसोई, और उसमें क्या पकने वाला है, तो आज हम शेयर कर रहे हैं अपने श्रोताओं से मूंग दाल इडली।
1: अरे वाह।
0: तो मूंग दाल इडली के लिए आपको एक कप मूंग दाल और आधी कप उड़द दाल भी लेनी है, एक इंच जिंजर मतलब अदरक का टुकड़ा, दो तीन हरी मिर्च, एक टीस्पून जीरा लेना है और आधा टीस्पून हींग, 8-10 करी लीव्स और सॉल्ट टू टेस्ट और 1 टेबलस्पून ऑयल। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो दालें हैं उनको सेपरेटली अलग अलग अच्छे से धो के और सोक कर देना, भिगो देना है पूरी रात के लिए और ड्रेन कर लेना। उसके बाद उनका जो भी पानी है उसको, एक्सेस जो पानी है, ज़्यादा पानी है उसको हटा देना और उसको मिक्सी में पीस लेना है जिससे वो एक स्मूथ बैटर बन जाए।
1: बिल्कुल।
0: उसके बाद उसमें जो हमने ग्रेटेड जिंजर है, जो हमारी अदरक है वो कसी हुई, उसको चॉप्ड जो ग्रीन चिलीज हैं और ज़ीरा है, हींग, करी लीव्स, सॉल्ट, उनको सबको ऐड कर देना है उसी पेस्ट बैटर में और उस बैटर को फर्मेंट करने के लिए रख देना है कम से कम 6 घंटे तक। अब कुछ ऑयल को हीट करें और उसमें मस्टर्ड सीड जो होते हैं, सरसों के दाने और करी लीव्स को डालें, फिर उसके बाद बैटर में उसको डाल के उस बैटर में मिक्स कर दें। उसके बाद जो इडली मोल्ड है उसमें डालकर स्टीम में उसको पका लें। और जैसे कि इडली बनती है हमारे श्रोता जानते ही हैं, हर तरह की इडली जो इडली बैटर में जब बन जाती है तो उसको चेक करा जाता है।
1: कैसे चेक करना है वो? उसमें छोटी सी एक आप उसमें सीप डालकर देखिए, अगर वो एकदम क्लीन हो के क्लीन बाहर निकल रहा है
0: तो बन गया,
1: पक गई है।
0: और उसके साथ आप सांभर या चटनी के साथ उसको सर्व कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर ऐसे आपको इडली नहीं अच्छी लगती है तो आप उसके 4 पीसेस डाल कट करके उसको ऑयल में फ्राई करके भी खा सकते हैं, करी लीव्स और जो सरसों के दाने हैं उससे वो करके उसको भी
1: फ्राई करके, तो बहुत अच्छी लगती है चटनी के साथ, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। मैं इधर देख रही हूँ कि आप लोगों में ये सांभर के साथ खाने से ज्यादा लोगों को
0: ज्यादा अच्छी लगती है
1: चाय या उसके साथ, है ना, उसको छौंक कर बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत ही प्यारी और बहुत हेल्दी भी रेसिपी आपने जो बताई आज मूंग दाल वाली, तो मैं हर बार बोल देती हूँ कि मैं घर जाके बनाऊंगी और कभी बना पाती हूँ कभी नहीं भी बना पाती हूँ, लेकिन आप आज सुबह,
0: लेकिन आज ही बनाइएगा क्योंकि आज की बात हो रही है।
1: हाँ, आज अब कल तो बिल्कुल मैं टालती हूँ, वैसे मैं कोशिश ये करती हूँ मैं कल पर नहीं डालती हूँ। तो चलिए फिलहाल गाना हम सुन लेते हैं, लास्ट ये गाना है हमारे इस प्रोग्राम का, बहुत ही खूबसूरत गीत है, आइए सुनते हैं।

0: और दोस्तों इसी के साथ वक्त हमसे कह रहा है कि अब हम यहाँ से अपना प्रोग्राम वाइंड अप कर दें और ले आपसे इजाजत। तो दीजिए हम नवा कार्यक्रम से इजाजत वंदना और
1: लक्ष्मी को। नमस्कार श्रोताओं।

0: जमीन।
1: हमारे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होंठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
2: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
1: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4 से 5 बजे हमारे साथ रहिएगा आपकी पसंद के सफर पर।
3: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के हार जो
4: जगाऊं। पुलिस के आरोप में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि जांच में पता चला है कि दोनों आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान स्थित नेटवर्क के संपर्क में आए थे। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जनपद चित्रकूट को वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु आवंटित 70 प्रशिक्षणार्थियों के लक्ष्य के सापेक्ष 100% उपलब्धि प्राप्त करते हुए सभी 70 पात्र ग्रामीण युवाओं का पंजीकरण कर जनरल ड्यूटी असिस्टेंट ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। योजना के माध्यम से बीपीएल परिवारों, मनरेगा श्रमिक परिवारों, खाद्यान्न योजना के लाभार्थियों एवं अन्य पात्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। प्रशिक्षण का संचालन कुई करौंदी कला चित्रकूट स्थित प्रशिक्षण केंद्र पर किया गया। आगरा में आज भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। इस कार्यक्रम की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखी गई है। ब्रिक्स फोरम की बैठक में ब्राजील, चीन, मिस्र, रूस, दक्षिण अफ्रीका और भारत सहित ब्रिक्स देशों और सहयोगी देशों के नीति निर्माता, उद्योगपति और उद्यमी हिस्सा लेंगे। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे योग सप्ताह के अंतर्गत आज सुबह अमरोहा में नगर पालिका परिषद परिसर में आयुष विभाग के मास्टर योगा ट्रेनर योगाचार्य नीतीश भारद्वाज द्वारा अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम जनमानस को कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया गया। इस मौके पर प्रतिभागियों को सूक्ष्म व्यायाम, विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास कराया गया। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो, घंटे तरन्नुम के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

और 12:03 हो चुके हैं. प्रोग्राम स्वयं सिद्धा लेकर हाजिर है तरन्नुम, और उम्मीद है कि हमारे जितने भी लेडी लिसनर हैं वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और चुस्त दुरुस्त भी होंगी. और दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में हम उन महिलाओं को शामिल करेंगे जिन्होंने योग के क्षेत्र में ना सिर्फ अपने आप को सिद्ध किया बल्कि वो ना जाने कितनी महिलाओं के लिए अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए, संवारने के लिए एक इंस्पिरेशन बनी, प्रेरणा स्रोत बनी. तो अगर आपने अपनी जिंदगी की ताल को योग के मेल के साथ अच्छे से बिठा लिया, यानी तालमेल बिठा लिया, तो लाइफ का जो तालमेल जुड़ेगा ना वो कमाल का रिजल्ट देगा. तो चलिए शुरू करते हैं, पहले ये ट्रैक पहुंचाते हैं आप तक. और ये जो योग सप्ताह चल रहा है इसको आपको बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, और इसी से जुड़ी हुई बात करेंगे हम आज. और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बारे में बताएंगी और योग के बारे में क्या चीज़ें फ़ायदेमंद हैं आपके लिए वो भी हम शेयर करेंगे. सुनते रहिए स्टेशन ऑफ द नेशन, बोले तो रेनबो, तरन्नुम के साथ.

0: और जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है योग को जान लेना, और आप जब उसको दिल के करीब कर लेंगे, अपने दिल के पास कर लेंगे, तो आप यकीन मानिए आपका दिल, दिमाग, तन, मन, सब कुछ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वस्थ हो जाएगा। फिलहाल हमारे साथ लाइन पे हैं योगा अर्चना वर्मा, योगाचार्य हैं ये, और इनसे हम बात करते हैं योग को लेकर, उनकी लाइफ को लेकर। हेलो हेलो जी मैम, हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी मैम।
1: हाँ
0: मैम, आपका प्रोग्राम स्वयं सद्धा में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद करुणम जी, धन्यवाद बहुत बहुत।
0: मैम सबसे पहले तो आप अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगी क्या?
1: मैं अर्चना वर्मा हूँ, योगाचार्य प्राणिक हीलर, और अपनी संस्था को चला रही हूँ, उस पे कार्य कर रही हूँ।
0: जी जी।
1: उसके अलावा आध्यात्मिक कार्य में, अपने गुरुदेव के कार्य, सेवा के कार्यों में मैं जुड़ी हुई हूँ।
0: ओके, तो मैम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं की लाइफ में योग कितना काम का है?
1: महिलाओं की लाइफ में योग का जो है बहुत अच्छा रूप है, और महिलाओं का पूरा जीवन जो है बहुत तरह के उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। तो जो प्रारंभिक जीवन काल होता है, जब किशोरावस्था होती है, तभी एकदम से हॉर्मोन्स के परिवर्तन से उतार चढ़ाव आने लगते हैं, शारीरिक और मानसिक। तो उस समय भी अगर योग अभ्यास प्रारंभ कर दिया जाए तो एक अच्छी सी नींव बन जाती है, और उस पे पूरा जीवन अच्छे से जिया जा सकता है स्वस्थ रूप में। तो योग जो है नारी को शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करता है, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक, ये पूरा स्वास्थ्य पूरे जीवन अंतराल में प्रदान करता है। इसके योग की बहुत बड़ी भूमिका है, प्रारंभ से लेके जब मेनोपॉज होता है और जब ये पीरियड्स का अंत होता है, वो जो काल है उसमें भी पूरे जीवन काल में अगर योग अभ्यास नारी करती रहे तो मानसिक रूप से, शारीरिक और भावनात्मक रूप से संतुलित रहेंगी और पूर्ण स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करेगी।
0: बिल्कुल। अच्छा मैम, महिलाओं के लिए कौन सा योगासन सबसे ज्यादा लाभदायक है?
1: देखिए, योग अभ्यास में जब हम प्रारंभिक अवस्था में आते हैं, जब टीन एज की बात करते हैं, उस समय योग अभ्यास में हम लोग आसनों के तौर में पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन कराते हैं।
0: अच्छा।
1: उसके अलावा बच्चों को धामरी प्राणायाम अवश्य कराते हैं, जो मन के और भावनाओं को संतुलन में लाता है। आपका अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन, इसके अलावा योग निद्रा और छोटे छोटे ध्यान के पैकेज कराते हैं।
0: अच्छा।
1: फिर जैसे जैसे विकास की आयु होती है, जब उनका विवाह होता है, उस समय जो परिवर्तन का काल है, एडजस्टिंग करनी पड़ती है लाइफ के साथ और नया जीवन प्रारंभ होता है, तब बहुत से आसन जैसे भुजंग आसन है, सेतु बंधासन है, इन आसन को हम लोग इंक्लूड करते हैं। उसके अलावा ध्यान और प्राणायाम, योग निद्रा बेसिक तौर पे अवचेतन मन की ग्रंथियों का निवारण करती जाती है, जिससे किसी भी प्रकार का दोष जो है ना अंदर संचित नहीं होता है।

0: बिल्कुल समग्रता से जीवन जीते हुए उन्नति करते जाते हैं। और फिर आखिर इसी प्रयास से आगे बढ़ते हुए जब ये रजो निवृत्ति का काल आता है, वो भी 10 साल 12 साल चलता है महिलाओं के जीवन में, उस समय जैसे नींद के इश्यू आ जाने लगते, नींद नहीं आती है, हॉट फ्लैशेस है, या स्मरण क्षमता है, या शरीर की सारी जो आंतरिक क्रियाएं, सारा सिस्टम डल होने लगता है, उस समय योग की बहुत बड़ी भूमिका है। इसमें भी आसन बहुत अच्छे से करे जाते हैं, तो इसमें भी हमारे चक्की चाल आसन है, पूर्व तितली आसन है, भुजंग आसन है, सेतु बंध है, ये सब बहुत अच्छा काम करते हैं। और इसके साथ ही हम लोग प्राणायाम में प्राणाकर्षण कराते हैं,
1: अच्छा,
0: उच्चई कराते हैं, ये सब बहुत अच्छी भूमिका है जो पूर्ण स्वास्थ्य लाभ करते हैं। और जो सिर्फ आपके फिजिकल बॉडी पे नहीं, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी, सूक्ष्म कारण शरीर पे इसका पूरा पूरा प्रभाव आता है।
1: अच्छा मैम, महिलाएं जो हैं, जो लोग वर्किंग हैं या जिनके बच्चे स्कूल सुबह सुबह जाते हैं, आजकल तो चलिए छुट्टियां चल रही हैं, और ऐसे में उनको बहुत जल्दी होती है, टिफिन भी बनाना है, उनको अपने घर के भी काम करने हैं, अपने ऑफिस के लिए भी निकलना है, तो क्या योग सिर्फ सुबह ही हो सकता है या किसी भी टाइम आप कर सकते हैं?
0: देखिए, योग जो है सुबह करने का सर्वोत्तम काल है।
1: अच्छा।
0: उसके अलावा अगर योग सुबह नहीं आप कर पा रहे हैं तो खाना खाने के 4 घंटे के अंतराल पर आप योग अभ्यास कर सकते हैं।
1: 4 घंटे के अंतराल?
0: हाँ जी। तो उसके बाद आप जो है 20-25 मिनट का एक प्रोटोकॉल बना के
1: जी
0: शाम को भी कर सकते हैं अच्छे से।
1: तो मैम, अगर हम आपसे आपकी लाइफ में पूछें कि आपने कैसे, किससे प्रेरणा ली योग में जाने के लिए, योग करने के लिए, कितना टाइम आप दे पाती हैं अपनी फैमिली को, और ये जो योग के आप बता रही हैं ना कि क्रम चलता है, एक प्रोसेस चलता है कि अगर आप सुबह आपके पास टाइम नहीं है, 4 घंटे के बाद आप योग कर सकती हैं, या जो और आपके घर में कुछ कभी काम वाम होता है, तो कैसे कैसे मैनेज कर पाती हैं, कैसे तालमेल बिठा पाती हैं आप?
0: बहुत अच्छा प्रश्न। तो योग हमारे जीवन में तो प्रारंभ से ही था, शुरुआत में मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण की थी।
1: अच्छा।
0: और ईश्वर की शक्ति के प्रति हमेशा आकर्षित थी, तो जीवन में फिर गुरु दीक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल गया।
1: अच्छा।
0: और उन्हीं के उसके बाद जो एक नियम निष्ठा मिली तो वो अभ्यास प्रारंभ कर दिए, और धीरे धीरे उन अभ्यास से क्या हुआ, योग जीवन में बिल्कुल उतर गया।
1: अच्छा।
0: और उससे पता चला कि ये आत्म विकास का साधन है, ये आत्म जागरूकता का साधन है, ये हमें होलिस्टिक अप्रोच पे हमारा डेवलपमेंट करता है, ये पता चला। फिर धीरे धीरे इसी क्षेत्र में शिक्षण भी प्राप्त कर लिया, बहुत से प्रशिक्षण करे, शिक्षा इसी में प्राप्त करके फिर सिखाने के मतलब तौर पे आ गए, और सबको सेवा के रूप में प्रशिक्षण देने लगे, और धीरे धीरे इसी प्रशिक्षण के माध्यम से खुद का भी विकास होता गया, और ये सारे कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहे। तो समय निकालने के बाद जीवन शैली बन गई, सुबह जागृति हो जाती है क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक ही सेट हो गई अभ्यास के माध्यम से, तो पूरा 8 घंटे के समय पे भोजन कर लेते हैं, समय पे सो जाते हैं, सुबह प्रातःकालीन 3:30-4 बजे तक जाते हैं, और पूरा सब काम सिस्टमेटिक समय पे हो जाता है।
1: क्या बात है, तो क्या क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को जो ये प्रोग्राम सुन रही है योग को लेकर?
0: संदेश तो बस यही है कि अगर आप जीवन को प्रफुल्लता के साथ जीना है, समग्रता के साथ जीना है, सब कुछ प्राप्त करना है, उन्नति करनी है, तो फिर योग को जीवन में अपना लें। थोड़ा ही सा समय दें, 20-25 मिनट का एक प्रोटोकॉल बना के करें, और निरंतर करते रहे सब चार।
1: मैम बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और आपने एक, जैसे कहता ना कि कोई चीज सोई हुई थी अंदर, उसको आपने जगा दिया, और जो हमारी लेडी लिसनर्स हैं वो सुन रही होंगी और उनको भी ये लगेगा कि हाँ चलो अब नहीं सही, आज से ही शुरुआत करते हैं, योग को अपनी जिंदगी में आत्मसात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
0: धन्यवाद।
1: और फिलहाल 12:16 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है स्वयं सिद्धांत तरन्नुम है आपके साथ, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो योग के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं, योग को अपने जिंदगी में आत्मसात कर चुकी हैं, और लोगों को प्रेरित कर रही हैं कि वो भी योग की तरफ ध्यान दें, यानी ध्यान से ध्यान की तरफ जब हम लेकर जाते हैं किसी को तो हमारी जिंदगी और भी ज्यादा खुशहाल हो जाती है। फिलहाल वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद म्यूजिकल ब्रेक, और नेक्स्ट हमारे साथ कौन रहेंगी इसको जानने के लिए सुनते रहिए रेनबो, द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, टोल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मार।

0: जी हाँ बिल्कुल, शहर की लड़कियां ऐसी ही हैं हमारी, जो बिल्कुल हेल्दी हैं, वेल्दी हैं और कह सकते हैं कि एकदम चुस्त दुरुस्त हैं। 12:22 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है स्वयं सिद्धा, और दो दिन बाकी हैं, सिर्फ दो दिन बाकी हैं जब हम सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल योगा डे। और कहते हैं ना कि किसी भी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए आपके पास सेहत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आपके पास सेहत है तो समझ लीजिए आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी जो दौलत है वो आपके पास है। और अब जो आजकल की जो थीम है, यानी इंटरनेशनल योगा डे की 21 जून वाली जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो अगर आप चाहती हैं कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त रहें, एकदम लड़की की तरह लगे, तो इसके लिए आपको अपनी जिंदगी में योग को शामिल करना होगा। फिलहाल हमारे साथ अगली जो हमारी कह सकते हैं कि वो योग के लिए प्रेरित करने वाली हैं, योग टीचर हैं डॉक्टर जया श्रीवास्तव जी, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्वयं सिद्धा में।
1: जी धन्यवाद
0: मैम। थोड़ा सा अपने बारे में आप परिचय दे दीजिए हमारे लिसनर्स को।
1: जी मैं डॉक्टर जया श्रीवास्तव, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ, स्टेट आयुर्वेद कॉलेज लखनऊ में।
0: मैम सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है, और जैसा कि जो प्रोग्राम है ये हम योग को अपनी जिंदगी में आप कैसे शामिल करके अपनी एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, तो मैम क्या कहना चाहेंगी आप उन महिलाओं को जो अभी बहुत ही कम एज में हैं?
1: जी उन महिलाओं को जो बहुत ही कम योग एज में हैं, वो आजकल बहुत ज्यादा वो सेडेंट्री लिविंग एक जगह हो जाती है, रह के बैठ करके कंप्यूटर्स पे काम करते हैं या लैपटॉप वगैरह पे, एक का आजकल चलन चला है जिसमें कि आप अगर बैठे हो लंबे समय तक काम कर रहे हो, जैसे ज्यादातर इंजीनियर्स वगैरह हैं, या फिर जो भी आप लोग में से कोई भी जो सेटिंग वाला काम ज्यादा करता है, वो 45 मिनट्स में एक हल्का वॉक ले ले, 10 मिनट्स का वॉक लेकर के आके फिर अपनी सीट पे बैठ जाए, या फिर बैठे बैठे जो आप अपने रिलैक्सेशन, जो आप शरीर में जो जकड़ाहट होती है उसको रिलैक्स करने के लिए वाइब्रेट करके एक योगा का अभ्यास है जो कि 10 मिनट्स का है, आप सीट पे अपने बैठे बैठे काम करते हुए, जिससे कि फ्रोजन शोल्डर या फिर जो आजकल फिंगर्स से काम करते हैं उस पे, तो फिर ये सारे जो फिंगर्स के लिए रिलैक्सेशन, गर्दन और आंखों के लिए रिलैक्सेशन की जो एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो बैठे बैठे बहुत सारी बीमारियां हो रही है, ज्यादा सेडेंटरी लिविंग, बैठ बैठ के खाना, और इसकी वजह से पीसीओडी वगैरह का चलन आजकल गर्ल चाइल्ड में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर एडोलेसेंस में भी है, या फिर यंगर जैसे फीमेल ग्रुप में भी बहुत ज्यादा है। उसके लिए योगा का अभ्यास जो है वो उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, जीवन शैली में परिवर्तन के साथ साथ अगर डेली वो 30 मिनट से 45 मिनट तक अगर योगा का अभ्यास करते हैं मॉर्निंग में उठकर एक रेगुलर टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, उस समय उसके आधे घंटे बाद करते हैं या उसी समय करते हैं, तो उनको बहुत फायदा मिलेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस जो है और जो मेंटल रिलैक्सेशन है जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा निकल रहा है ना, वो उसकी वजह से उनकी पूरी साइकिल गड़बड़ हो रही है।
0: अच्छा
1: तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिलेड हो रही है।
0: अच्छा मैम एक चीज है कि क्या आप योग भी अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, आप योग क्रियाएं भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप पैकेट बंद जो फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, उनको अगर आप खाते रहें और योग भी करते रहें तो क्या इससे हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगा?
1: नहीं नहीं, इससे हेल्थ इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है, जो जीवन शैली में परिवर्तन करना है ना उसमें आपका डेली रूटीन, आप जैसे आयुर्वेद बताता है दिनचर्या रात्रिचर्या का पालन करना है, फिर इसके अलावा आपके भोजन का जो खाने का ट्रेंड है उसको भी टाइम पे खाइए, और नेचुरल फ्रूट्स लीजिए, नेचुरल मतलब जो भी नेचुरल फल सब्जी है सब कुछ आप प्राकृतिक चीजें लीजिए, पैक्ड चीजें या बंद जो है वो सब में प्रिजर्वेटिव्स है और उसमें ट्रांस फैट्स है, वो सारी चीजें आपको सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगी, ओबेसिटी बढ़ाती है, तो फिर आपका जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ओबेसिटी बढ़ेगी, तो आपका हार्मोन भी इम्बैलेंस होगा, तो सिर्फ आपका योग करने से ही नहीं होगा, और फिर ज्यादा मोटे लोगों को योग करने में भी तकलीफ होती है। तो आप जो है अपने डाइट को भी रूटीन में लाना है, स्लीप पैटर्न को भी अपने ठीक करना है, टाइम पे सोना, आजकल बच्चे रात में 2-2, 3-3 बजे रात में सोते हैं, उससे बॉडी में कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा रिलीज होता है, तो फिर वो कॉर्टिसोल फिर ओबेसिटी को ही बढ़ाता है, उसके अलावा मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता है, तमाम जो आजकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, स्लीप डिप्रिवेशन हो रहा है, योग निद्रा का पालन करें, टाइम पे सो जाए, 10 से 2 बजे की नींद बहुत आवश्यक है, 10 से

0: के बीच में जो लोग सो लेते हैं उनकी उनके में हार्मोनल इम्बैलेंस कम होता है। सिर्फ सिर्फ योग करेंगे ऐसा नहीं है, सब कुछ एक साथ करेंगे तभी ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से उनको मुक्ति मिल पाएगी।
1: अच्छा एक चीज मैम पूछना चाहेंगे कि जो आजकल की यंग जनरेशन है उनको फोन की कह सकते हैं ऐसी आदत पड़ी है कि मम्मी कितना भी कह लें पापा कितना भी कह लें लेकिन उनकी जो आदत है वो कहती है कि अगर हम फोन रख भी देते हैं तब भी हमें नींद वही आती है, 2 बजे आती है, 3 बजे आती है, 1 बजे आती है। तो क्या कोई ऐसी योग क्रिया है जिससे इस चीज पे जो कह सकते हैं एक लत बन गई है, एक गलत आदत पड़ गई है, क्या उससे दूर हुआ जा सकता है? क्या ऐसा कोई योग है जो हम रात में सोते टाइम बच्चों को प्रेरित करें कि ये जो योग क्रिया है उसे कर लो तो तुम्हारी नींद जो है वो अच्छी हो जाएगी, क्या ऐसा कोई एक योग क्रिया है?
0: जी आप जैसे कि जो बच्चे हैं जिनको बहुत ज्यादा मोबाइल की लत है तो पहले तो पेरेंट्स ही छोड़े मोबाइल का।
1: बिल्कुल
0: मोबाइल का यूज पेरेंट्स छोड़ेंगे, पेरेंट्स को कम देखेंगे ना बच्चे की कम कर रहे हैं ये यूज, तो बच्चे अपने आप छोड़ देंगे। फिर सबसे पहली बात है उनका एक सोने का टाइम फिक्स करो, अगर वो 10 बजे रात को सोते हैं तो 8 बजे तक उनको स्क्रीन से अलग कर देना है, ना टीवी देखना ना लैपटॉप ना फिर मोबाइल, क्योंकि ये जो ब्लू लाइट होती है ना, ब्लू लाइट आपके मेलाटोनिन जो होता है जो कि स्लीप हार्मोन होता है उसको हैम्पर्ड कर देता है, बिल्कुल बंद कर देता है। तो आप 2 घंटे पहले आप उनको अच्छे से खाना वाना खिला करके उस समय आप सोने को। अब जब वो सोने जाता है बच्चा, मान लीजिए 10 बजे बेड पे जाता है, तो उसको फिर आप थोड़ी देर के लिए ओम चैंटिंग करने के लिए कहिए, भ्रामरी प्राणायाम करने को कहिए, है ना, और थोड़ा सा मेडिटेशन मतलब अपने आप में शांत बैठने को करे। दिन भर में उसने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये सारी सोच डेवलप करने को उसको बोले, और भ्रामरी प्राणायाम करेंगे फिर योग निद्रा थोड़ा सा अगर वो सीख पाए बच्चा तो योग निद्रा से उसको बहुत अच्छी नींद आएगी। और 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद बहुत जरूरी है बिना ब्रेक के, जिसमें कि आप एक बार भी यूरिन करने के लिए भी ना उठे, तो वो अच्छी नींद मानी जाएगी। फिर उसका हार्मोन जो है वो बैलेंस होगा, फिर वो उसके जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जितनी चिड़चिड़ाहट है वो सब खत्म होगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा उस बच्चे का।
1: मैम बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप प्रोग्राम में शामिल हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैडम।
1: और 12:29 हो चुके हैं और हमारे साथी योगाचार्य डॉक्टर जया श्रीवास्तव जी, और उन्होंने बताया कि अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि स्क्रीन टाइम से आपको जो दूरी है वो बनानी होगी, स्क्रीन टाइम को कम करना होगा, तभी आप एक खूबसूरत परी की तरह नजर आ सकती हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना। टोल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: और आपको वक्त बता दें, 12:36 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है स्वयं सिद्धा। और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे महिलाएं अपने जिंदगी में योग को शामिल करके एक अच्छी और बेहतर लाइफ को जी सकती हैं। बहुत सारी योगाचार्य हैं जिनसे हमने आपसे बात कराई, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमसे जुड़ेंगी इस प्रोग्राम में। आपको सुनते रहना होगा रेनबो। सुंदर

0: जी 12:40 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है स्वयं सिद्धा, और अभी हमने डॉक्टर ऋचा निगम से हम बात करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने बात करी योगाचार्य जी डॉक्टर अर्चना वर्मा थी, उसके बाद हमने बात करी डॉक्टर जया श्रीवास्तव जी थी, और उन्होंने ये बताया कि अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में योग को शामिल करेंगे तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ऐसे चमत्कारी फायदे होते हैं जिनको हम और आप हजारों करोड़ों रुपए की दवाएं खाकर भी नहीं पा सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ लाइन पर और हैं, और वो जो हैं वो भी योग इंस्ट्रक्टर हैं, और उनका नाम है डॉक्टर ऋचा निगम जी। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार। मैं सभी श्रोतागणों को अपना नमस्कार कर रही हूँ, क्योंकि हमारे मानना ये है कि जो महिलाएं हैं वो महिलाएं सबसे पहले योग के लिए जागरूक होनी चाहिए।
0: जी जी,
1: ठीक है। तो मेरा नाम योगिनी ऋचा निगम है
0: जी।
1: और मैं लगभग 25 साल के रिसर्च लेडीज हेल्थ पे करने के बाद में 2013 से अपना सेंटर बालागंज लखनऊ में चला रही हूँ।
0: क्या बात है।
1: तो जो निर्मल योग मेडिटेशन सेंटर के नाम से है, आप गूगल वगैरह पे भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम सभी पर हम लोग अवेलेबल हैं। तो लेडीज के हेल्थ पर हम लोग बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा मानना रहता है कि अगर एक नारी शिक्षित है, अगर एक नारी स्वस्थ है, तो वो 3 पीढ़ी को स्वस्थ करती है और 3 पीढ़ियों को आगे अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए वो पूरी तरह से अग्रसर हो सकती है, क्योंकि उसी को आगे चल के बच्चे को जन्म देना है, तो फिर वो आगे और भी पीढ़ी जो आएंगी वो भी स्वस्थ करने के उनको शिक्षा दे सकती है।

0: तो मैम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जैसा कि महिला कहती है कि हम बिल्कुल फिट हैं, हम स्वस्थ हैं, तो कैसे पता चलेगा कि वो जो कह रही है कि हम स्वस्थ हैं, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको अपनी हेल्थ में इम्प्रूव करना है, कैसे कैसे जानेगी वो महिला?
1: देखिए, हम लोग होलिस्टिक योग सिखाते हैं, तो इसमें हम लोग जो है वो थ्री डायमेंशनल अप्रोच का जो है वो विधा लेते हैं, जिसमें कि हमारा ये मानना है कि एक नारी तभी स्वस्थ कहला सकती है जब वो फिजिकली फिट हो, मेंटली स्ट्रांग हो और इमोशनली बैलेंस हो। अगर ये तीनों चीजें एक नारी में है तो वो अपने आप को स्वस्थ कह सकती है, क्योंकि कोई भी योग की बात करता है तो आजकल इतना भ्रांति फैल गई है कि किसी को अगर योग के बारे में बोलो तो बोलेंगे अरे मैं तो पतली हूँ, मुझे योग की जरूरत नहीं है। तो क्या आप अपने आप को स्वस्थ कह रही हैं अगर आप पतली हैं? क्योंकि आप ये समझिए कि पतला होना, मोटा होना, ये आपके स्वस्थ होने का पैमाना नहीं होता है। आपके स्वस्थ होने का पैमाना है कि आप किसी भी छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा नहीं रही हैं, चीजों को जो भी है उसके रिएक्शंस को सोच समझ करके आप लोगों को दे रही हैं, या फिर आप अपनी डाइट जो ले रही हैं वो संतुलित आहार हो, आपका जो भी सात्विक भोजन है वो आप कर रही हैं, तो घर पे आप जो भी एक्ट कर रही हैं, बच्चों को किस तरह से पाल रही हैं, उनके उनसे आपको जो भी स्ट्रेस हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, या हस्बैंड के साथ में बेचारा जो थका रहा दिन भर के बाद आता है, आप उनके साथ बात करने के बजाय शिकायत का पिटारा खोल के बैठ जाती हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो आप जब खुद में संतुष्ट होंगी तो ही आप दूसरे को संतुष्टि प्रदान कर सकती हैं।
0: बिल्कुल
1: क्योंकि तो कहना क्या सेंस है यहाँ पर कि अगर आपके बैंक बैलेंस में जीरो है तो आप किसी को उधार नहीं दे सकते या किसी को बांट नहीं सकते।
0: बिल्कुल
1: तो जो खुशियां आपको बांटने के लिए आप सोच रहे हो कि लोग परिवार में सब मुझे प्यार करे, सब मुझे सम्मान दे, तो क्या आप वो कर पा रही हैं? आप खुद को सम्मान दे पा रही हैं? आप खुद को प्यार कर पा रही हैं? यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि हर लेडी को सेल्फ लव सीखना चाहिए, और सेल्फ लव वो तभी सीख पाएगी जब वो अपने ऊपर थोड़ा फोकस करेगी। क्योंकि तो नारी परिवार में सबके ऊपर तो ध्यान दे देती है, पर अपने बारी जब आती है तो अपने को सबसे पहले इग्नोर कर देती है।
0: बिल्कुल
1: तो हमारी ये मुहिम बस इसीलिए है कि हर नारी जागरूक हो, कि वो अपने लिए ध्यान देना शुरू करे, और इसी के उस पर हम लोग मेंटल पे भी ध्यान देते हैं, काउंसलिंग वगैरह करते हैं लोग, लेडीज की उनके पर्सनल मैटर्स को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इवन हमारे पास में जो लेडीज आती है उनको बच्चे कैसे पालने हैं उनको भी सिखाते हैं, ताकि वो बच्चों को एक अच्छा एनवायरमेंट दे पाए। पालने का मतलब चूचू पॉटी वगैरह साफ करना नहीं, इवन वो बच्चों को क्या शिक्षा देनी है, जो बात वो कह रही है वो किस वे में कहना चाहिए, अपनी बात को रखने का एक तरीका। फिर उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस जो भी आती है उसमें आपका योग में हम लोग अष्टांग योग को लेके चलते हैं, जिसमें कि आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे एस्पेक्ट हम लोग जो है वो कवर करते हैं। और बहुत ही इजी वे में कि आप दिन भर घर में जो काम कर रही हैं उसी में ही आप योग को धारण कर लीजिए। आपको पता भी नहीं चले कि आप एक योग मैट बिछाएंगे तभी आप योग हो, ऐसा नहीं, आप योग करिए नहीं, योग को धारण कर लीजिए। तो थोड़ा सा ये हमारा होलिस्टिक योग जो है थोड़ा वाइड लेवल पर है, जिसमें कि हम लेडीज को धीरे धीरे करके मोटिवेट करते हैं, और बहुत सारी लेडीज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जिससे कि उनके जीवन में जो भी परिवर्तन आए उससे वो बहुत सेटिस्फाई फील कर रही हैं। तो अभी तो यही हमारा उद्देश्य है इस योग संस्था को चलाने का।
0: तो मैम, क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे एजिंग शुरू हो जाती है महिलाओं में 35 के बाद, कहा जाता है डलनेस आ जाती है, फाइन लाइंस आ जाती हैं, और जो तेज होता है चेहरे पे, जो एक स्पार्क होता है, जो नूर जैसे कह सकते हैं, वो कम होने लगता है, क्या योग करके वो चीजों को मेंटेन रखा जा सकता है?
1: बिल्कुल रखा जा सकता है, लेकिन योग करके नहीं, योग को धारण करके रखा जा सकता है। आप ये सोचिए कितना भी आप मेकअप कर लीजिए या कितना भी आप कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर आपके स्ट्रेस है माइंड में, आपके चेहरे पे वो नूर आ ही नहीं सकता है।
0: बिल्कुल
1: जब
0: सही।
1: आप रिलैक्स होंगी तब आपके बॉडी के ऑर्गन सही से काम करेंगे, आपके हॉर्मोन्स अच्छे से सिक्रेट होंगे, ऑक्सीजन प्रॉपर जो है वो माइंड तक जाएगी। जब ऑक्सीजन का प्रॉपर फ्लो रहेगा आपके अंदर तो आपके चेहरे पर ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है, और आप स्ट्रेस भी अपने आप को कंट्रोल कर सकती हैं जो स्ट्रेस आपको हो रहा है। तो चेहरे पे नूर जो अंदर से आता है, ना कि फेशियल करा करके या किस से, तो योग को जब आप धारण करती हैं, यानी कि आप अपने जो भी शब्द कह रही हैं वही सोच रही हैं और वही उसका जो है हो रहा है, तब आपका एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होता है, और वो कॉन्फिडेंस लेवल केवल योग से ही आ सकता है। मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं करना चाहूंगी, पर जिम जाने पे आपकी फिजिकल फिटनेस

0: बन सकती है, वॉक करने से आपकी जो है वो एक्टिवनेस आ सकती है
1: मेंटल
0: योग खुद। हाँ जी बताइए।
1: मेंटल फिटनेस जो है वो आपको योग के माध्यम से ही।
0: एक्टली अब फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस भी आपको योग के साथ मिलेगी, और जब आपके आप मेंटली स्ट्रांग होना स्टार्ट करेंगे आप अपने इमोशंस पे अपने आप ही कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो है
1: बिल्कुल बिल्कुल खूबसूरत दिखना और खूबसूरत लगना, तो वो ये फेशियल और ये सारी चीजों को भी इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है कि वो ना करें, लेकिन नेचुरल तरीके से करें। लेकिन अगर आप योग अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे तो फिर आप ऑलरेडी खूबसूरत लगेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: इसके लिए हम लोग इस समय एक कैंप भी चला रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: जो कि आज से स्टार्ट हुआ है और ये आपका 23 तारीख तक चलेगा, हमारे सेंटर पे भी है, हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सिखाते हैं।
1: अच्छा,
0: तो किसी को अगर संपर्क करना है हमसे तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं, लेकिन लेडीज केवल सिखा रहे हैं, जिसमें कि आपका नंबर ये नोट कर लीजिए कि 8577827023, ये हमारे निर्मल योग मेडिटेशन सेंटर का ऑफिशियल नंबर है 8577827023। आप इस पे संपर्क करके और इस कैंप में इनरोल करा सकते हैं।
1: निशुल्क है ये? निशुल्क है ये?
0: बिल्कुल निशुल्क है, बिल्कुल निशुल्क है। केवल आपको हमें व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करना होगा, ये व्हाट्सएप पे भी नंबर अवेलेबल है। जिसने नहीं नोट किया वो एक बार फिर मैं बोल दे रही हूँ, आप नोट कर लीजिए 8577827023।
1: मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा वक्त दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें करी और योग के बारे में।
0: धन्यवाद, आपके जरिए हमारी बात भी बहुत सी महिलाओं तक पहुँच पाएगी, और मैं चाहती हूँ कि मेरे इस उद्देश्य में सभी महिलाएं आगे आए, ताकि सभी जागरूक हो, सभी स्वस्थ हो, सबके परिवार खुशहाल रहे और सबके बच्चे एकदम अपनी माँ को एक आइडियल रूप में देखे जैसे वो चाहते हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी, और हमारे साथ ऋचा जी थी और उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी। तो अगर आप चाहती हैं वाकई अंदर से खूबसूरत होना, वाकई नूरानी होना, तो फिर आप अपनी जिंदगी में योग को धारण कर लीजिए।

0: जी हाँ, अगर आप इसी तरह खूबसूरत दिखना चाहती हैं, खूबसूरत लगना नहीं बल्कि दिखना चाहती हैं, तो फिर आप अपने जिंदगी में योग को शामिल कर लें, योग को धारण कर लें, तो आप जिंदगी को बहुत ही हेल्दी तरीके से जी सकती हैं। और फिलहाल हमारे साथ लाइन पर हैं प्राची जैन जी, जो इस बारे में और ज्यादा बात करने वाली हैं। वक्त बहुत कम है हमारे पास, लेकिन बातें इतनी विस्तार की हैं और ये जो फील्ड है, ये जो क्षेत्र है योग के बारे में, इतना विस्तार है इसमें कि अगर इसमें घंटों बातें की जाएं तो भी कम है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप एक छोटी सी छोटी योग क्रिया को अपनी लाइफ में शामिल कर लेती हैं, तो फिर आपकी लाइफ एकदम वाह बन जाती है, कमाल की बन जाती है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्वयं सिद्धा में। मैम थोड़ा सा अपने बारे में आप संक्षिप्त परिचय दे दीजिए।
1: जी मेरा नाम प्राची जैन है और मैं एक योग प्रशिक्षिका हूँ। पिछले 10 साल से योग सिखा रही हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन, और महिलाओं को बच्चों को खासकर जागरूक कर रही हूँ योग के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति।
0: तो मैम महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
1: महिलाओं के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि महिलाएं परिवार में सबका ख्याल रखती है, अपने पति का, बच्चों का, सास ससुर का, लेकिन कहीं ना कहीं अपना ख्याल रखना भूल जाती है। तो मैं महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि अपने स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बनाइए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकती हैं, अपने आसपास के माहौल को खुश रख सकती हैं, और अपने परिवार का और अपने बच्चों का बेहतर तरीके से ध्यान रख सकती है।
0: और मैम 2 मिनट आपको रोकना चाहेंगे, 2 सेकंड के लिए बल्कि। जो महिलाएं 50 क्रॉस कर चुकी हैं, 50 की उम्र पार कर चुकी हैं, उनको कौन से ऐसे योग हैं, योग क्रियाएं हैं जो अपनी जिंदगी में जरूर धारण करना चाहिए?
1: तो जो 50 से ऊपर की महिलाएं हैं, सबसे पहले तो हमें अपने जीवन में प्राणायाम को जरूर उतारना चाहिए। प्राणायाम हमारी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा होना चाहिए, और उसके साथ कुछ सूक्ष्म व्यायाम क्रियाएं हैं जो हमको करनी चाहिए। बहुत इंटेंस वर्कआउट में, योग आसन में अगर हम ना जाएं 50 से ऊपर तो ज्यादा अच्छा है। सूक्ष्म व्यायाम है उनको जीवन में उतारिए, और सूर्य नमस्कार को अगर हम जिंदगी में ला सकते हैं, अपने दिनचर्या में उतार सकते हैं, तो सूर्य नमस्कार 12 आसन को मिलाकर बना है, और इन 12 आसन में हम हर तरह के आसन को इंक्लूड करते हैं, जिसमें हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, सारी तरह के पोस्चर्स ऐड हो जाते हैं। तो सूर्य नमस्कार अगर हम कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार करें, और सूर्य नमस्कार को करने की भी कई विधियां हैं। जैसे अगर आप मैट पे नहीं कर पाते हैं तो आप कुर्सी पे भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो अलग अलग वेरिएशंस है सूर्य नमस्कार के, और जो कि एक प्रॉपर टीचर की गाइडेंस में ही हम लोगों को सीखनी चाहिए।
0: अच्छा, तो मैम इसमें योग क्रियाओं के साथ साथ खान पान पे कितना ध्यान दें वो महिलाएं जो 50+ हैं?
1: खान पान पे तो देखिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। पूरा पोषण लीजिए, अपने भोजन में फाइबर को इंक्लूड कीजिए, प्रोटीन को इंक्लूड कीजिए। प्रोटीन एक हमारे जो कोशिकाएं हैं उनकी संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, प्रोटीन को ऐड करना है। हेल्दी फैट्स को ऐड कीजिए, लेना है नुकसान करता है, लेकिन हेल्दी फैट जैसे हम नट्स खाते हैं, नट्स के रूप में थोड़ा हमको देसी घी खाना चाहिए, तो हेल्दी फैट्स को लेना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कार्बोहाइड्रेट्स को भी छोड़ देते हैं पतले होने के लिए, मोटापे से बचने के लिए, तो एक लिमिट में कार्ब्स भी बॉडी को बहुत जरूरी है। तो पोषित आहार लीजिए, बाहर का खाना मत खाइए, ज्यादा चिकना तेल मत खाइए, और जो चीजें बेसिक प्रिकॉशंस हैं भोजन में कि चीनी, प्रोसेस शुगर नहीं खाएं तो बेहतर है, मैदा का सेवन ना करें तो बेहतर है। बाकी आप पूरा पोषण लीजिए, दाल चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, फलों को जरूर इंक्लूड कीजिए अपने भोजन में। और समय भोजन क्या खाना है, इसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि किस समय पर भोजन करना है, वो अपने एक रूटीन को सेट करना जरूरी है। जैसे हमारे शास्त्र भी बोलते हैं कि दिन ढलने के बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए, तो अगर पॉसिबल है तो ऐसा फॉलो कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप शुगर से, शुगर के

0: किसी भी बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं तो फिर अपने डॉक्टर की सलाह से ही आपको ये टाइम डिसाइड करना चाहिए।
1: मैम बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आप इस प्रोग्राम में आप शामिल हुई, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: और 12:57 हो चुके हैं, प्रोग्राम से हम सदा को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत। तरन्नुम को मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जिसका नाम है होठों पे तेरी बात। और आज का सवाल आपसे ये है कि जिंदगी में आपको पहली खुशी कब मिली थी। आप हमें मेल कर सकते हैं FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर।

नमस्कार। दोपहर के 1 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में बहुत मजबूती से समाया हुआ है और देश की सीमाओं को पार कर चुका है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे प्राचीन ग्रंथों से लेकर वैश्विक मान्यता तक योग ने भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में अपनी जड़ें जमाए रखते हुए सीमाओं को पार किया है। अयोध्या में निर्मित राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय का लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्र नायकों का सम्मान, वीरों वीरांगनाओं के प्रति श्रद्धा भाव हमें राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा प्रदान करता है। उसी राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से प्रेरित होकर हमारी डबल इंजन की सरकार ने सरकार बनने के बाद महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती, महारानी अवंतीबाई लोधी, वीरांगना झलकारीबाई, वीरांगना उदा देवी के नाम पर अनेक अभियान प्रारंभ कराए। पीएससी की 3 नई बटालियन वीरांगना अवंतीबाई लोधी, झलकारीबाई कोरी, वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर हमारी सरकार ने गठित की। तीनों बटालियन में केवल बेटियां ही भर्ती होंगी, ये भी सरकार ने तय किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कहा कि अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है। मैं कह सकता हूं एसआईटी जांच दूध का दूध पानी का पानी करके रहेगी। मैं सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी अनर्गल टिप्पणी व बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हों। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो वो एसआईटी को उपलब्ध करवा दे, एसआईटी जांच करके देगी। उन्होंने कहा कि लोग अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आंकलन के लिए कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता

बरतने के निर्देश दिए हैं। बदायूं जिले के थाना वजीरगंज क्षेत्र में आज गंगा एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस चालक को नींद आने के कारण पलट गई। जानकारी के अनुसार बस में करीब 100 यात्री सवार थे। हादसे में करीब 2 दर्जन यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बस बनारस से दिल्ली जा रही थी, सुबह चालक को नींद आने से यह हादसा हो गया। घायलों को पुलिस ने रेस्क्यू कर अस्पताल में भेज दिया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबोज़, घंटे तरन्नुम के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना।
3: तौल कर ही नहीं, गिनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
6: जी 1:04 हो चुके हैं, प्रोग्राम हो टू पर तेरी बात लेकर हाजिर है तरन्नुम। और सवाल आज का ये है कि आपको आपकी जिंदगी में पहली खुशी कब मिली थी। आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर, और आपको बता दें कि कुछ ही देर में यानी 1:10 पर सुनेंगे आप इलाकाई खबरें। सुनते रहिए रेनबो

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी।
2: ये आकाशवाणी लखनऊ है, इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की मराद तकसीम करेंगे। वो अमली तौर पर मुल्क भर से मुस्तफीद होने वालों से खिताब करेंगे। मेहनत और रोजगार के वजीर डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 में शुरू होने वाली इस स्कीम के तहत 63 लाख से ज्यादा कारकुनान, जिनमें से तकरीबन 30% खवातीन हैं, उनको बाज़ाब्ता अफरादी क़ुव्वत में ज़िम किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस स्कीम से मुल्क भर में 15 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे। इस स्कीम के तहत लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी और मेरठ समेत रियासत के 17 अज़ला में प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। इस स्कीम का मकसद रोजगार की तख्लीक में तेजी लाना, रोजगार की अहलियत में इजाफा और तमाम शोबों में समाजी तहफ़्फ़ुज़ की कवरेज को बढ़ाना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योगा की जड़ें हिंदुस्तान के रूहानी और सकाफती विरसे में गहरी हैं और इसने मुल्क की सरहदों को अबूर किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मरकजी वजीर मुमलिकत प्रताप राव के एक मजमून का इश्तराक करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बारे में बात की कि किस तरह कदीम नसूस से लेकर आलमी पहचान तक योगा ने सरहदों को अबूर किया है, जबकि हिंदुस्तान के रूहानी और सकाफती विरसे में गहरी जड़ें हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपने अयोध्या दौरे के दौरान अयोध्या धाम और रुदौलिया से मिली हलके को करोड़ों के तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात दी। वजीर आला ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने के बाद रुदौलिया से मिली हलके में मां कामाख्या धाम नगर पंचायत को 25 करोड़ रूपये से ज्यादा के प्रोजेक्टों की सौगात दी। साथ ही वीरांगना झलकारी बाई के आलिशान मुजस्मे की नकाब कुशाई के साथ 126 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इस दौरान वजीर आला ने अपने खिताब में अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे के मामले को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। वजीर आला ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की गुजारिश पर हुकूमत ने SIT तश्कील की है और यह जांच पूरी शफाफियत से होगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास कोई दस्तावेजी सबूत है तो उसे SIT को सौंपे और जांच पूरी होने तक गैर जरूरी बयानबाजी ना करें। वजीर आला ने कहा, राम भक्त

0: से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है, 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है, 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
1: ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने चार रियासतों तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए कम से कम इमदादी कीमत एमएसपी पर दालों और तेल के बीजों के बड़े पैमाने पर खरीदारी को मंजूरी दे दी है। ये खरीदारी इन रियासतों में प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीदारी को मंजूरी दी गई है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इतवार को होने वाले नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की। उन्होंने इम्तिहानी अमल में दयानतदारी, शफाफियत और कारकर्दगी के आला मेयार को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम जरूरी इंतजाम को यकीनी बनाएं और आजादाना और मुनसिफाना तरीके से दोबारा इम्तिहान के इनेकाद के लिए चौकसी इख्तियार करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क्यादत में हिंदुस्तान ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर मबनी गुज़िश्ता 12 सालों में काबिले जिक्र तरक्की की है। इस मौके की मुनासिबत से ऑल इंडिया रेडियो न्यूज एक खुसूसी सीरीज पेश कर रहा है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए तरक्की के 12 साल। आज के शुमारे में हम शुमाल मशरक की तब्दीली के लिए हुकूमत के अहम इकदाम पर रोशनी डाल रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश के इंसदादे दहशतगर्दी स्क्वाड यूपीएटीएस ने बुलंदशहर जिले से दो मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग से है। इन पर गैंग के दहशतगर्द नेटवर्क में शामिल होकर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम है। और महकमा मौसमियात ने रियासत के मशरकी और मगरबी अजला के अलग अलग इलाकों में 24 जून तक गर्मी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अगले 2-3 दिनों के दौरान रियासत के ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बतदरीज इजाफे की भी पेशगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

0: दिन
1: जी एक बजकर 16 मिनट हो चुके हैं। एक बार फिर से शुरू चुका है प्रोग्राम होटो पे तेरी बात। तरन्नुम है आपके साथ और मेरे साथ बहुत सारे मेल हैं, पढ़ेंगे। और आपसे पूछा हमने कि आपको लाइफ में सबसे पहली खुशी कौन सी मिली, आप हमसे शेयर कर सकते हैं।

1:23 हो चुके हैं और अब जल्दी से मेल पढ़ रहे हैं। और आज हमने सवाल ये किया है कि कौन सी खुशी, मतलब लाइफ की पहली खुशी आपको कब मिली थी। और इसके साथ हमारे पास बहुत सारे मेल आ चुके हैं। विवेक शर्मा जी का मेल आ गया है, केशव नगर नेरा आशीष मिष्ठान भंडार दुदौली मार्ग लखनऊ से लिख रहे हैं कि मुझको सबसे ज्यादा खुशी उस दिन हुई थी जब मेरी शादी हुई थी। क्या बात है। और दूसरी इनको खुशी जब मिली जब इनकी धर्म पत्नी को बेबी हुआ था। अच्छा, मतलब इनको हुआ था और धर्म पत्नी को हुआ था। और लिख रहे हैं आई लव हर। और इतना अच्छा ये लगा हमें मेल जब आपने ये बताया कि आपकी खुशी आपको पहली जब मिली जब शादी हुई, दूसरी जब मिली जब आपको बच्चा हुआ बेबी हुआ, और तीसरी खुशी आपने लिखी है आई लव हर। और ये जो लाइन आपने लिखी है ना कि आई लव हर, इससे ये साबित होता है कि आप अपनी वाइफ को कितना ज़्यादा इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और चाहते हैं। और ऐसी ज़िंदगी जो है ना, बस ऐसे ही आपकी ज़िंदगी कटती रहे पत्नी के साथ, आपके प्यारे से बच्चे के साथ। मेरी यही आपको शुभकामनाएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो मेल आ गया है, रामराज जी का मेल आ गया है, होटो पे तेरे बाद जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से लिख रहे हैं। रामराज, राजू, भानु, शंकर भैया, बंटी यादव, पप्पू, पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका लिख रहे हैं। सबसे पहले हमारी तरफ से तरुण बिटिया को प्यार भरा नमस्कार। रामराज जी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप और शुभ आशीर्वाद पहुंचे, क्या बात है। आपके जो आशीर्वाद है ना, बस ऐसे ही बना के रखिएगा, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। रामराज जी आगे लिख रहे हैं कि हमको पहली बार खुशी तब मिली थी, वैसे तो बहुत सारी खुशियां उनको मिली हैं, लेकिन पहली खुशी उनको जब मिली थी जब इन्होंने रेडियो पर पोस्ट कार्ड भेजते थे। अब पोस्ट कार्ड मिल नहीं रहे हैं जब रेडियो पर ईमेल की अब सुविधा हो गई है। अच्छा, पहली बार इनको खुशी तब मिली थी जब इन्होंने रेडियो पर अपना लेटर भेजा था, पोस्ट कार्ड भेजा था। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए। और मेरे पास शिव पूजन लाल जी का भी मेल आ गया था। हेलो तरनु मैम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं शिव पूजन लाल जी। और विलेज सानी गावा लखीमपुर खीरी से हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। टॉपिक पे बोल रहे हैं कि मुझे पहली खुशी मेरे स्कूल टाइम मिली थी। अच्छा, जब पहली बार आप स्कूल गए होंगे, कितना अच्छा दौर, बहुत अच्छे से उसको ड्रेसअप करती हैं, और कभी कभी बालों में तेल वेल लगा के भी भेजा जाता था और कहा जाता था देखो अच्छे से बोलना, गुड इवनिंग करना, गुड मॉर्निंग करना टीचर्स को, और जाके सबको अच्छे से हाय हेलो करना। और वो जो डर था, वो जो एक हिचकिचाहट होती थी, वो शायद सोच लो तो लगता है कि अरे कितने, मतलब कितने सीधे साधे लोग थे हम लोग। लेकिन फिलहाल आपने हमें भेजा, आपने बताया कि तब आपको अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें भेजा। और जॉन डिकेस्ट्रो जी का मेल आ गया है सहारनपुर से। इतनी जल्दी इन्होंने मेल कर दिया है ऑटो पर तेरी बात के अलावा हॉट मेल के लिए। और आपसे यही कहना चाहेंगे जॉन डिकेस्ट्रो साहब कि आप इस प्रोग्राम में अगर हमें मेल भेजते और आज का जो टॉपिक है उस पर अगर आप हमें आंसर करते तो बहुत अच्छा लगता। और आज का जो टॉपिक है वो हमने ये लिया है कि आपको लाइफ में पहली खुशी कब मिली थी। अगर आप इस पर हमें भेजेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। विवेक शर्मा जी का भी मेल आ गया है मेरे पास और इनका मेल हम शामिल कर चुके हैं। रोशनी रावत जी का मेल आ गया है और लिख रही हैं नमस्ते तरन्नुम दीदी, आप कैसी हैं? और नमस्ते रोशनी, हम अच्छे हैं। प्रोग्राम इनको लाजवाब लग रहा है, बिंदास लग रहा है, और ये सुबह से मैं याद कर रही थी वैसे मैं आपको हमेशा सुनती हूँ, मगर आज स्पेशल लग रहा है कुछ। अच्छा, स्पेशल लग रहा है, मतलब क्या स्पेशल लग रहा है ये आपने नहीं बताया। चंडीगढ़ में है, प्रोग्राम सुन रही हैं। लिख रही हैं जिंदगी में पहली खुशी इनको तब मिली थी जब इनका 12th का रिजल्ट आया था, क्योंकि मेरे नंबर मेरे चाचा की लड़की से ज्यादा थे। उस दिन मैं बहुत ज्यादा खुश थी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, लड्डू बंटवाए थे। लड्डू तो बटेंगे ही भाई, नंबर आपके अच्छे आए थे। और होता भी यही है कि जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं और मेहनत का जब फल मिलता है ना, तो उसकी जो खुशी होती है उसको आप जो वर्ड्स हैं ना, उसको जो अल्फाज हैं उनमें आप पिरो नहीं सकते। वो जो खुशी का एक एहसास होता है उसको एक्सप्रेस करना बहुत ही मुश्किल काम होता है।

है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें मेल किया। और महेंद्र दीपन जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, मेल करते हैं और बहुत ही खूबसूरती से अपने जो मेल हैं हमें भेजते हैं, लिख रहे हैं कि राजस्थान के नागौर जिले के गांव रूड़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं। आज का विषय इनको भावुक कब मिली, तो मेरा जवाब यही है कि मेरे जीवन की सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशी तब मिली जब मेरी प्यारी बिटिया ने इस दुनिया में कदम रखा। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि ईश्वर ने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी नेमत दी है। उसके आने से मेरा घर खुशियों से भर गया और मेरे जीवन का हर संघर्ष उसके चेहरे की मुस्कान देखकर हल्का हो जाता है। वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है और मेरे जीवन की असली खुशी है। और बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमें मेल किया महेंद्र दीपन जी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप दुनिया में अपने जैसा किसी को देखते हैं, आपका एक हिस्सा जब इस दुनिया में आता है, एक अंश इस दुनिया में आता है, तो ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खुशियां, सारी जितनी भी चीज़ें हैं सब उसके कदमों में ला कर रख दें। और बिल्कुल आपने सही लिखा कि सच्ची खुशी आपको तब मिली होगी, बिल्कुल हम ऐसा मान सकते हैं। अब मेल आ गया है नीलू शर्मा जी का और लिख रहे हैं कि थोड़ी सी शेर व शायरी इन्होंने की है और पूछ रही हैं कैसी हो तनु। बिल्कुल अच्छे हैं नीलू जी। और आगे लिख रही हैं कि मुझे पहली बार खुशी तब मिली थी जब हमारा फ़ोन जीमेल में लगा था। अच्छा, आपका फ़ोन जीमेल पे लगा था। और अनुपमा जी से बात हुई थी और दोबारा मुझे तब खुशी मिली थी जब मैं अपने प्रिय दोस्तों से मिली थी, वंदना और पीहू जी से, तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और सच में ऐसा होता है। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है, खुशी आपको तब भी मिल सकती है जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं, तो आप अगर उसका पूरा हिस्सा नहीं पा सकते तो कुछ हिस्सा आपको ज़रूर जो ईश्वर है वो आप तक पहुंचा देता है। अगर ऐसा आपने महसूस किया हो तो आप ज़रूर सोचिएगा कि तरन्नुम ने जो बात कही है उसमें कितनी सच्चाई है। अब देखिए, आप किसी भी चीज़ में शिद्दत से लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसका थोड़ा सा हिस्सा ज़रूर हासिल कर लेते हैं, और ऐसा होता है 101%। सतीश अनिजा जी का मेल आ गया, बहुत ही प्यार से मेल करते हैं। सतीश जी लिख रहे हैं, नमस्कार तरन्नुम बैना जी, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। सतीश जी कैसे हैं आप? लिख रहे हैं कि मुझे जिंदगी की सबसे पहली खुशी तब मिली थी जब मैं 10वीं की क्लास में टॉप पर रहा। क्या बात कर रहे हैं आप, टॉप किया आपने। और 15 अगस्त को स्कूल में तिरंगा फहराने के बाद मुख्य अतिथि ने मुझे 100 रुपए देकर सम्मानित किया और दूसरे बच्चों को मेरा नाम लेकर मुझे प्रेरणा स्रोत बताया। घर में भी शाबाशी मिली और गांव में हर तरफ मेरी चर्चा हुई। भाई जाहिर सी बात है, इतने बड़े बड़े आपके पास काम है कि आपने टॉप किया और साथ ही साथ आपने 15 अगस्त में जब तिरंगा फहराया तो मुख्य अतिथि जो भी आए हों उन्होंने आपको सम्मानित किया। बात पैसे की नहीं है, बात सम्मान की है। और ऐसा होता है जब हम अपने देश को सम्मान करते हैं, हम अपने जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको सम्मान देते हैं, तो फिर हमें भी सम्मान ही मिलता है, क्योंकि लाइफ का यही नियम है, वाइस वर्सा होता है। जब आप कहते हैं ना कि एज यू ना, हम अपनी लाइफ में लोगों को रिस्पेक्ट देना लगातार बस शुरू ही कर दें, मतलब रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं से भी इग्नोर ना करें, भले ही कोई हमसे कैसे भी बात करे, लेकिन अगर हम अपने रिस्पेक्ट को बरकरार रखेंगे और जो खुशियां हैं उनको अगर हम बांटते चलें, तो फिर जिंदगी में हमें भी रिस्पेक्ट मिलती रहेगी, इज्जत मिलती रहेगी और खुशियां भी हमें मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमें मेल किया। सुधाकर जाधव जी का है मेल मेरे पास, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से हैं श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार सांचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सरवत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, समस्त राजे जाधव देशमुख वायाल परिवार। और लिख रहे हैं कि मेरे को खुशी जब हुई क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्विस को लगा, जब मेरे घर में टाइम आए और बहुत इनकी जो मैसेजेस होते हैं, इनका जो मेल होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं क्योंकि इनको हिंदी उतनी नहीं आती है, और टूटी फूटी जो लैंग्वेज में आप लिखते हैं ना सुधाकर जी, इतना अच्छा लगता है, सच मानिए, इतनी दिल को खुशी मिलती है कि आप हमसे जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं रेनबो के साथ, और इतनी प्यार से आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, मेल करते हैं, आंसर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जाफराबाद में क्या बोला जाता होगा, कैसे हो आप, ये तो मैं नहीं पता, किम छो बोलते होंगे, या फिर आप कैसे है ये बोलते होंगे, या फिर काजसला ऐसे बोलते होंगे। तो जैसे भी हैं आप, बहुत अच्छे इंसान हैं और आपने मेल किया है। और इनका कहने का जो मेल का जो लब्बो लो आप जिसे कहते हैं, जो विस्तार है वो यही है कि इनको खुशी जब मिली जब इनकी गवर्नमेंट जॉब लगी और जब इनको घर में बहुत ज़्यादा खुशी आई और बहुत ज़्यादा आनंद मिला। बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। विजयपाल यादव ललहुआ लखीमपुर खीरी से हैं, लिख रहे हैं, आदरणीय बहन जी सादर नमस्ते, आपको भी प्यार भरा प्रणाम। विजयपाल जी कैसे हैं आप? और लिख रहे हैं कि हमें सबसे पहले खुशी जब मिली थी जब हमने अपने

दोस्त की मुसीबत में मदद की थी। वास्तव में वो हमारी सच्ची खुशी थी। ग्राम पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से हैं। बिल्कुल सही कहा आपने विजयपाल जी, खुशी असली तभी मिलती है जब आप किसी को कुछ देते हैं, और वो जो खुशी होती है ना उसको मतलब सिर्फ आप ऐसा नहीं है कि चेहरे से महसूस करते हैं, उसको आप दिल से महसूस करते हैं। क्योंकि जब हम किसी को कोई चीज़ बांटते हैं तो वो जो खुशियाँ होती हैं ना उसका आंकलन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और हमेशा दूसरों की मदद करके जो खुशी हासिल होती है उसको तो अल्फाजों में पिरोना बहुत ही नामुमकिन सी बात है। हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी जी हैं, सादर प्रणाम कर रहे हैं। पिंकू सोनी जी हैं, आपको भी प्यार भरा प्रणाम। और लिख रहे हैं, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी अपनी खुद की शॉप खुलने में मिली थी। मैं टिकैत नगर बाराबंकी से हूँ। मैं कुछ नाम लेता हूँ, कुलदीप जी, उधौली, आकाश जी, मुरारपुर, रिंकी, पिंकी जी, गुलाबशाह जी और सभी लिस्टनर, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। और अब वक्त हो गया है कि एक बहुत सा सूदिंग सा ट्रैक आप तक पहुंचाएं, या फिर एक बहुत सा ढिंचक सा ट्रैक

की शॉप खुलने में मिली थी। मैं टिकैत नगर बाराबंकी से हूँ। मैं कुछ नाम लेता हूँ, कुलदीप जी, उधौली, आकाश जी, मुरारपुर, रिंकी पिंकी जी, गुलाबशा जी और सभी लिस्टनर, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। और अब वक्त हो गया है कि एक बहुत सा सूदिंग सा ट्रैक आप तक पहुँचाएँ या फिर एक बहुत सा ढिंचक सा ट्रैक आप तक पहुँचाएँ। एक काम करते हैं, एक जो सूदिंग नंबर है वो बाद में प्ले करते हैं और जो ढिंचक ट्रैक है वो अभी प्ले कर देते हैं, ठीक है?

0: We miss you, Katrina. Bring the mix back.
1: 100.7. जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फेरिए मारा। सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
7: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
8: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
7: ओनली 100.7 FM रेनबो।

मैं होठों पे तेरी बात और तरन्नुम आपके साथ है, और मेरे साथ बहुत सारे मेल हैं जो बिल्कुल पढ़ने के लिए हम मतलब क्या कहें उतावले हो रहे हैं, बेकरार हो रहे हैं, और कुछ मेल ऐसे होते हैं जो सच में दिल को छू जाते हैं। जैसे कि ये जो मेल हमें भेजा है चंद्रमोहन मिश्रा जी ने, लिख रहे हैं नौरंगपुर लखीमपुर से। सबसे पहले आपको इस कड़कती धूप में आपकी मेहनत को नमस्कार है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इतना एहसास किया उसके लिए। और साथ ही साथ आज का मुद्दा बहुत ही प्यारा है, इस पर मैं यही कहूँगा कि जिंदगी में जो पहली बार इनको खुशी मिली वो वही होती है जो बिना मांगे और बिना किसी उम्मीद के अचानक हमारे दरवाजे पर दस्तक दे देती है। अक्सर हम जिन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उनके मिलने पर उतनी खुशी नहीं होती जितनी उस वक्त होती है जब अचानक जिंदगी हमें कोई खूबसूरत तोहफा दे दे, जब किसी बेहद खास इंसान का निस्वार्थ साथ मिल जाए, या फिर किसी मोड़ पर कोई ऐसी कामयाबी हाथ लग जाए जिसकी उम्मीद भी ना हो, तो सच मानिए दिल खुशी से झूम उठता है। मेरे जीवन में भी ऐसी ही एक अनपेक्षित खुशी आई थी, उसने मेरी पूरी दुनिया को सकारात्मकता से भर दिया। वो पल आज भी जब जब यादों में आता है तो चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान बिखेर जाता है। ना कोई उम्मीद थी, ना कोई सवाल था, जिंदगी का वो पल सचमुच बेमिसाल था। और चंद्रमोहन मिश्रा जी, इतना खूबसूरत आपने में मेल किया है कि जब हम पढ़ रहे थे आपने में मेल किया तो उसकी जो गहराई है उसको हमने एक बार नहीं बल्कि तीन बार पढ़ा, और इतनी अच्छी आपने बात लिख के भेज दी कि जिस बात को हम अपने लिसनर से कहना चाह रहे थे वो सारी बातों का वो आपने इसमें समावेश कर दिया। और आपने हमें जब मेल किया तो सच मानिए ऐसा लगा कि जैसे मेरे दिल की आवाज़ आपके दिल तक पहुँच गई। बहुत बहुत धन्यवाद मेल करने के लिए। और जावेद अख्तर साहब का मेल आ गया है, और जब इनका मेल आता है तो पता नहीं क्यों जहन में जावेद अख्तर साहब याद आने लगते हैं जो हमारे लिरिसिस्ट हैं और बहुत अच्छे उन्होंने गाने लिखे हैं। लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम तरन्नुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम जावेद साहब, लिख रहे हैं उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी होंगी। जी हम बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आगे लिख रहे हैं कि 12 बजे से आपकी आवाज़ को सुना था, उसके बाद ये कहीं चले गए, उसके बाद आए तो होठों पे तेरी बात कार्यक्रम से ये जुड़ गए सीधे आके। और सबसे ज़्यादा इनको पहली खुशी तब मिली जब मेरे बचपन का बिछड़ा हुआ दोस्त मुझे मिल गया। मुबारकपुर आजमगढ़ से हैं शमसुल कमर राही और बेगम रुखसार साहब के साथ इन्होंने मैं मेल किया है। सच में बिछड़ा हुआ दोस्त अगर मिल जाए तो अल्फाज से पहले आंसू आंखों से बाहर आते हैं, और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था इंसिडेंट कि एक मेरी दोस्त थी और वो बहुत सालों से बिछड़ गई थी, और अचानक कहीं ना कहीं से उसको मेरा नंबर मिला, उसने मैं कॉल करी, और जब एक हेलो उसने बोला तो आप यकीन मानिए कि वो बचपन की जो आवाज़ थी वो भले ही बचपना था लेकिन उस हेलो ने ऐसा लगा कि उसको बस हम पहचान गए उसको, और जब मिले तो यकीन मानिए कि अल्फाज से ज़्यादा आंसू ने साथ दिया उस वक्त, और हम दोनों, वो भी बड़ी खुश थी हम भी बड़े खुश थे, और बड़ा अच्छा लगा कि चलो बचपन का बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया। और बबीता राव जी हैं, बहुत ही प्यार से हमें मेल करती हैं, बहुत ही कलर का इस्तेमाल करती हैं, ग्रीन येलो ब्लैक ब्लू, और इमोजीज बहुत अच्छे अच्छे भेजे हैं इन्हें, हार्ट का स्माइली और बुके भेजे हैं, सब कुछ इन्होंने भेज दिया है। और सच में लिसनर इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं रेनबो को कि उनका बस नहीं चलता कि वो किस तरह से अपने प्रेम का जो भाव है उसको उजागर करें, पहुँचाएँ हम तक। और आप यकीन मानिए कि हम लोग समझ जाते हैं कि आपकी क्या मंशा है और आप कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितनी आप मोहब्बत करते हैं रेनबो से। और अब जो मेल मेरे पास आया है बेली कला गुसाईगंज से, नवाबों का शहर लखनऊ यूपी से है। मैम जी हमेशा की तरह आपकी प्यारी सी आवाज़ और प्रोग्राम करने का अंदाज प्लस सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया बबीता। लिख रही हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई थी जब मुझे 9th क्लास में थी और मेरे पापा ने मुझे साइकिल दिलवाई थी। उस वक्त खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था हाई स्कूल पास करने में, और आपको फर्स्ट टाइम मैंने 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की प्रोग्राम में ईमेल किया था। इत्तेफाक की बात यह थी कि उस दिन भी आप आई थी, मुझे बस नाम याद था, और 10 नवंबर 2024 को इनका फर्स्ट, मतलब हम ही ने इनका फर्स्ट ईमेल शामिल किया था और मेरा सॉन्ग भी बजा था। मेरे भैया और पापा खेत में काम कर रहे थे, मैं जल्दी से जाकर उनको बताया कि तरन्नुम मैम ने मेरा ईमेल पढ़ा और सॉन्ग भी बजाया था, और सॉन्ग के बोल थे ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें, और मुझे बहुत खुशी मिली थी। और बाकी खुशी तो मुझे दुआ में मिलती ही रहती है, तब से लेकर आज तक मैं बस डेली एक चैनल है 100.7 उसे सुनती रहती हूँ। अब बहुत अच्छा लगा, और सच में आपको इतना सब याद रहता, आप लोगों को इतना, मतलब क्या कहें, अल्फाज नहीं मिलते हैं आप लोग जो इतनी मोहब्बत देते हैं रेनबो को। और कभी कभी ये होता है कि हम लोग जब आपके मेल पढ़ते हैं और हम लोग आपस में जब बात करते हैं कि भाई देखो फला ने ऐसा मेल किया, फला ने ऐसे किया, तो आप यकीन

नहीं है कि जो उस वक्त मोहब्बत है वो इतनी दिल में उठती है कि उसको अंदाज बयान करना बहुत ही मुश्किल है। और एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आप तक 1:48 प्रोग्राम होटो पे तेरी बात तरनों में आपके साथ सुनते रहिए रेनबो।

और अगर आपका दिल सच में ऐसे ही बोलता है कि उसको पसंद करता है जिसका दिल में मोहब्बत और उनसियत भरी होती है। फिलहाल 1:54 हो गए आप लोगों ने मेल किया और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जो मेल की बौछार होने वाली, बरसात होने वाली है, उसको तो मतलब ऐसे करके हम लोग हाथों में लेना की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये वाली भी बूंद भी इस हथेली में आ जाए, अच्छा ये वाला भी जो मेल है ना इसको जल्दी जल्दी हम शामिल कर लें। लेकिन वक्त जो है ना इतनी तेजी से भागता है, अगला जो 1 होगा वो इतनी तेजी से भागेगा कि समझ में ही नहीं आता कि कब उसको हम कैच कर लें, कैसे उसको पकड़ के रखें और आप लोगों के इतने खूबसूरत से जो मेल हैं उनको हम शामिल कर लें। लेकिन फिर भी आप लोगों के जो मेल आते हैं उनको शामिल करना हमारा फर्ज है और हम लोग कोशिश पूरी करते हैं कि उन मेल को हम शामिल कर लें। फिलहाल प्रोग्राम हॉट मेल का अब इंतजार आप करिए और होटो पे तेरी बात को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत। तरन्नुम को मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जिसका नाम है हॉट मेल। सो स्टे कनेक्टेड विद रेनबो।

0: points to 23,940 when reports last came in. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index slipped 0.2%, while small-cap 100 index was trading 0.1% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi concludes successful five-day historic visit to France and Slovakia. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. President Draupadi Murmu says India on track to eliminate sickle cell disease well before 2047 target. Delhi High Court upholds centre's temporary curbs on Telegram ahead of NEET UG 2026 re-examination. India calls Indus Waters Treaty outdated at UN Human Rights Council, also slams Pakistan for sponsoring terrorism. And Mexico becomes first team to qualify for FIFA World Cup round of 32, defeating South Korea 1-0. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की पांच दिन की सफल यात्रा संपन्न श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया जिसमें भारत फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है।

0: उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाना और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना, मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गाँव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट

0: सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहाँ पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट UG की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातू परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
3: अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ा की मांग करता है, समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता। इस पर कोई जवाबदेही ना हो जो बदलाव
0: सिरे से खारिज कर दिया। दक्षिण कोरिया को EU ने पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के

संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित प्रोत्साहन शिविर दिल्ली पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान की कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह

0: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: हाय, दिस इज उदित नारायण। यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।
5: कि आप पूछ सकते हैं कि आपका मेल क्यों नहीं शामिल हुआ। और साथ ही साथ श्वेता भगत, किसु तासु, अर्डम आनंद, सत्यम आनंद है, बूढ़ा गाछी पश्चिम बंगाल से, मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। दिलीप कुमार जी का मेल आ गया है, मुंदी चक भागलपुर बिहार से, दिलीप कुमार सोनी, गाने की फरमाइश, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी का मेल आ गया, नमस्कार जी आपको, मान योग्य आरजे जी, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। और लिख रहे हैं कि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कहाँ देर हुई है, अभी 33 मिनट ही तो हुए हैं और आप लोग इतनी उजलत करने लगते हैं, इतनी जल्दी करने लगते हैं। ख्याल बाजार पानीपत से है नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ू कोयल मल्होत्रा, पापा जी, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से, पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। और कुमार किशन जी का मेल एक बार फिर से आ गया है।

आपका मेला में शामिल कर चुके हैं। शम्सुल कमर राही जी का मेला गया है, प्रोग्राम इनको मस्त लग रहा है, अच्छा होता हमारी पसंद का सॉन्ग भी चल जाता। और शम्सुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान और गंज डुडवारा से मेल किया है। बहुत

और आपका मेल हम शामिल कर चुके हैं। शम्सुल कमर राही जी का मेल आ गया है। प्रोग्राम इनको मस्त लग रहा है, अच्छा होता हमारी पसंद का सॉन्ग भी चल जाता। और शम्सुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान और गंज डुडवारा से मेल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अब क्या करना है, अब एक गाना है जो एक नहीं बल्कि तीन लोगों ने इस गाने की फरमाइश की है। अच्छा, ये गाना है बहुत पुराना लेकिन लाजवाब गाना है। इसके बोल लाजवाब, इसकी जो म्यूजिक है वो भी लाजवाब। गाना कौन सा? ये वाला।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: सपने बड़े हैं,
4: स्टाइल अलग है,
3: तो ये शो है आपके लिए।
4: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
3: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
4: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
3: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
5: गाने हैं बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
6: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
7: जोर का झटका है जोरों से लगा लगा,
5: अंदाज है सबसे निराला,
6: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
5: ओ गॉड, स्टे ट्यून्ड टू चैनल सतरंगी रे।

देखिए, घड़ी की जो सुइयां हैं वो भी एक दूसरे को बहुत जल्दी छूने वाली हैं, यानी 3 बजने वाला है। और इससे पहले कि 3 बज जाए, आप लोगों की जो मेल है उनको जल्दी जल्दी हम शामिल कर लेते हैं। कौशिक वाधवान जी का मेल आ गया है फ्रॉम राजकोट गुजरात से हैं कौशिक। अस्मिता मम्मी पापा महेश वडवाड़ा परिवार लिख रहे हैं, हेलो नमस्ते तरन्नुम जी, केम छो माजामा। और गुड आफ्टरनून भी लिख रहे हैं, सॉन्ग जो आपने कहा था वो देखिए हमने प्ले कर दिया है। और साथ ही साथ डी के यानी न्यू दिल्ली से हैं कमलेश मुकुल सचिन दीपांशु, और गाने की फरमाइश की है इन्हें, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मेल किया। रविंद्र मोहन दास जी का मेल आ गया है किशनगंज बिहार से।

रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, कोई भी गाना सुनवा दीजिए। बाबू अंसारी जी का मेल आ गया है, हम रह गए। अच्छा, आप रह गए, कहाँ रह गए? और लिख रहे हैं तरन्नुम अप्पी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। के बोल इन्होंने लिखे हैं, साथ ही साथ गाने डेडिकेट करते हैं। रेडियो दोस्त कुलदीप गुप्ता, महेंद्र दीपन, फैज अंसारी, गौस मोहम्मद अंसारी, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। प्रकाश बोरगांवकर जी का मेल आ गया, लाजवाब प्रोग्राम, इनको गाने बहुत पसंद आ रहे हैं, गाने की फरमाइश। छत्रपति संभाजी नगर सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से सुषमा बोरगांवकर, प्रकाश बोरगांवकर, प्रांजलि सोहम बोर गांवकर, सदानंद विराज, अंशुमन ओवी, आपका दिल से शुक्रिया, आपका भी दिल से शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें मेल किया। हीरामणि वर्मा जी का मेल आ गया, दंतरेगी भट्टापारा छत्तीसगढ़ से हैं, हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, कोई भी गाना चलेगा, कोई भी गाना सुनवा दीजिए। और हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी जी हैं और टिकैत नगर से हैं, यशोदा का नंदलाल गाना इनको सुनना है, और ये गाना जो है वो जरूर प्ले करेंगे हम। अहमद भाई पुलवाले जी का मेल आ गया, भाई आपका मेल हम शामिल कर चुके हैं। कमलकांत गुप्ता जी का है, तरन्नुम जी हमें भी याद कर लेना पिप्रिया से, कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, बिल्कुल आपको याद करते हैं हम और आप हमेशा हमारी यादों में रहते हैं। समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, आदित्य गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और अंकुर राघव गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। साई गायकवाड़ का मेल आ गया, हॉटमेल सादर प्रस्तुत करने वाली तरानू दीदी को प्यार भरा राम राम जी, आपको भी प्यार भरा हमारा राम राम। लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून जी, दीदी कैसी हो आप? बिल्कुल अच्छे हैं, इनको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। और गाने की फरमाइश की है, नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ जी, बिल्कुल गाना प्ले होगा। और साथ ही साथ राधे कुमार विद्यार्थी जी का मेल आ गया है, गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से, राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन बुल्की वाली और फलाना फलाना झा, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। और तुलसी मस्कीन जी का भी मेल आ गया है, नमस्कार और गाने की फरमाइश के साथ, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन जी, जी बिल्कुल आपका मेल शामिल हो गया है। देखिए दिनेश वर्मा जी का गाना, रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, साथ ही साथ मुजम्मिल अहमद साहब जी का मेल आ गया है, गाने की फरमाइश की है कुर्सट नाव से। इसके अलावा जो मेल आ गया है वो आया है पूनम गगनेजा जी का, तरन्नुम बहन, राम राम जी प्लीज एनी सॉन्ग, जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रियादिशानी और निमित, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। और एम के राज का मेल आ गया है और शुभ दोपहरिया कर रहे हैं और गाने की फरमाइश की है, भानपुर हरावा लखीमपुर खीरी से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। साथ ही साथ बोधराज खुरवाल जी ने देखिए 8 मेल कर दिए हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है जब ड्रैग कर रहे हैं। मुकेश कश्यप जी का भी मेल आ गया है, ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, किसी भी गाने में शामिल कर लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। शाहरून नूर अंसारी का मेल आ गया है, हरहरपुर मिटकली जिला बरेली से है, शाहरून अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद अदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल गफ्फार जी का मेल आ गया है, किसी भी गाने में हमें शामिल कर लीजिए, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हैं, अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। और सुरेश नारंग जी का मेल आ गया है, रिस्पेक्टेड आरजे जी, तरन्नुम जी नमस्कार जी, और गाने की फरमाइश सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, कितने सारे आम भेज दिए आपने, स्ट्रॉबेरी भेज दी है और कुछ उसमें बोल में भी रख के भेजा, दिखाई नहीं दे रहा है कि वो है क्या, लेकिन बड़ा कलरफुल है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। उधौली बाराबंकी से हैं कुमारी क्षमता, सादर प्रणाम, प्यार भरा प्रणाम आपको भी कुमारी क्षमता जी, गाने की फरमाइश की है। तेज बहादुर यादव जी का मेल आ गया है, प्यार भरा सलाम नमस्ते, कैसी हैं आप? बहुत आनंद आ रहा है, अच्छा बहुत जल्दी आपको आनंद आने लगा और मेल आपने जल्दी से किया और जल्दी से देखिए हमने आपका मेल भी शामिल कर लिया और कोई फरमाइश नहीं कर रहे हैं। तेज बहादुर यादव, ममता यादव, बच्चे रोनित यादव, बेबी वानिका, गांव मऊ शर्की, जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से हैं और इस टाइम हरियाणा गुरुग्राम में हैं, प्रोग्राम को सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी आप लोगों ने हमें मेल किया। और 2:53 हो गए हैं, इसी के साथ इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत, तरन्नुम को मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जिसका नाम है सतरंगी दुनिया, स्टे कनेक्टेड विद रेनबो।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: नमस्कार, दोपहर के 3 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को रुद्रौली विधानसभा क्षेत्र स्थित मां कामाख्या धाम में वीरांगना झलकारी बाई की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 378 करोड़ की लागत की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत की अमर वीरांगना को जिसने 1857 के स्वातंत्र समर में देश की आजादी के लिए फिरंगियों को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था, ऐसी झलकारी बाई को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।

दोस्तों नमस्कार, 102.2 FM रेनबो पर आ गए हैं फिर से आप और मैं साथ साथ। दिन के 3 बज चुके हैं और वंदना आ चुकी है लेकर आपके लिए प्रोग्राम म्यूजिकार। और यही रोजाना हमारे दिल की गहराई से निकलकर चंद नगमे पहुंचते हैं आपकी जिंदगी के सांस तक, आपकी आवाज तक। तो आज का ये सफर होने वाला है बेहद खूबसूरत। शुरू करते हैं, अच्छा लगे तो दिल से दुआ दीजिएगा, वाह वाह कीजिएगा वहीं से।

गजल में कही बात न बन जाए कैसे जाने, पहुंच जाती है सीधे रूह तक कि इसका कोई तीर कभी खाली नहीं जाता। दोस्तों, ये गजल महज शायरी नहीं, जज्बातों का खूबसूरत इजहार है। गजल के हर शेर में महसूस कीजिएगा, हर लफ्ज़ बस प्यार है।

जिंदगी का वो रूहानी वक्त लौट आता है फिर से, जब निगाहों के सामने नज़ारे वही होते हैं, दिल महसूस करता है आहट तुम्हारी, चांद भी वही, सितारे भी वही होते हैं।

बड़ा अजीब रिश्ता है दिल का इस तन्हाई से, कि जब भी अकेले बैठो बस तुम याद आते हो। रहते हो मेरे अंदर ही कहीं, भीड़ में नज़र नहीं आते हो। तुम्हारी वो खुशबू हमेशा मेरे साथ रहती है, और तन्हाइयों में ये दिल तुम्हारी बातें करता है।

हर एक मोहब्बत की कहानी का सिलसिला शुरू होता है जहाँ से, वो जहान होती हैं ये आँखें। रूबरू जब होते हो हंसती हैं, फासले हो जाएं तो रोती हैं आँखें। नज़रें भी बड़ी अजीब हैं, जब नज़रों का दीदार करती हैं सुबह होती है खामोश और धड़कन इंतज़ार करती है।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।
2: FM 102.2 रेनबो कानपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिकार वंदना के साथ। खूबसूरत शाम के माथे पर चांद की मानिंद चमकती चंद गजलें आपके दिल को छू रही हैं। शायद याद आया हो आपको भी गुजरा हुआ कोई लम्हा, जब एक गजल प्यार के इजहार सी हुआ।

करती थी, दिल थाम कर बैठते थे गजल के चाहने वाले हजारों, एक एक लफ्ज जैसे उनकी ही कहानी हो और एक एक शेर जैसे उन्हीं की बात किसी और की जुबानी हो।

इश्क का जीती जागती एक कहानी है गज़ल। इश्क की एक जीती जागती कहानी है गज़ल, जो सिर्फ कुछ कहती नहीं, उतर जाती है रग रग में, मोहब्बत का रंग कर देती है और गहरा। और कहते हैं कुछ दीवाने यूं भी कि बेखुदी में इस हद से गुज़र गया हूं मैं, कि अब ढूंढते हैं लोग किधर गया हूं मैं। जो ढूंढते हैं मुझे हैं वो सब होश वाले, जो ढूंढते हैं मुझे हैं वो सब होश वाले, अब भला वो कैसे समझें कि किधर गया हूँ मैं।

मोहब्बत हो, ख्वाहिश हो या हो तारीफ किसी की, गजल की निबती है सबसे, ये बन जाती है हर एक किसी की। तो फिलहाल दोस्तों दीजिए इस खूबसूरत सफर से इजाजत वंदना को, बताइएगा जरूर ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। और आपकी पसंद कार्यक्रम के लिए बने रहना है आपको हमारे साथ, यानी 102.2 रेनबो कानपुर पर। अब चलती हूँ, नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चेतना। सभी सुनने वालों को दीप शिखा गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। आज का ये अंक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ मैं, और आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है शहर के जाने माने वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर प्रवीण कटियार जी को, जो कि IMA कानपुर के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका आकाशवाणी कानपुर के हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद दीपशिखा जी हमें आमंत्रित करने के लिए।
0: डॉक्टर साहब, आज हम चाहेंगे कि एक ऐसे विषय पर बातचीत की जाए जिसका सामना भारत में रहने वाले लोगों को अक्सर करना पड़ता है, और वो विषय है खून की कमी यानी कि एनीमिया। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि सरल भाषा में आप हमारे सभी लिसनर्स को बताएं कि एनीमिया वास्तव में होता क्या है।
1: एनीमिया को हिंदी में रक्ताल्पता बोलते हैं, या ऐसे समझ लें कॉमन लैंग्वेज में कि खून की कमी। अब खून में क्या आता है, एनीमिया पर्टिकुलर RBCs और हीमोग्लोबिन की कमी को फोकस करता है। और जो कॉमन एज ग्रुप है, और एनीमिया कब बोलेंगे ये एक विषय आता है कि कौन से ऐसे मानक हैं जब हम बोलें
0: जी।
1: तो फीमेल्स में 12 ग्राम पर DL से जब कम हीमोग्लोबिन की वैल्यू होगी तब वो एनीमिया के श्रेणी में आएगा, और ये इसी तरीके से पुरुष में 13 ग्राम पर DL से जब नीचे के वैल्यू होगी तब एनीमिया के श्रेणी में आएगा। और इसमें भी 3 कैटेगरी हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जैसे अगर हम फीमेल्स की बात करें तो माइल्ड वाला 11.9 तक वाले जो हीमोग्लोबिन वाले लेवल वो माइल्ड में आ गए, 8 से 10.9 वाले वो मॉडरेट में आ गए, और जिनका 8 ग्राम पर DL से हीमोग्लोबिन कम है वो सीवियर एनीमिया में आ गए। तो 3 कैटेगरी में एनीमिया बटा होता है। सबसे फीमेल्स में बहुत अधिक पाया जाता है, ग्लोबल पॉपुलेशन का 30% फीमेल्स जो कि 15 से 49 वर्ष के आयु ग्रुप में हैं, 30% वो पॉपुलेशन एनीमिया से ग्रसित है।
0: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि फीमेल्स में एनीमिया स्पेशली बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो हम जानना चाहेंगे कि एनीमिया होने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं।
1: अब जो एनीमिया के कारण हैं वो पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं और न्यूट्रिशनल भी हैं
0: जी।
1: जो एनीमिया देखा जाता है रूटीन में डेवलपिंग कंट्रीज में वो न्यूट्रिशनल एनीमिया है, बच्चों में और फीमेल्स में, इवन प्रेग्नेंट फीमेल्स में। तो अब 3 तरीके से हो सकता है कि RBC का प्रोडक्शन कम हो गया, एक तो कारण ये हो गया जितना बनना चाहिए उससे कम बन रहा, दूसरा जो RBC बनी हुई बन तो ठीक रही हैं लेकिन उसी रेशियो में वो टूटती चली जा रही, और तीसरा हो गया कि ब्लड लॉस हो गया। तो इन 3 पैटर्न पे एनीमिया का डिवीजन किया गया है, मतलब इनको विभाजित किया गया है। तो जो रेड सेल कम बनने वाले कारण हैं उन पर मैं आऊँगा। इसमें होता है न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी, तो ये 3 तरीके का एनीमिया हो सकता है। इसमें आयरन डिफिशेंसी एनीमिया, हम ऐसा खाना ले रहे हैं जिसमें आयरन ही नहीं है, आयरन की कमी की वजह से क्या होता है हीम की सिंथेसिस रुक जाती है और हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। इसी तरीके से vitamin B12 डिफिशेंसी एनीमिया, जो कि vitamin B12 कोवालामिन विटामिन होती है उसकी डिफिशेंसी से होता है, इसमें DNA सिंथेसिस इम्पेयर हो जाती है। इसी तरीके से फोलेट vitamin B9 डिफिशेंसी एनीमिया होता है, ये एनीमिया प्रेगनेंसी और मेल जॉब्सन सिंड्रोम और अल्कोहलिज्म में पाया जाता है। तो न्यूट्रिशनल वाले एनीमिया हो गए। इसी तरीके से बोन मैरो डिसऑर्डर हो गया कि बोन मैरो काम ही नहीं कर रहा, तो एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम हो गया, इनफिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर्स हो गए जिसमें कि ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, कैंसर ये सब आते हैं। फिर एनीमिया आप क्रोनिक डिजीज, तो क्रोनिक डिजीज कौन कौन सी हो गई, TB हो गई, HIV हो गई, रिमेटाइड आर्थराइटिस हो गई, इन डिजीज में भी क्या होता है कि खून का बनना कम हो जाता है। इसी तरीके से किडनी डिजीज हो गई, क्रोनिक किडनी डिजीज बड़े लंबे समय से पड़ी है, तो इरिथ्रोपोएटिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो नहीं बनता है। फिर इंडोक्राइन काजेज हैं, तो इंडोक्राइन काजेज में आ गया आपका हाइपोथायराइडिज्म हो गया, हाइपोपिट्यूटरीज्म हो गया, हाइपोगोनाडिज्म हो गया, ये सब वो कारण हैं जिनकी वजह से रेड सेल का प्रोडक्शन कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। फिर हम लोग आते हैं कि इंक्रीज रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन की, खून की जो कणिकाएँ हैं वो टूट ज़्यादा रही हैं, बन तो ठीक रही हैं लेकिन उससे उसमें अधिक रेशियो में वो टूट रही हैं। तो ऐसी बीमारियां हो गई, सिकल सेल डिजीज हो गई, थैलेसीमिया हो गई, glucose 6 phosphate डिफिशेंसी हो गई, मलेरिया हो गया, मलेरिया में आपने देखा होगा खून कम हो जाता है, जैसे टाइफाइड में भी खून कम होने का चांस रहता है। फिर तीसरा जो मेन कारण है ब्लड लॉस, तो ब्लड लॉस कैसे होगा, चोट लग गई, इंजरी हो गई, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में इंजरी हो गई, अब आपका डिलीवरी के दौरान ब्लड लॉस हो गया, कोलोरेक्टल कैंसर हो गया या जीआई डिसऑर्डर हो गया, कई कई लोगों को क्या होता है इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, तो ऐसे डिसऑर्डर हैं जिसमें ब्लड लॉस हो जाता है। तो ये तीन प्रमुख जो कारण है इनकी वजह से एनीमिया होता है।
0: ये जानने के बाद कि एनीमिया के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, हम जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन सा पॉपुलेशन ग्रुप है जो कि एनीमिया के लिए ज्यादा प्रोन होता है, यानी कि जिसमें एनीमिया होने की संभावना ज्यादा रहती है।
1: 15 से 49 वर्ष की फीमेल्स,
0: जी,
1: उनमें एनीमिया सबसे अधिक पाया जा रहा है, ग्लोबली पाया जाता है। फिर हैं बच्चे, और इनका मेन कारण है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन इनको नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से ये एनीमिया का डिसऑर्डर होता है।
0: अभी न्यूट्रिशनल एनीमिया को कैसे हम टैकल करें, कैसे उससे समाधान करें, इस पे बातें अभी करेंगे आपसे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि कार्यक्रम में अपनी पसंद का कोई एक गीत आज आप हमारे सभी श्रोताओं को सुनवा दें।
1: जगजीत सिंह का एक गजल है, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी।

ये खूबसूरत सी गजल सुनने के बाद एक बार फिर से लौट आए हैं आकाशवाणी कानपुर के अपने स्टूडियो में, जहां आज चर्चा हो रही है एनीमिया विषय पर, जिसे हम कर रहे

0: हैं शहर के जाने माने वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर प्रवीण कटियार जी से। तो डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि न्यूट्रिशनल एनीमिया होने पर किन बातों का ध्यान रखकर इसे कंट्रोल में किया जा सकता है।
1: सर, प्रथम तो जिस भी व्यक्ति को खून की कमी आ रही है उसको प्रॉपर डायग्नोसिस बनवानी जरूरी है चिकित्सक से मिल करके, उसको किस प्रकार का एनीमिया है, उसका कारण क्या है।
0: जी।
1: तो अब किसी में आयरन डिफिशेंसी एनीमिया है तो वो आयरन के सप्लीमेंट से ठीक होगा, आयरन रिच फूड लेने से ठीक होगा। जिसमें B12 डिफिशेंसी है तो वो B12 का सप्लीमेंट करने से होगा। तो पहले कारण जानना बहुत जरूरी है। और किसी भी जो न्यूट्रिशनल एनीमिया है वो न्यूट्रिशन डिफिशेंसी की वजह से होते हैं, तो इनमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। और मेरी राय ये है कि सभी लोग, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हों, चाहे मिडिल क्लास हों, चाहे अपर मिडिल क्लास, सभी लोग अपने बच्चों और अपने घर की महिलाओं के न्यूट्रिशन पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बहुत ईजिली ठीक कर सकते हैं। जो चीज़, जो बीमारी हो गई वो अलग विषय है, लेकिन ये चीज़ें तो ऐसी हैं, हमें न्यूट्रिशन ही अच्छा देना है और ठीक हो जाएगा।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम सभी को अपने न्यूट्रिशनल जो पहलू है उस पर ध्यान देना चाहिए न्यूट्रिशनल एनीमिया से बचने के लिए। ऐसे में हम चाहेंगे कि खान पान से संबंधी कुछ सुझाव आप हमारे लिसनर्स को दें जिनको अपनाकर वो एनीमिया से खुद को दूर रख सकते हैं।
1: सर्वप्रथम तो पोषण के, आहार के संबंध में तो व्यक्ति को अपने वजन और उसका जो बीमारी का स्टेटस है या ग्रोथ का स्टेटस है, उसके हिसाब से एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनवाना अत्यंत आवश्यक है। किसी डाइटिशियन से मिलकर वो डाइट चार्ट बनाएं, क्योंकि होता क्या है कि बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें सब चीज़ें उचित मात्रा में होती हैं। नॉर्मली हम लोग भोजन लेते हैं तो कोई चीज़ अधिक हो सकती है, कोई चीज़ कम हो सकती है। जो पोषण विज्ञान ये कहता है कि आप संतुलित आहार लें, कोई चीज़ ना ज़्यादा हो, कोई चीज़ ना कम हो, तो आप इन सभी परेशानियों से बच सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, रक्ताल्पता यूं तो स्वयं में भी एक बीमारी है, लेकिन क्या ये किन्हीं और बीमारियों का कारण भी बन सकती है?
1: जरूर बन सकती है, दूसरी बीमारियों का कारण बन सकती है, क्योंकि वीकनेस होती है, आप काम नहीं कर पाओगे, चिड़चिड़ापन आएगा, एक तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर बढ़ने का चांस है, दूसरा क्या है, कार्डियक ओवरलोड होने का चांस है, क्योंकि आप में खून उतना है नहीं। अच्छा, हीमोग्लोबिन की वजह से ही ऑक्सीजन कैरी होती है पूरी बॉडी में, कम हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहे, तो ऊतक जो टिश्यूज़ हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो बहुत सी बीमारियाँ साइड में जुड़ी हुई हैं, जिस लेवल का हीमोग्लोबिन है उस लेवल के हिसाब से।
0: डॉक्टर साहब, आजकल हमारे देश में भी एनीमिया मुक्त भारत अभियान चल रहा है और एनीमिया से दूर रखने के लिए लोगों को बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। ऐसे में चलते चलते हम चाहेंगे कि एनीमिया से फाइट करने के लिए हमारे सभी लिसनर्स को कुछ संदेश देते चलें आप।
1: मेरा संदेश यही है कि जो, जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मेजर पार्ट है न्यूट्रिशनल एनीमिया का, और न्यूट्रिशनल एनीमिया ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता, वो तुरंत ठीक हो जाएगा। जैसे ही आप न्यूट्रिशन अच्छा करोगे, जिस चीज़ की कमी है उसको पूरा कर लोगे, तो वो ठीक हो जाएगा, उसके सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे, आप पुनः हेल्दी हो जाओगे। तो सबसे प्रथम क्या है कि आप अपने पोषण पे विशेष ध्यान दें, विशेषकर बच्चे और महिलाएं, क्योंकि इनमें पूरे वर्ल्ड में कम एनीमिया होने का चांस अधिक पाया गया है, तो ये लोग ध्यान दें। दूसरा, जो नियमित इंटरवल पे, 6 महीने पे, 1 साल पे अपने शरीर का स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य कराएं। स्वास्थ्य परीक्षण में हो गया, एक डॉक्टर ने परीक्षण किया, दूसरे खून की जांचें अवश्य कराएं, जिससे आपको ये पता लग सके कि हम किस फेज में बीमार हुए थे और हमें क्या इंटरवेंशन की ज़रूरत है ठीक रहने के लिए।
0: जी डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी बातें आज एनीमिया के विषय में आपने हमारे सभी लिसनर्स से साझा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू। थैंक यू दीपशिखा जी, थैंक यू आकाशवाणी कानपुर फॉर इनवाइटिंग मी।
0: कार्यक्रम का अगला अंक लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चेतना।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी, यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्वनामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।

दोस्तों FM 102.2 रेनबो कानपुर के साथ ट्यून इन है आप। शाम के 4 बजे का वक्त है, चाय का है वक्त आपके साथ है, लोहाए का है वक्त, वक्त है आपकी पसंद के गीतों को आप तक पहुंचाने का। तो आ चुके हैं ढेर सारे मेल्स हमारे पास और आपकी पसंदीदा गीतों को आप तक पहुंचाने के लिए आज मैं हूं आपके साथ स्टूडियो में, आपकी अपनी वंदना। और पहला गीत ये जो आप सुन रहे हैं हमने लिया है इसे महबूबा फिल्म से।

गीत आपने सुना दोस्तों महबूबा फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत हमने आपको सुनवाया। मुख्य फरमाइश हमें भेजी मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर पनीलाल सागर आशीष कुमार सागर अमर सिंह हितेश सागर उर्फ बंटी राजेश कुमार वर्मा रूबी भारती एकता दिव्या रचना भारती ओमवती भारती खनक शगुन सारांश आयांश अदिति वर्मा शिवांश और प्रथव सिंह की। और साथ ही बहुत सारी ईमेल्स हमारे साथी कर रहे हैं और इनमें से हम कुछ ईमेल्स शामिल कर रहे हैं। और ये ईमेल आई है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की।

साथ ही और भी फरमाइशें शामिल की जा रही हैं दोस्तों, आप सभी की बहुत सारी ईमेल्स हमारे पास आ रही हैं। सतीश अनीजा, ये एक ईमेल हमारे पास आई है, मजनू कटीला से है, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक, आपने ईमेल भेजी है। और साथियों, आपसे हम बार बार निवेदन करते हैं कि एक ही हमारे श्रोता बार बार ईमेल ना करें, एक के बाद एक लगातार आप लोग ईमेल करते रहते हैं। हम आपकी एक ईमेल को ही शामिल कर सकते हैं एक प्रोग्राम में, और अगर आप बार बार ईमेल भेजेंगे तो हमें बहुत मुश्किल हो जाता है अन्य श्रोताओं की ईमेल्स को खोजना और आप तक पहुँचाना। और होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन खोरवाल, दीपांशु, आप सभी की ईमेल हमें मिली है और देखिए हमने इसको शामिल भी कर लिया है। सतीश अनिजा और विमल अनिजा, आपने फिर से ईमेल भेज दी है। और ताज मोहम्मद, आप ईमेल कर रहे हैं, गुलाम साबिर राही मेहराजान, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से, स्टेशन रोड, जमशेदपुर से ईमेल मिली है, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया की। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। आगे आपको सुनवाते हैं राजा भैया फिल्म का ये गीत, और इसकी फरमाइश किसने करी है आपको बता देते हैं। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है सोनी पीहू टाइगर शर्मा, और ऊपर चंदेला से हैं आप सभी लोग, और बहुत ही एक शायरी भी लिख कर भेजती हैं आप हमेशा। लोग ढूंढते रहे कि दुनिया में खूबसूरत चेहरे, हमने एक ही चेहरे में पूरी दुनिया देख ली। भाई वाह, क्या बात है। तो जिस चेहरे में आपने पूरी दुनिया देखी है, ईश्वर करे वो दुनिया आपके पास हमेशा बनी रहे। और ये गीत आपने पसंद किया है, जन्म जन्म जो साथ निभाए ऐसा एक बंधन बन जाओ। तो चलिए सुनवाते हैं ज्ञान आपको, बहुत ही प्यारा सा गाना है राजा भैया मूवी से।

आपकी पसंद ये प्रोग्राम आप सुन रही हैं 102.2 रेनबो कानपुर पर दोस्तों, और आज आपके साथ आपकी पसंद के गीतों को लेकर मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे वंदना, और शामिल कर रही हैं इसी गीत के लिए कुछ और भी ईमेल्स हमारे पास आई हैं। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी की ईमेल आई है। टोरोवाल गांव नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी, आपकी भी ईमेल हमने शामिल कर ली है दोस्तों। और शमशुल कमर राही गंज डुंडवारा से लिखते हैं, शाहीन फातिमा, अदनान खान और अनु खान आपके

साथी हैं और अहमद फूलवाली छोटी बलिया करजत मुंबई से हैं, दुखनी सदफ आरजू जूही इकबाल फूलवाली इमरान अहमद कोपासेड़ा बॉर्डर न्यू दिल्ली से, बिटिया आमना नसरी नासमा परी रबिया मंतशा आशु अहमद फूलवाली और समस्त फूलवाली फैमिली, आपकी भी ईमेल शामिल हो गई है दोस्तों। तो अब प्लीज़ ईमेल मत कीजिएगा, आपका नाम भी शामिल हो गया है। और दीपक परिहार भोपालगढ़ राजस्थान से लिख रहे हैं, धर्मेंद्र छिपा कपिल छिपा ईशान छिपा और पूजा परिहार मैसेज ज़रूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका मैसेज शामिल हो गया है, आपको भी धन्यवाद ईमेल लिखने के लिए। और नासिर शेख आप हमें यादाब कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। फातिमा कॉलोनी से आपने ये मैसेज किया है, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख नाजिया नासिर, साजिद शाहिद गोविंदपुर अहमदनगर से, जुनैद मुजावर साबिहा मुजावर मिखाइल मुजावर और जैनब मुजावर, आपकी पसंद पर ये गीत हमने आपको सुनाया। और अब बढ़ना है हमें आगे इस खूबसूरत से गाने के साथ जिसे हमने लिया है दर्द फिल्म से।

बहुत ही खूबसूरत सा ये अफसाना लिखा आपने, और ये अफसाना पसंद किया था इंदिरा विहार दिल्ली से, बीबी अंसारी, निशा परवीन, डब्लू अंसारी, उमर खेड़ से अजीता मदारी और प्रमिला मदारी। फिल्म दर्द का ये गीत आपको सुनवाया हमने उमा देवी की आवाज़ में, और ये जो नाम बताया ये पसंद थी हमारे इन सभी श्रोताओं की। और अब ईमेल शामिल की जा रही हैं, जिसमें से हमारे ये दोस्त हैं, इन्होंने अपना नाम ही नहीं लिखा है, केवल रस सदाबहार और लाजवाब कार्यक्रम है और आपकी आवाज़ अच्छी है, बहुत अच्छी, थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तारीफ़ करी, लेकिन अपना नाम भी आपको लिखना चाहिए था। हाँ, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब, काफ़ी नीचे नाम लिखा है, बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीम पलक लुबना और यश मंसूरी। तो आपका भी धन्यवाद ईमेल करने के लिए, और आपकी ईमेल शामिल हो गई है दोस्तों। और अब ये एक अगली मेल हम शामिल कर रहे हैं, ये मेल आई है, ये नाम

कुछ सुधाकर सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई गोंडा ने, हीरमन शेंडे और प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडा ने की, ये लिख रहे हैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से। सुरेश नारंग, सोनाली नारंग, आशा नारंग और सुरेश नारंग सहारनपुर से हमें ईमेल भेज रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए एक ही श्रोता हमारी इतनी सारी ईमेल भेज रहे हैं कि हमारा पूरा पेज जो है वो भर जाता है, तो दूसरी ईमेल हमें खोजने में ये जो टाइम लग रहा है वो उसी कारण लग रहा है। और दोस्तों आप भी इतना प्यार करते हैं कि हमें लगातार ईमेल भेजते रहते हैं, और हम भी आपसे कहते रहते हैं कि आपकी ईमेल शामिल हो गई है, तो अब आप कृपया ईमेल ना भेजें, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्रेम करते हैं हमसे, इसीलिए भेजते रहते हैं ईमेल। तो अब बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता डिम्पल देवांगन की ईमेल शामिल हुई है। बहुत देर बाद ये ईमेल मुझे ढूंढने से मिली है, और बहुत सारे हमारे श्रोता और भी कर रहे हैं ईमेल, जिनको नाराज़गी भी होती है कि हम उनकी ईमेल शामिल नहीं करते, लेकिन हम भी क्या करें, एक पूरा पेज जब एक ही दो श्रोताओं के नाम से भर जाता है तो हमें ईमेल ढूंढनी पड़ती है। और खंडवा रोड सनावत से शाहबाज अरबाज फरहाज फरदीन समीर मोइन शेख और खंडवा से योगेश गुजराती आनंद जोशी और दुर्गा प्रसाद सैनी की ईमेल शामिल हुई है। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पाकुड़ झारखंड से ईमेल भेज रहे हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु अर्णवानंद और सत्यमानंद, बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। चलिए अब सुनवाते हैं आपको अगला गीत जो है फिल्म बरसात से।

आपको बता दें ये पसंद हमें भेजी चंद्रनगर सहारनपुर से कौशल्या जोशी, सुरेश जोशी और प्रभा जोशी ने। अम्बाला से हैं आशु खान और सोनाली खान। आप सबकी पसंद पर हमने ये गीत आपको सुनवाया। और अब हम शामिल कर रहे हैं कुछ और भी ईमेल्स। ये ईमेल है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, कमला रानी और गीतिका खोरवाल। आपको भी हमने अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिया है दोस्तों। आर्यन वर्मा ये ईमेल भेज रहे हैं जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। और आपने भी बहुत सारी ईमेल एक के बाद एक लगातार कर दी हैं साथियों, ऐसा मत करिए। और बार बार हम आपसे यही कहेंगे ऐसा मत करिए, क्योंकि हमें और श्रोताओं की भी ईमेल शामिल करनी होती हैं, फिर हमें उन्हें बहुत ढूंढना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम नहीं शामिल कर पाते अपने नए श्रोताओं को भी। और नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से है, मुसर जहानाज, तलत जहानाज, फरज जहानाज, रिफत जहानाज, नुजत जहानाज, साजिया शाहिनाज और नाजिया नूरी नाज। आपको भी हमने शामिल कर लिया है, बहुत प्यार के साथ आपको हमने शामिल कर लिया है। और अब हम और भी अपने श्रोताओं की ईमेल्स खोज रहे हैं। और संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से ईमेल भेज रहे हैं। आप सुन रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम 102.2 FM रेनबो कानपुर पर।

भाई, इस भयानक गर्मी में क्या बढ़िया फरमाइश की थी आपने। ये इतना खूबसूरत, इतना भीगा भीगा सा गाना सुनवा कर आपने हम सबको बहुत ही अच्छे से मूड में ला दिया और कुछ ठंडक ठंडक सा एहसास होने लगा। फिलहाल आपको बता दें सभी साथियों को कि ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से ये पसंद हमें भेजी सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने ने। और अनुश्री वली डोंडी लोहारा से प्रभा जामोरिया, अनुश्री जामोरिया, पूजा डॉली जामोरिया, चंद्रनगर सहारनपुर से सोनाली डोमिन और पथिक, आप सबकी ईमेल हमने शामिल कर ली है। और धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से ईमेल भेज रहे हैं निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया, आयान, बाबू, आप लिख रहे हैं हर पल आपका खुशियों से भरा हो। तो हम भी यही दुआ करते हैं कि आपका भी हर पल खुशियों से भरा हो। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से हमें ईमेल भेज रहे हैं मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, अल्ताफ, निलोफर फातिमा, मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, हसनैन रजा और गौसिया फातिमा। कौशल्या दीवान बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं और ये ईमेल मैं पढ़ चुकी हूँ, ये आपकी ईमेल पहले भी शामिल हो चुकी है दोस्तों। और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से ईमेल हमें मिल रही है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप और कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। बिहार स्टेट डुमराव से असमा अंसारी, असमा परवीन, टुकटुक अंसारी, लड्डू वली भाई अंसारी और गाजियाबाद से सीमा गांधी, मनोहर लाल डोंडी, छत्तीसगढ़ से मास्टर कबीर डोम और राधिका पूजा। साथियों, आपने ये मेल इतनी छोटी छोटी सी लिखी है कि मुझे ऐसा देखकर लग रहा है कि मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी छोटी सी चींटियाँ बैठी हुई हैं। इतना छोटा छोटा सा आपने लिखा है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत ईमेल लग रही है आपकी। और पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन चलिए आगे से ध्यान रखिएगा। आप थोड़ा सा फॉन्ट अपना बड़ा कर कर ईमेल हमें भेजिए। और ग्राम शिरटे जिला सांगली से हनुमंत शिंदे, संगीता शिंदे, ऋषिकेश और वसुंधरा, आप ईमेल हमें कर रहे हैं, आपकी ईमेल हमने ये शामिल कर ली है। बहुत ही सुंदर सी आपने ये ईमेल लिखी थी। कृष्ण की नगरी मथुरा से ईमेल मिल रही है। सबा अंसारी, शकील, हिना, आफताब, गुलिस्ता रानी और नंदिनी के साथ अंजलि की। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया, स्टेशन रोड जमशेदपुर से ईमेल आपने भेजी थी। दोस्तों, आप सभी समय प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपकी पसंद 4:38 और 30 सेकंड का वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और प्रोग्राम चल रहा है आपकी पसंद के गीतों का। और नेक्स्ट गीत जो प्ले करने जा रही हूँ ये है दिल फिल्म से।

ये बहुत ही प्यारा दर्द भरा नगमा है दिल फिल्म से अनुराधा पौडवाल और सुरेश पाटकर की आवाजों में जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से इसे फरमाइश कर रहे हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप।

इस गीत के लिए शामिल कर रहे हैं हम ये ईमेल दादरी गेट भिवानी से आई है कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल और कुणाल मेहरा की। और बहुत सारी ईमेल्स हमें लगातार मिलती जा रही हैं, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और दीपा रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, आदिति गुप्ता, राधे, दीपक और अंकुर राघव गुप्ता। और साथ में ईमेल के आपने बहुत ही प्यारे प्यारे से खूबसूरत से दिल बनाकर भेजे हैं।

और हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया है दोस्तों। बहुत ही प्यारी सी ईमेल आपने लिखकर भेजी है। और मजनू कटिला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। फिलहाल वैसे बता दूं आपको, ये ईमेल मैं शामिल कर चुकी थी, लेकिन बार बार आप लोग ईमेल भेज रहे हैं क्योंकि आपको हमसे बेहद प्यार है। वड़िंग खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, और साथ ही ईमेल हम शामिल कर रहे हैं। पाहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से आई है, नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, निशांत, लखन लाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन की किसी भी गीत में शामिल करने के लिए इन्होंने फरमाइश करी थी। तो दोस्तों ईमेल आपकी हमने इस प्यारे से गीत में शामिल करी। और हमारे ये दोस्त हैं, ये ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से लिख रहे हैं, रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश, निशा कठेरिया, प्रज्ञा, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया और समस्त कठेरिया परिवार। आप लिख रहे हैं आपका लोकप्रिय कार्यक्रम, आपकी पसंद हम बराबर सुन रहे हैं, हमारा भी ईमेल शामिल करिए किसी भी गीत में। तो आपका ये ईमेल हमने शामिल कर लिया है बहुत ही प्यारा सा और प्यारे से गीत में। और खैल बाजार पानीपत से ईमेल आई है, नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष कोयल, डुग्गू भाविक सिक्का। और ये एक और ईमेल हम शामिल की लेते हैं फिलहाल, और हमें उसके बाद आपको सुनवाने हैं कुछ और भी गीत। केवल कमली, कमल बालूजा, मधु बालूजा, ये आप लोग अलग अलग नामों से जो ईमेल भेजते हैं ना, ये सब समझ में आते हैं दोस्तों। आप ये भाई देखिए, ये अच्छी बात नहीं है, आप एक ही नाम को कितनी बार सुनना चाहते हैं भाई। और भी हमारे श्रोताओं को, अपने दोस्तों को शामिल होने दीजिए। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित्त की ईमेल हमने शामिल कर ली है। और अब सुनवा रहे हैं आपको अमानत फिल्म का ही बहुत ही खूबसूरत सा गाना।

अदालत फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से इसे फरमाइश किया था फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण ने। और अब शामिल किए लेते हैं छोटी बलिया कजरत मुंबई से अब्दुल कलाम रैन, अब्दुल सलाम रैन और उमर खेड से हैं भाई सराज खान, शबाना बेगम और फरदीन खान। आपकी मेल हमने शामिल कर ली है। और ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर, पंजाब से ईमेल भेज रहे हैं। बबलू ठेकेदार, शेख शागिर, शेख वजीर, सोहिल शेख, सैयद तैमूर, शामिर खान और अजलान मोताला बाजार से ईमेल भेज रहे हैं। आइए अब सुनवाते हैं आपको लहू के दो रंग फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत। किशोर कुमार की आवाज़ में ये गाना है,

और इस गीत के लिए शामिल कर रहे हैं दोस्तों ये ईमेल आनंद पर्वत दिल्ली से लखपत राज, वेद प्रकाश चौहान, सुबेदार अमर सिंह। आपने किसी भी गीत में शामिल करने के लिए अपनी ईमेल को हमें कहा था। आप लिख रहे हैं, वंदना बेटा जी हमारी तरफ से राम राम स्वीकार करिए। तो राम राम जी, आपकी राम राम भी हमने स्वीकार कर ली और आपकी ईमेल भी हमने शामिल कर ली है। और अब हम शामिल कर रहे हैं, ये ईमेल है सनावत से शेख मूसा मोहसिन की। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम और विशाल प्रिया, दिशानी और निमित की ईमेल है। गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता, शोभा, नंदिनी, रक्षाताई खड़ से उषा, और साथ ही बिहार स्टेट डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, सोनम वली और असमा वली, सहारनपुर से सुरेश डुकर और प्रभा देवी डुकर। मोरटक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल की ईमेल हमने शामिल की है। और अब सुनाते हैं आपको इस प्रोग्राम का आखिरी गाना।

न्यू दिल्ली से कमलेश मुकुल सचिन और दीपांशु इस गीत के लिए फरमाइश हमें भेज रहे थे, और साथ ही सौंगा धमतरी से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन, आपकी ईमेल हमने शामिल कर ली है। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन और अपार ढिंगिया की ईमेल शामिल की गई है, और पटेल नगर मालोट से हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू जाजोरिया गुड्डू। और साथियों इसी के साथ समय बहुत ही कम है, लेती हूँ इजाजत इस कार्यक्रम आपकी पसंद से, दीजिए वंदना को अनुमति। नमस्कार, आप सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर।

समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि युवाओं को असंख्य अवसर प्रदान करना विकसित भारत की मूल परिकल्पना है। युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा लिखित एक लेख साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। केंद्रीय रेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं मुख्यमंत्री बिहार सरकार सम्राट चौधरी ने छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर दोहरीघाट औड़िहार ट्रेन सेवा का वाराणसी सिटी तक मार्ग विस्तार और मऊ दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल मऊ एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौरान मऊ रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि इन गाड़ियों के चलने से पूर्वांचल के विकास को और अधिक गति मिलने के साथ ही छात्रों किसानों व्यवसायियों श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को काफी सुविधा होगी तथा क्षेत्र के कृषि एवं अन्य उत्पादों को बाजार मिलने से क्षेत्र के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को भी गति मिलेगी। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रुदौली विधानसभा क्षेत्र स्थित मां कामाख्या धाम में वीरांगना छलकारी बाई की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 378 करोड़ की लागत की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत की अमर वीरांगना को, जिसने 1857 के स्वातंत्र्य समर में देश की आजादी के लिए फिरंगियों को नाको चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था, ऐसी झलकारी बाई को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी ने मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर परियोजना के तहत किसानों एवं किसान उत्पादक संगठनों के साथ बैठक आयोजित कर निर्यातोन्मुखी सब्जी उत्पादन की संभावनाओं पर चर्चा की। कार्यक्रम में विशेष रूप से मिर्च के निर्यात, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, सुरक्षित कृषि पद्धतियों तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेती पर जोर दिया गया। संस्थान के निदेशक डॉ राजेश कुमार ने किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें वैश्विक बाजारों से जोड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: माय लिसनर 5 o'clock, जी हाँ 5 बज चुके हैं और 5:04 पैंतीस सेकंड भी हो चुके हैं और अलका एक बार फिर से आप सभी के साथ है 100.7 FM रेनबो पर। और इस वक्त पूरा घंटा आप इंजॉय करेंगे जिन 10 गानों को उन्हें टॉप 10 में शामिल किया है आज मैंने। अब वो कहाँ से हैं, किस एरा से हैं और किस डिकेड के हैं, ये तो बस आपको बताना बाकी है। वैसे ये वादा है कि आज इन 10 गानों को आप खूब इंजॉय करने वाले हैं। और आज बात करेंगे 1980 के दशक की, यानी कि 1980 के दशक की। तो 1980 का जो दशक था, अगर उस दौर की हम बात करें या उस दौर के जो भी लोग हैं, उन गानों को बिल्कुल भी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी उन गानों को

जब आप सुनते हैं तो मुझे लगता है वो सब पर भारी पड़ जाते हैं। वो जो दशक था बॉलीवुड संगीत के लिए एक बेहद अनोखा दौर था। इस दौर में एक तरफ जहां आरडी बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की दोनों ने जादू कर रखा था लोगों के दिलों पर, तो दूसरी तरफ जगजीत सिंह की जो गजलें थी वो भी छाई हुई थी। बप्पी लहरी का डिस्को और रोमांटिक शुरुआत। तो ये था 1980 का वो दशक। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं उसी दौर में खूबसूरत मेलोडियस ट्रैक्स की तरफ और शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर था उस वक्त ये खूबसूरत गाना फ्रॉम द मूवी मैंने प्यार किया।

0: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो?
1: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहाँ से लाई है नुस्खा?
2: शत्रुपा से माँ जी।
3: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
2: शत्रुपा से।
4: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
2: शत्रुपा से।
5: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: सुनिए,
7: कहिए, कहिए,
6: सुनिए, सुनिए,
7: कहिए,

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सभी आपने एंजॉय किया था नंबर 10 और अब बारी आ गई है नंबर 9 की। दोस्तों ये वो दौर था जब हर गाने के शब्द सीधे दिल को छू जाते थे। अगर आप इनमें से किसी भी गानों को सुनेंगे ना तो लगेगा कि वही सबसे बेहतर है। तो देखिए ना नंबर 9 पर इस ट्रैक को सुनने के बाद आपको खुद ये एहसास हो जाएगा।
1: I love you.

एग्जैक्टली मैं कहती हूँ कि नंबर 10 और 9 तो आपने फुल्ली एंजॉय कर लिया, लेकिन अब बात करते हैं नंबर 8 की। जी हाँ, नंबर 8 पर उस वक्त एक ऐसा ट्रैक था जो टूटे दिलों का सहारा बन गया था, और वो फिल्म थी हीरो। आई थिंक आपने वो सॉन्ग गेस कर लिया होगा। 1983 से लेकर अब तक ये गाना सबके दिलों पर अब भी राज कर रहा है, क्योंकि ये ट्रैक था ही कुछ ऐसा।

और अब बारी आ गई है नंबर 7 की। 5:23:05 हो चुके हैं दोस्तों, और इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं आज का टॉप 10 अलका के साथ 100.7 FM रेनबो पर। नंबर 8 के बाद नंबर 7 पर था गायक किशोर कुमार और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी का वो गाना जो उस दौर में रोमांटिक सॉन्ग्स की लिस्ट में काफी आगे था। ये तो आप इस गाने को सुनकर ही बता सकते हैं।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
2: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
3: जनाब अली,
2: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
4: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
5: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
4: स्पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
5: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।

0: 4444.
1: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: इस दिन को भला कौन नहीं पहचानता है। उस दौर के जितने भी लोग हैं इस ट्रैक को बेहद पसंद करते थे और इसका यही रीजन था कि इस ट्रैक ने जाकर नंबर 6 पर अपने पैरों को जमा लिया था। 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक के हर सॉन्ग ने उस वक्त धूम मचा रखी थी। फिल्म अपनी जगह सुपर डुपर हिट थी और गाने अपनी जगह हिट थे और नंबर 6 पर था ये खूबसूरत ट्रैक।

दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। yeah!

वैसे 1980 का वो जो दशक था, वो दौर ऐसा दौर था जब हर तरह के गानों ने और फिल्मों ने अपनी धूम मचा रखी थी। एक तरफ कुछ और ही तरह के ट्रैक्स थे, अभी आपने

वैसे 1980 का वो जो दशक था, वो दौर ऐसा दौर था जब हर तरह के गानों ने और फिल्मों ने अपनी धूम मचा रखी थी। एक तरफ कुछ और ही तरह के ट्रैक्स थे, अभी आपने एक बेहतरीन गाने को एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी कयामत से कयामत तक, लेकिन अगला गाना जो आप नंबर 5 पर एंजॉय करने वाले हैं, आपको बता दें कि ये एक ऐसा ट्रैक है कि शोरदा की इस ट्रैक की अगर बात करें तो ये पायदान पर आ पहुंचा था नंबर 5 पर 1981 में आई थी फिल्म कुदरत, और इस गाने ने नंबर 5 पर अपनी जगह बनाई थी। बहुत ही सूदिंग, बहुत ही दिल को छू जाने वाला ये गाना, तो आइए इसे भी एंजॉय करते हैं अपने इस टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 5 पर।

0: क्या, हम तो मजबूर है बेटा, ना तो हम तुम्हें छोड़ने जा सकते हैं।
1: तुमसे प्यार
0: तुम्हें अगर कुछ खेलना मिलना है मोबाइल ले लो, और क्या कर सकते।

80 के दशक में आई फिल्म अमराव जान लोगों की पसंदीदा फिल्मों में से एक बन चुकी थी और इस गाने की तो बात ही अलग थी। तभी तो था ये नंबर 4 पर। आशा जी की आवाज में आइए इस ट्रैक को एंजॉय करते हैं, क्योंकि इस गाने को जब आप सुनेंगे तो आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि नंबर 4 पर इसे पहुंचना ही था।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं।
5: और ये खूबसूरत गाना उस वक्त 1980 के दशक में बना हुआ था नंबर 3 पर। नंबर 4 के बाद अब बारी आ गई थी नंबर 3 की, जिस पर थी फिल्म मासूम और उसका ये दर्द भरा सुपर डुपर हिट ट्रैक।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष

0: योग, विधि, एग्रीकल्चर, बीसीए, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
2: और अब बारी थी नंबर दो की। जी हाँ, नंबर दो पर रही जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज और गीतकार थे जावेद अख्तर। फिल्म थी साथ साथ। खूबसूरत ट्रैक रहा नंबर टू पर।

हैं दोस्तों और प्रोग्राम अब वाइंड अप करने का टाइम हो चला है। नंबर 10 से लेकर नंबर 2 तक हम पहुंच चुके हैं और अब बाकी है बारी नंबर 1 की। 1981 में जब सिलसिला फिल्म आई तो किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज का ये ट्रैक पहुंच गया नंबर 1 पर। और पहुंचता भी क्यों ना, सॉन्ग सुनने के बाद आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि ये ट्रैक एक्चुअल में नंबर 1 के लिए ही था। तो इसे इंजॉय कीजिए और फिलहाल ट्यून रखिए 100.7 FM रेनबो। कुछ ही देर में आपके लिए सिटी अपडेट्स लेकर हाजिर रोज आऊंगी मैं आप सभी के लिए शामी अवध में। स्टे ट्यून 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में रुदौली विधानसभा क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सीय समेत 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने महान वीरांगना छलकारीबाई की भव्य प्रतिमा का भी अनावरण किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गोंडा में देवीपाटन और बस्ती मंडल के लोक निर्माण विभाग के पुराने कामों की समीक्षा एवं नए कामों की कार्ययोजना के संबंध में समीक्षा बैठक की। केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने

केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने आज आगरा में प्रथम ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एमएसई कार्य समूह की बैठक आयोजित की। बैठक में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जितिन राम मांझी शामिल हुए। इस बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, रूस, वियतनाम और भारत सहित ब्रिक्स सदस्य और ब्रिक्स सहयोगी देशों के नीति निर्माता, उद्योगपति और अन्य हितधारक भी शामिल हुए। ब्रिक्स बैठक की थीम चीनापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रही। इस दौरान प्रतिनिधियों ने वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि यह कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगले 3 दिनों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
4: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
5: समझे जनाब अली।
4: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
6: मैं समय हूं और मैं हरीश बिमानी हूं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
7: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
8: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
9: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से

0: जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: छह बजकर 6 मिनट और 13 सेकंड हो चुके हैं 100.7 FM रेनबो पर। एक बार फिर से अलका आपके साथ है और इस पूरे घंटे बात करेंगे हम सिटी अपडेट से जुड़ी हुई। जी हाँ, शहर में क्या कुछ हो रही है गतिविधियां, क्या कुछ हलचल है, कहाँ आपके लिए जाना और पहुंचना जरूरी है और कहाँ आप बिल्कुल भी ना जाएं, कहाँ का ट्रैफिक किस तरह का होगा और किस तरह आप अपने आप को उस जगह से बचा सकते हैं, कौन सा डायवर्जन आप रूट ले सकते हैं, ऐसी बहुत सारी जानकारियां होंगी आज आपके लिए शामेवद में। सो स्टे ट्यून 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

सो फ्रेंड्स, चलिए आपको बताते चलते हैं कि क्या है अगली अपडेट आप सभी के लिए, यानी कि आज के प्रोग्राम की पहली अपडेट, और ये है प्रवक्ता के उत्तर कुंजी से जुड़े हुए। जी हाँ, एजुकेशनल अपडेट है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेजेस में प्रवक्ता, यानी पुरुष और महिला दोनों ही श्रेणी में आते हैं। आपको बता दें कि इसमें भर्ती 2025 के 13 विषयों के लिए 13 सब्जेक्ट्स और सामान्य अध्ययन की जो प्रारंभिक परीक्षा थी उसकी उत्तर कुंजी को गुरुवार को जारी कर दिया है। अब बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इसमें कोई आपत्ति दिखाना चाहते हैं तो 23 जून तक का समय आपको इसमें दिया गया है। 23 जून को 5 बजे तक आप आपत्ति दिखा सकते हैं, आपत्ति अपनी जता सकते हैं, और 23 जून इसकी लास्ट डेट है। तो फिलहाल अगली अपडेट तक के लिए इस ट्रैक एंजॉय करते रहिए, और उसके बाद वापस आते हैं आप सभी के पास। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाए पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और भाई अगली अपडेट जो है वो लखनऊ वासियों के लिए बहुत खास है, और वो इसलिए क्योंकि अभी फिलहाल एक ऐसा रास्ता जो कि बंद कर दिया गया था और अब उसे खोल दिया गया है। जी हाँ, लखनऊ में ऐसा होता रहता है। इनफैक्ट शहरों में जब बहुत सारी गतिविधियां ऐसी होती हैं जहां पर मरम्मत का काम चल रहा है या कोई डायवर्जन है, तो उस तरह से आपको रूट अपना डायवर्ट करना पड़ता है। फिलहाल मैं बात कर रही हूं गोमती बैराज पुल पर जो आवागमन था उसे जो रोक रखा गया था 8 मई से, ये जो वाहन थे इन वाहन सवारों के लिए वहां पर रुकावट रही थी, लेकिन अब समतामूलक से गोमती बैराज का रास्ता खुल गया है। 8 मई से वाहन सवारों के लिए समतामूलक और बैकुंठ धाम तिराहे से गोमती बैराज के बीच जो आवागमन है वो प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन गोमती बैराज के गेटों के मरम्मत का कार्य हो रहा था और इसी की वजह से इसे बैन किया गया था। इसके खुलने से लोगों को अब काफी रिलैक्स हो गया है। तो अगर आपकी जानकारी में ये नहीं था तो आपको बता दें कि अब ये रास्ता खुल गया है, जिसका फायदा अब आपको बिल्कुल मिलेगा।

फ्रेंड्स 6:23 और 21 सेकंड हो चुके हैं 100.7 FM रेनबो पर आज का शामी अवध आप इंजॉय कर रहे हैं अलका के साथ। और बढ़ती तपती और चलती गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। घर से बाहर निकलना हो तो भारी ही है और घर के अंदर भी लोग बेहद परेशान हैं। वो लेडीज जो किचन में जाकर काम कर रही हैं उनके लिए भी इस गर्मी के हाल बहुत बेहाल हैं। और काफी हद तक देखा जाए तो अभी इस इन चीजों से निकलना इतना आसान नहीं नजर आ रहा है, इस गर्मी से निजात पाना इतना आसान भी नहीं है। फिलहाल अब तो ये तपिश जो है वो शुरू हुई है, बस इंतजार है तो झमाझम मेघों का, जी हाँ बारिश का, ताकि कुछ तो ठंडक का एहसास हो, थोड़ा सा तो ये गर्मी कम हो। फिलहाल अगर इस समस्या में एक समस्या और जुड़ जाती है, जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो बिजली कटौती जो है, बिजली से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो बेहद बढ़ जाती हैं ऑलमोस्ट हर एरिया में। तो ये लाजमी है क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ती है। लेकिन इनफैक्ट अगर आप इन चीजों में पड़ गए हैं, आप किसी समस्या में हैं, तो आपको उसका रास्ता भी बता देते हैं। बिजली से संबंधित समस्याओं के लिए आप जो है 1912 यानी कि 1912 पर शिकायत कर सकते हैं। और आप बिजली कटौती से संबंधित, नया कनेक्शन है उससे भी संबंधित, अगर गलत बिल आपके पास पहुंच गया है या खराब मीटर आपका हो गया है, लोड आप बढ़वाना चाहते हैं या घटाने की शिकायत है, कुछ भी व्हाटएवर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, तो आप एक समय सीमा के भीतर इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है आपका नंबर होगा 1912 और इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल वक्त जो है वो ये कह रहा है कि इसी तरह अपडेट्स का सिलसिला अभी चलता रहेगा, आप इंजॉय करते रहेंगे अलका के साथ। बस आपको ट्यून रखना है 100.7 FM रेनबो दर्कन लखनऊ की।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
4: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
3: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
4: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
4: 100.7 FM रेनबो।
5: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
6: Maazi ke lamhon mein piroi kuch dilkash daastane.
7: Wo bhooli daasta, lo phir yaad aa gayi.
6: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

0: रात की बहती तन्हाइयों के
1: खोया खोया चांद खुला आसमान
0: रजनीगंधा हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर धड़कन लखनऊ की।

वेल फ्रेंड्स, अगली अपडेट जो है वो ट्रेन से संबंधित है, यानी कि आपको बता दें कि कटिहार अमृतसर ट्रेन जो है वो उसकी डेट अब चेंज कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। इनफैक्ट कटिहार अमृतसर कटिहार वाया गोरखपुर साप्ताहिक ट्रेन जो है उसके चलने की संचालन की जो अवधि है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। और वो क्या है, चलिए आपको बता दें कि अब ये ट्रेन तीन कुछ एक्स्ट्रा फेरों के साथ चलेंगे, यानी अप एंड डाउन के जो इसके वो है फेरे वो बढ़ा दिए गए हैं। और अब इसे 15, 22 और 29 जुलाई को कटिहार से और 17, 24 और 31 जुलाई को अमृतसर से चलाया जाएंगे। दोनों ही फेरे बढ़ाए गए हैं, डेट्स बढ़ाई गई हैं। 15, 22 और 29 जुलाई को कटिहार से चलेगी और 17, 24 और 31 जुलाई को ये अमृतसर से चलाई जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कटिहार अमृतसर ट्रेन की, और 31 जुलाई तक इस ट्रेन की चलने के फेरों की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है।

0: टाइम्स 6:41 और 50 सेकंड हो चुके हैं 100.7 FM रेनबो पर। आप आरजे अलका के साथ एंजॉय कर रहे हैं आज का शामी अवध। और आपको इन शॉर्ट जल्दी से बता दें कि सीए फाइनल परीक्षा का परिणाम आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से इसे देख ले, क्योंकि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI ने मई 2024 में आयोजित हुए सीए फाइनल परीक्षा का परिणाम थर्सडे यानी गुरुवार को घोषित कर दिया है। तो देख लिया है, सो फार सो गुड। नहीं तो अभी तक आपने नहीं देखा तो जल्दी से इस परिणाम को देख ले भाई। मेहनत का जो नतीजा जब आता है तो वो बहुत बेसब्री से उसका इंतजार होता है। फिलहाल वक्त ये कह रहा है कि अगली जो अपडेट है उस तक इस ट्रैक को आप इंजॉय करते रहिए। वापस आएंगे आपके पास, स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।
1: शेकी शेकी।

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए, पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट

0: www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

श्री राम क्षण क्षण में श्याम। हो मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान। तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम पधारो प्रभु।

0: पुष्पांजलि हर सुबह 6 से 7 सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
1: Keep listening to 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
0: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
0: ओनली ऑन यूथ वेव,
1: यूथ की बात यूथ के साथ,
0: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: दिस इज समथिंग स्पेशल टू द पाजीज एंड ऑल द परजोइनर्स, दिस इज पटियाला हाउस इन ए
4: लॉन्ग दलिश कारा।
5: और इस खूबसूरत ट्रैक के साथ आज के प्रोग्राम शामी अवध को वाइंड अप करती हूँ मैं आपकी आरजे दोस्त अलका, लेकिन कुछ ही देर में वापस आ रही हूँ आपका एक और फेवरेट प्रोग्राम हेलो एफएम लेकर। और करना कुछ नहीं है, करना है आपको डायल नंबर्स और अपनी पसंद के ट्रैक्स को करना है एंजॉय। सो स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: के विकास में सहभागी बने।
1: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और अब सुनिए प्रदेश की टॉप 10 समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में रुदौली विधानसभा क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और चिकित्सालय समेत 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने महान वीरांगना झलकारीबाई की भव्य प्रतिमा का भी अनावरण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में देवीपाटन और बस्ती मंडल के लोक निर्माण विभाग के पुराने कामों की समीक्षा और नए कामों की कार्य योजना के संबंध में समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने देवीपाटन मंडल के मां पाटेश्वरी देवी शक्तिपीठ, स्वामी नारायण मंदिर से बस्ती के मखौड़ा धाम व अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले प्रमुख 13 मार्गों के विकास को मंजूरी दी। केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी द्वारा आज वाराणसी में वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बिहार के छपरा जंक्शन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वांचल

अंचल को सौगात देते हुए दोहरी घाट औड़िहार ट्रेन सेवा का वाराणसी सिटी तक विस्तार और मऊ आनंद विहार नियमित एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा शामिल हुए। केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने आज आगरा में प्रथम ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एमएसई कार्य समूह की बैठक आयोजित की। बैठक में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी शामिल हुए। पीलीभीत जिले के गांधी स्टेडियम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में मिलेट्स मेला और प्राकृतिक खेती की कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिले के प्रभारी कृषि शिक्षा राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने मेले का शुभारंभ करके स्टॉलों का निरीक्षण किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी ने मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर परियोजना के तहत किसानों एवं किसान उत्पादक संगठनों के साथ बैठक आयोजित कर निर्यातोन्मुख सब्जी उत्पादन की संभावनाओं पर चर्चा की। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जनपद बिजनौर के इंदिरा पार्क में सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगले 3 दिनों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा।

7:04 हो चुके हैं दोस्तों और प्रोग्राम शुरू हो गया है हेलो एफएम। जी हाँ, जल्दी से मिलाइए नंबर 2238852 और 2238845 और इन नंबर्स के थ्रू अपनी पसंद के फेवरेट गानों को एंजॉय कीजिए 107 FM रेनबो पर। आपके साथ है आपकी रेडियो साथी अलका।

0: फ्रेंड्स, अब बारी आ गई हमारे आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर की। तो चलिए उन्हें लाइन पर लेते हैं और करते हैं उनसे बात, और क्या है उनकी पसंद और कहां से उन्होंने हमें किया है कॉल। हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैम, मैं राम केवल मौर्य बोल रहा हूँ, ग्राम मंगोली पोस्ट जगदीशपुर, जिला मेठी से।
0: राम केवल जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका प्रोग्राम में। और बताइए कैसे हैं आप?
1: मैडम, बस मैडम ठीक है, आप कैसी हैं?
0: मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो बताइए आज कौन सा आप सुनना चाहेंगे ट्रैक अपनी पसंद का?
1: मैडम ये आया सपनों में कोई सजादा।
0: ओके, और किसे सुनवाना चाहते हैं?
1: मैडम सब, जितने लोग सुने सभी को।
0: सभी को, मतलब कोई विशेष व्यक्ति नहीं है जिसे सुनवाना है?
1: नहीं नहीं मैडम, कोई नहीं है।
0: ओके, और कुछ कहना चाहेंगे राम केवल जी?
1: नहीं मैडम, बस ठीक है मैडम।
0: थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।

0: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा.
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा. NECC द्वारा जनहित में जारी.
3: हमारी जनगणना हमारा विकास.
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी. देश के विकास में सहभागी बने.
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.
6: वेल फ्रेंड्स, 7:14:32 हो चुके हैं और हमारे अगले कॉलर हमारे साथ हैं, तो करते हैं उनसे बात. हेलो हेलो
7: हेलो.
6: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताएं.
7: मैम, मेरा नाम है कृष्ण कुमार अवस्थी.
6: कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत वेलकम है प्रोग्राम में आपका. कहाँ से कॉल किया आपने हमें?
7: मैम मैं
6: हेलो. हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
7: हेलो.
6: हाँ हाँ, आपको हमारी आवाज आ रही है?
7: हाँ, आ रही है आवाज.
6: हाँ बताएं, कहाँ से कॉल किया आपने कृष्ण कुमार जी?
7: मैम मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई, ग्राम सेवा पोस्ट 56, जिला हरदोई से.
6: ओके, तो कृष्ण कुमार जी, आज कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
7: गाना मैं सुनना चाहूँ, आई मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके.
6: अच्छा, ये ट्रैक आप सुनना चाहते हैं, और किसे सुनवाना चाहते हैं?
7: अपने अपने गांव आते हो तो अपनी पत्नी को.
6: ओके.
7: अध्यापक पत्नी.
6: हाँ हाँ.
7: और अपने गांव आतियों को.
6: ओके, तो बहुत बढ़िया. ये खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए, और जिन्हें आपने डेडिकेट किया है उन सभी के लिए. थैंक यू सो मच.
7: मैम नाम ले एक बार.
6: अरे बिल्कुल, नाम लीजिए भाई.
7: नीलम अवस्थी. कनक, मेरी पत्नी कनक अवस्थी.
6: हाँ.
7: मेरी बेटी चेतना अवस्थी.
6: हाँ हाँ.
7: मेरी माँ और मेरे मामा सीतापुर से, विशेषकर मेरे मामा सीता हरिमंगल तिवारी.
6: ओके.
7: साकेत तिवारी, ऋचा मामी, ऋचा भाभी, सबको मैं सुनाना चाहता हूँ.
6: ओके, इन सभी के लिए प्यारा सा ट्रैक. थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए.

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। कहा, युवाओं और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एसआईटी की जांच सामने आएगा मंदिर चढ़ावा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल को दी 3 ट्रेनों की सौगात। कहा, आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी आज आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई कार्य समूह की बैठक में हुए शामिल। वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने पर हुआ विचार विमर्श। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित देश भर से जुड़े लोगों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि पूरा विश्व आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदले। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत हुई है। यह युवाओं और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
0: इस आयोजन के अंतर्गत प्रदेश में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल हुए। इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में रुदौली विधानसभा क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय समेत 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत और विकास के विजन को साकार करने की दिशा में डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की वजह से उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में ब्रेक थ्रू साबित हुआ है।
2: आज उत्तर प्रदेश अपनी शानदार यात्रा को लेकर के चल रहा है। अब देश के अंदर बीमारू राज्य नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनकर के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अब यूपी के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है, ये इसी पंच प्रण का परिणाम है और डबल इंजन सरकार का परिणाम है।
0: मुख्यमंत्री ने श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर कहा कि ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार ने एसआईटी जांच बैठाई है। एसआईटी की जांच से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।
2: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनलगल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो।
0: मुख्यमंत्री ने नगर निगम अयोध्या में 290 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 245 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गोंडा में देवीपाटन और बस्ती मंडल के लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने देवीपाटन मंडल के प्रमुख 13 मार्गों के विकास को मंजूरी दी। कुल 4,901 करोड़ 65 लाख रुपए की 1,000 से अधिक विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति भी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बिहार के छपरा जंक्शन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वांचल को सौगात देते हुए दोहरी घाट ओडिहार ट्रेन सेवा का वाराणसी सिटी तक विस्तार और मऊ आनंद विहार नियमित एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मऊ के रास्ते संचालित होने वाली छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलेगी जो दिल्ली से लखनऊ और वाराणसी होते हुए पटना और सिलीगुड़ी तक जाएगी।
3: आने वाले समय में एक और नई चीज चालू होगी, बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना और पटना से सिलीगुड़ी, यानी दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी।
0: इस दौरान मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा भी शामिल हुए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में इंडिया फर्स्ट की भावना राष्ट्रीय चरित्र बन गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इसी भावना ने वैश्विक मंच पर भारत के मान सम्मान और सामर्थ्य को नई ऊंचाई दी। इसी क्रम में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी द्वारा आज वाराणसी में वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल,

0: सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, 7:42 हो चुके हैं और इस वक्त हमारे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चलिए हेलो एफएम में अपने नेक्स्ट कॉलर को ज्वाइन करते हैं और उनकी पसंद जानते हैं। हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही हैं?
1: साहिबा अंसारी, महराजगंज लखीमपुर खीरी से बोल रही
0: हूँ। लखीमपुर खीरी से साहिबा बोल रही हैं। साहिबा बहुत बहुत वेलकम है प्रोग्राम में आपका।
1: थैंक यू।
0: कैसी हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, अपने आप बताइए। आपके
0: एकदम फर्स्ट क्लास। तो बताइए आज क्या है पसंद आपकी, क्या सुनेंगी?
1: आज की पसंद है मेरी, मेरा दिल परदेसी ले गया।
0: और किसे सुनवाना चाहती हैं?
1: सबसे पहले आपको सुनवाना चाहते हैं।
0: थैंक यू।
1: मोहम्मद आसिफ भाई हैं, मोहम्मद फैज भाई हैं, वकील अहमद भाई हैं, तमा परवीन अंसारी अच्छी हैं, गुलाब पर देखी अच्छी हैं, महक अंसारी हैं, साजिया अंसारी हैं, रिंकी पिंकी हैं, रोशनी दीदी हैं, प्रीति हैं, सत्यम कुमार हैं, राशिद अंसारी हैं और रूबी रोही हैं।
0: ओके, सभी को भाई जितनी भी लिस्ट आपने शामिल की है सभी के लिए खूबसूरत सा गाना। थैंक यू सो मच साहिबा,
1: बहुत दिनों के बाद आई हैं।
0: हाँ जी, नहीं मैं तो आती हूँ, आपसे बात बहुत दिनों के बाद हो रही है।
1: जी हमारी बात
0: बहुत दिनों के बाद। जी हाँ, ओके, थैंक यू सो मच।
1: आपको भुट्टा खिलाते हैं?
0: हाँ जी,
1: आपको भुट्टा खिलाते हैं?
0: भुट्टा
1: जी।
0: ओके, थैंक यू सो मच भुट्टा ऑफर करने के लिए। फिलहाल आपका ट्रैक मैंने प्ले कर दिया है, तो चलिए इसे हम और आप मिलकर एंजॉय करते हैं साहिबा। ओके
1: जी, थैंक यू।
0: ओके, बाय बाय।

0: सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉलर के साथ बढ़ते हैं आगे और करते हैं उनसे बात. कौन है हमारे साथ इस वक्त लाइन पर? हेलो.
1: हेलो मैम जी, नमस्ते.
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं
1: जी? मोनू सेन बोल रहा हूँ, खालिद बाहरपुर पोस्ट हूँ

0: सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉलर के साथ बढ़ते हैं आगे और करते हैं उनसे बात. कौन है हमारे साथ इस वक्त लाइन पर? हेलो.
1: हेलो मैम जी, नमस्ते.
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मोनू सेन बोल रहा हूँ. खालिद बाहरपुर पोस्ट जिला मीठी मीठी अमेठी से.
0: मीठी मीठी अमेठी से मोनू जी, बहुत दिन से, बहुत दिन के बाद आपसे बात हो रही है मेरी.
1: जी कॉल नहीं लगा पाते क्योंकि बहुत हाँ. बिजी रहते हैं, लेकिन क्रिया करते हैं हर पर.
0: ओके, मुझे लगा कि मेरी ही बात आपसे बात, मतलब काफी दिन बाद हो रही है, आपने कॉल ही नहीं लगाया. और आज क्या सुनना चाहेंगे
1: जी? फिल्म जिगर का है, प्यार की कागज पे दिल की कलम से.
0: और डेडिकेशन किसके लिए है?
1: सभी आरजेस के लिए, और फहीम भैया बहुत दिन से प्रोग्राम में नहीं आए तो उनको भी लाया जाए.
0: ओके, बिल्कुल. तो ये खूबसूरत सा गाना सभी आरजेस के लिए और खासतौर पर आपके लिए मोनू जी, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए.

0: साथ बजकर भैया
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सो फ्रेंड्स 7:47 हो चुके हैं और ये देखिए कितनी जल्दी सेकंड्स के बाद टाइम चेंज हो जाता है। 7:48 हो चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे अगले कॉलर से बात करने का और देखते हैं कौन है इस वक्त लाइन पर। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही हैं?
1: मैं यास्मीन बानो बात कर रही हूँ।
0: यास्मीन बहुत बहुत वेलकम है प्रोग्राम में आपका, और बताएं कैसी हैं आप यास्मीन?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आपका कार्यक्रम सुन रही थी।
0: ओके,
1: अच्छा लग रहा था सुनते हुए।
0: ओके थैंक यू। सो बताएं आज क्या सुनना चाहेंगी, कौन सा गाना?
1: गाना तो एक रिश्ता मूवी का सुनना चाहती हूँ।
0: कौन सा?
1: लगाने की सजा तो ना दोगे तुम।
0: ओके, और यास्मीन किसको सुनवाना चाहेंगी, ये किसको सुनवाना चाहेंगी ट्रैक?
1: ये ट्रैक जितने लोग सुन रहे उन सभी को, और मेरे एक फ्रेंड है शबनम।
0: ओके,
1: और सनीला जी को।
0: ओके, और कुछ कहना चाहेंगी यास्मीन?
1: और क्या मैम, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो पानी पीते रहें।
0: हाँ।
1: और मतलब तरल पदार्थ का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें।
0: ओके, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ओके बाय
0: बाय।

0: है शबनम।
1: ओके
0: और सनीला जीतू।
1: ओके और कुछ कहना चाहेंगी यास्मीन?
0: और क्या मैम, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो पानी पीते रहें। हाँ। और मतलब तरल पदार्थ का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें।
1: ओके थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: ओके बाय
1: बाय।

0: सो माय डियर लिसनर्स, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का हो गया है टाइम। 7:55 हो चुके हैं, लेकिन अपने लास्ट कॉलर को लेते हैं लाइन पर। उनकी पसंद क्या है जानते हैं उनसे। हेलो
1: हेलो अलका दीदी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग। दीदी कैसी हो आप?
0: आपको भी प्रणाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कौन बोल रही हैं?
1: थैंक यू, मैं नीलू बोल रही हूँ, रूपपुर चंदेला से। मेरी नवंबर में बात हुई थी, बहुत अंतराल के बाद मेरी कॉल लगी।
0: काफी
1: अच्छा
0: लंबा अंतराल हो गया है, मतलब नवंबर में, मुझे तो लगता है कुछ महीनों बाद एक साल पूरा होने वाला था।
1: बिल्कुल। कैसे हो आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
1: बहुत अच्छी लगती है।
0: थैंक यू सो मच। और बताइए नीलू
1: जी। अच्छी हूँ। एक मेरी रिक्वेस्ट है मैम आपसे।
0: हाँ हाँ
1: मैम, आपको हम जीमेल में और रेनबो कैफे में सुनना चाहते हैं।
0: ओके ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी कोशिश रहेगी हमारी। और चलिए, टाइम बहुत तेजी से नीलू आगे बढ़ रहा है, आप जल्दी से बता दें आज क्या सुनना चाहेंगे।
1: जी मैम, एक गाना सुनना चाहूंगी, तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है। कुछ इजाजत हो तो फटाफट दो नाम दे।
0: बिल्कुल बिल्कुल इजाजत है, आप बोले। हाँ
1: मैम, सबसे पहले आप और मेरी प्रिय दोस्त पीहू मनु और रोशनी बबीता और गुलत्ता दीदी संडीला से, जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी को, आप और आपके पूरे स्टाफ टीम को
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
1: बाय बाय बाय।
0: सो इस ब्यूटीफुल ट्रैक को एंजॉय कीजिए और ट्यून रखिए 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की अलका जा रही है। फिलहाल इसी प्लेटफॉर्म पर आपसे फिर होगी मुलाकात। टेक केयर एंड बाय बाय।

नमस्कार, रात के 8 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित देश भर से जुड़े लोगों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि पूरा विश्व आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदले। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत हुई है। ये युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। इस आयोजन के अंतर्गत प्रदेश में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज के 88वें जन्मोत्सव समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि से जुड़े चढ़ावा प्रकरण की एसआईटी जांच को लेकर

संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा गठित एसआईटी पूरी निष्पक्षता से जांच करेगी और दूध का दूध पानी का पानी सामने लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने स्वयं सरकार से जांच कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जांच पूरी होने तक धैर्य और संयम बनाए रखें तथा किसी भी तरह की अफवाह, भ्रामक प्रचार या षड्यंत्र का हिस्सा न बने। महाराजगंज में सुशासन को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 140 करोड़ भारतीयों की निरंतर सेवा के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित जन कल्याण शिविर और विकास प्रदर्शनी के तीसरे दिन आज कलेक्ट्रेट परिसर में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों अगले 3 दिनों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: दोपहर की रुसवाई तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई।

0: गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे।
1: सलोना सजन है और मैं हूँ
0: महफिल गजल आबशार। सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

और आपने जो इंतजार का दरवाजा खोल कर रखा हुआ है, हौले से उसमें दस्तक हो रही है। मैं आया हूं ये कहने, बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, कोई खुशबू मैं लगाऊं तेरी खुशबू आए। मैंने दिन रात खुदा से ये दुआ मांगी थी, कोई आहट ना हो दर पे मेरे और तू आए। 8:04:40 हो चुके हैं। वक्त की बेसुतानों और मोहब्बत में मचलते हुए अरमानों की दास्तान लेकर आपका दोस्त अनवारुल हसन मुखातिब है आपसे। खूबसूरत लफ्जों की रवानी के सफर में बस खूबसूरत सी एक गजल पेश खिदमत है।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

खेलने की आदत तुम्हारी आज तक नहीं गई। खिलौनों के वक्त बीतने के बाद अब तुम सुना है लोगों के दिल से खेलते हो। अक्स कितने उतर गए मुझ में, अक्स कितने उतर गए मुझ में, फिर ना जाने किधर गए मुझ में। मैंने चाहा था जख्म भर जाएं, जख्म ही जख्म भर गए मुझ में। मैं वो पल था जो खा गया सदियां, सब जमाने गुजर गए मुझ में। ये जो मैं हूं जरा सा बाकी हूं, ये जो मैं हूं जरा सा बाकी हूं, वो जो तुम थे वो मर गए मुझ में। मेरे अंदर थी ऐसी तारीकी आके आरोप डर गए मुझ में। पहले उतरा मैं दिल के दरिया में, फिर समंदर उतर गए मुझ में। और फिर जब ऐसी कैफियत आती है अकेले में, बहुत सारी बातें याद आती हैं। याद रह जाएं वो बातें तो कभी कभी उन्हें कागज पर उतार लिया कीजिए। मैंने भी लिखे हैं बहुत सारे खत, और यकीन है कि वो खत, वो वाले खत भी तुम्हें मिल गए होंगे जो आज तक मैंने भेजे नहीं है तुम्हें।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: ये जो दिल है आपका, अगर किसी के दिल में भी उतरना है तो इसका रास्ता आपकी आंखों से होकर जाता है, और यही पहली सीढ़ी है जो सीधे पहुंचा देती है वहीं। और ये दिल बहुत सारी बातों का रास्तार भी होता है। कुछ बातें हम बहुत आसानी से भूल जाते हैं, कह देते हैं, और कुछ बातें छुपा ले जाते हैं। वो आया था हंसी की चमक लिए, आंखों में शरारतें छुपाए, और धीरे धीरे आपके मन में बस गया। लेकिन ये जो

मोहब्बत की दास्तान है। कुछ लोग बहुत आसानी से कह देते हैं और कुछ लोग छुपा लेते हैं। कभी महसूस कीजिए तो आपको उनकी आंखों के, उनके पलकों के जो कोने हैं वहां जुगनू जैसी कोई चमकदार चीज दिखाई पड़ेगी, अगर आप महसूस कर पाए। यानी आंखें जो हर रास को आया कर देती हैं। चलता रहूंगा मैं, कभी ना कभी तो मंजिल मिल ही जाएगी, ये मुसाफिर भी कहता है। और रुकना नहीं है, थमना नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी जो नागवार गुजरती हैं उनको भी गुजर जाने दीजिए। बहुत ज्यादा अगर हम उन्हें अपनी जिंदगी से सीने से लगाकर चलेंगे तो शायद जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। बहुत सारी जिम्मेदारियां भी तो होती हैं साथ में। बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे भी होते हैं जो खुली आंखों से अपनी जिंदगी के ख्वाब देखते हैं और वो ख्वाब कहीं ना कहीं हमसे वाबस्ता होते हैं। तो फिर सिर्फ गम नहीं है जिंदगी में, बहुत सारी खुशियां भी हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, और उन्हीं को हम लेकर आगे बढ़ें तो शायद समझदारी इसी में है। ये थकन तो बस एक मोड़ है, आगे रोशनी बुला रही है। चल पड़ो, सफर ही जिंदगी है, रुको मत, बढ़ते जाओ। सफर की थकन कैसी भी हो कहीं ठहरना नहीं है। तुम्हारी दीद की खातिर मेरी आंखें तरसती हैं कि जब बादल बरसते हैं आंखों से ही, और कभी कभी कुछ बादल आपकी आंखों से ऐसे ही बरसते हैं जो बहुत सारी चीजों को सुकून की तरह से सुकून पहुंचा देते हैं। तुम्हारे शहर का बादल अक्सर वैसे ही मेरी आंखों से बरस जाता है। 8:28 हो चुके हैं, 29 हो गए हैं। आप आबशार सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर अपने दोस्त अनवारुल हसन के साथ।

गैरों से मत कहना मन की बात, मुझसे कहना, मुझसे कह देना और उससे कह देना जिसकी वो बात है। अक्सर मन में बहुत सारी बातें आती हैं, कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते सही वक्त पर, और फिर उम्र भर पछताते हैं। कभी कभी किसी को जाते हुए देखते हैं, आवाज नहीं दे पाते, मन तो करता है कि कह दें, बुला लें, रोक लें। शायद यही गलती हो जाती है हमसे उस वक्त सोचने की जब हम फौरन फैसला नहीं कर पाते। अगर कर लेते

ना किसी और से, मेरे कंधे पर सर रखकर मुझे सुना देना तुम्हारी आहें, तुम्हारी फरियादें, सब कुछ। जिंदगी की इस भागदौड़ में कई साए हैं जो बस सुनते हैं लेकिन समझते नहीं, लेकिन मैं वो हूं जो तुम्हारी हर बात को दिल में समेट लूंगा बिना उसको जज किए। तो फिर जब वक्त मिले, थोड़ा सा वक्त मिले, तो बस जो भी बात है तुम्हारे जहन में मुझसे कह देना, गैरों से मत कहना।

0: गजल। ये लखनऊ है जनाब,
1: हाईटेक मॉल स्ट्रीट फूड 1090 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो।
0: जी और रेनबो पर इस वक्त आबशार और बस इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, क्योंकि हम थोड़ी देर में आपको समाचार के लिए दिल्ली ले चलेंगे और उसके बाद भी ये सफर जारी रहेगा मेरे साथ। जैसे ही बजेगा 9 पॉप टाइम की महफिल सजेगी और रात 10 बजे देर तक और दूर तक हम चलेंगे आपके साथ। तो फिलहाल इजाजत दीजिए अपने दोस्त अनवारुल हसन को, लौटते हैं थोड़ी देर।

पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित, बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधान

0: विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
0: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूरदराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy,
4: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
3: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला

0: 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
2: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
1: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
3: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
5: This is the country. यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
0: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित

0: गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agreed to ceasefire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Ae-yeon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said, India is set to lead from the front. Mr. Modi said, India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come.
2: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़े।

0: 8 states of the Northeast are writing a new story of development. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
1: The National Testing Agency, NTA, today said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled for the upcoming Sunday. In a statement, the NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. On to sports. In badminton, India's Ashmita Chaliha stormed into the women's singles semi-finals in the Macau Open in China today. Ashmita secured her place in the last four with a straight game victory over South Korea's Kim Min-sun 21-16, 21-18 in the quarterfinals. She will next face South Korea's Park Hae-yeon in the semi-finals tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agree to ceasefire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Hae-yeon in women's singles semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. That is all in the news at 9. Good night.
2: गौस मोहम्मद अंसारी और साथ में जो आपने एक छोटा सा एक क्लिप भेजा हुआ है जिसमें डांस हो रहा है, आहा क्या डांस है, हम ही अकेले देख पा रहे हैं और मजा कर पा रहे हैं, क्या पैर चला है इन्होंने, मगर सबको दिखाइए ना आप, सबने अपनी मन की आंखों से देख लिया होगा। बाबू अंसारी के साथ ये खास बात है कि जब ये बेल करते हैं ना तो इस तरह की भी चीज़ें हमको जो है जिप फाइल होती है वो भेज देते हैं, तो वो चलती हुई दिखाई पड़ती है, नाचती हुई, गाती हुई, गुनगुनाती हुई, तो कभी कभी मज़ा आ जाता है इनके मेल को पढ़कर। वकील अहमद साहब का भी मेल है, अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, पॉप टाइम अच्छा लग रहा है, गाने अच्छे बज रहे हैं। और ये मेल हमारे पास आया है कटका हथौरी ज़िला सीतापुर से। रिंकी पिंकी लिखना था कि खुश हैं तेरे बगैर भी हम यहाँ, मैं समझ नहीं पाया इसको। रिंकी पिंकी लिखना था कि खुश हैं तेरे बगैर भी है यहाँ हम, मगर कमबख्त आंसू है कि कलम से पहले ही चल दिए और हमारे यहाँ गर्मी बहुत हो रही है। इन्होंने ये हमें बड़ी अच्छी जानकारी दी, ये किसी को पता नहीं था। चलिए ऐसी जानकारी आपके पास भी हो तो ज़रूर बताइएगा हमें। कमल पांडे आपको भी पसंद, फिर एक गाना हम पहुँचाएंगे। अनवार हसन सर जी नमस्कार, मैं कमल शंकर पांडे ग्राम मोहल्या कला चौराहा जिला सीतापुर से मेल कर रहा हूँ। मैं कार्यक्रम पॉप टाइम में शामिल हो चुका हूँ और बजने वाले गीतों का पूरी तरह से आनंद ले रहा हूँ। कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत पसंद आ रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है, अब हम भेज रहे हैं। थोड़ा सा सोलो आपको जरूर लगेगा, लेकिन सोनू निगम जी की आवाज़ आय है कमाल कर देती है, दीवाना कर देती है।

जी, और अगर आपका भी हाल कभी कभी ऐसा ही हो जाए दीवानों जैसा, तो फिर आप रजनीगंधा जरूर सुना करिए, और मेरे साथ अगर रहिए तो फिर आप 11 बजे के बाद आ जाइए, आराम से 12 बजे तक आप ही की मन की बात करेंगे फिर हम। 9:22 हो चुके हैं, आप अनवारुल हसन के साथ हैं और पॉप टाइम सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर। और इस वक्त जो मेल मेरे सामने खुला है बड़ा कलरफुल है, इसको पढ़ने में अच्छा भी लगता है, बड़ा आराम से दिख जाता है, चश्मा चश्मा भी नहीं ठीक करना पड़ता हमको, पता है ऐसा मेल जब सामने आता है। तो ये रोशनी रावत जी आपका मेल है, और चाय की प्याली भी है, चाय की जो है केटली भी है, और बड़े अच्छे फूल भी हैं, शायद रजनीगंधा वाले आपने भेज रखे हैं, और मुस्कुराते हुए कुछ इमोजीज भी हैं। नमस्ते रिस्पेक्टेड अनवारुल सर जी, आप कैसे हैं? प्रोग्राम आबशार आपको अच्छा लगा, 4 बजे से इंतजार कर रही थी। आपको 4 बजे पता चला, हमको 3:30 बजे पता चला। सर जी एक विनती है आपसे, गुड मॉर्निंग लखनऊ में आइए, हम बता चुके हैं कि हम आते हैं यहाँ से लौट जाते हैं, कोई और बैठा मिलता है यहाँ आने की सीरियस है ना। और अच्छा कुछ लोग, कुछ नाम एक बड़ा खास आपने लिख दिया है कि किसके साथ आइए किसके, देखिए अब जैसा हम लोगों से कहा जाता है ना बस वैसा ही करते हैं है ना। तो जब कहा जाएगा हम सुबह सुबह आ जाएंगे, उस दिन जरा सा जल्दी उठ जाएंगे, आराम लगाएंगे 4 बजे का सुबह का, और 5:15-16 पे हम यहाँ पहुँच जाते हैं। फिर लिख रही कि बहुत दिनों से इंतजार कर रही हूँ, मेरा इंतजार कब खत्म होगा सर जी? पॉप टाइम बहुत अच्छा लग रहा है, गर्दा उड़ाने वाला प्रोग्राम चल रहा है। मेरा नाम रोशनी रावत है, ग्राम वापोत बमना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव से आप सुन रही हैं, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हैं, अच्छा रहती हैं वहाँ पे, ये आप हर बार बता देती हैं। बबीता राव, गुल्फशा से दीदी, नीलू शर्मा दीदी, साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी को भी राधे राधे बोल दीजिए, उन्होंने सुन लिया है राधे राधे, आप सबको जिनको आप कहना चाहती हैं। और ये जब बार बार बताएंगी ना कि आप वहाँ नहीं रहती हैं यहाँ रहती हैं, तो फिर बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा, तो कुछ घर का अपना ख्याल रखिएगा है ना। वैसे ईश्वर करे कि सब कुछ ठीक ठाक रहे, लेकिन बताया नहीं जाता जब कहीं बाहर जाते हैं तो है ना। अजय कुमार जी आपका भी मेल हम तक पहुंचा है। प्रिय आर जी, मेरे अजीज अनवारुल हसन सर जी को प्यारा सा गुड इवनिंग। सर आप कैसे? उम्मीदें बहुत अच्छे होंगे। सर पिछला प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, गजलें बहुत अच्छी लगी। सर आप यूं ही आते रहिए, बहुत उम्मीद रहती है आपको प्रोग्राम में आने की। चलिए आप कह रहे हैं तो हम कल फिर आ जाएंगे है ना, झूठ नहीं बोल रहे हम आपको। प्रोग्राम में आने की जैसी ही सोशल मीडिया पे जानकारी होती है कि आज आप आ रहे हैं सर, बहुत दिल को सुकून मिलता है, बहुत बहुत आभार आपका। और किसी और को भी आपने गुड इवनिंग बोलने के लिए कहा है, तो चलिए उनको भी गुड इवनिंग जिनको आपने कहा है, हम अलग से कल जो है मैसेज कर देंगे धीमे मैसेज, जब कोई नहीं देख रहा होगा घर में हमारे है ना, ऐसे मैसेज चोरीस किए जाते हैं। ठीक है, अब आप समझिए, अपने तक ही रखिएगा इस बात को। सर आप रजनीगंधा स्पेशलिस्ट 12 बजे तक साथ हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है, अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो मुझे मेरे भी हिम्मत बंधी रहती कि चलो कोई है तो जो हमारे साथ सुन रहा है तो डर नहीं लगता है, अकेले नहीं है ये लगता रहता है। मैं अजय कुमार सिंह फतेहनगर सीतापुर से मेल शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका कि आपने हमें लिखा, फिर वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। मोहम्मद आसिफ साहब आपका मेल, काफ़ी देर से आप भी इंतजार कर रहे होंगे, आप 16 मिनट से इंतजार करें, 9:10 पर आपका मेल अब तक पहुँचा था, 9:26 हो रहे हैं। मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद, ये तो कि हम पढ़ चुके हैं आपका एक मेल, आपने दोबारा लिख दिया है तो कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, हैदराबाद से, और हैदराबाद अच्छा है, मैं तेलुगु में लिखूं तो आप पढ़ देंगे? अब हम देखिए, अब इम्तहान नहीं देंगे। हाँ अगर हमें पढ़ने से कुछ हासिल हो, कोई डिग्री मिले तो हम ज़रूर पढ़ेंगे। हाँ तो इसलिए मेरा इम्तहान मत लीजिएगा, हम थोड़ा सा कमज़ोर हैं। तालिब अंसारी साहब का मेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो मेरा ख्याल आपका मेल मैं पढ़ चुका हूँ, और आपने फिर से हमें शायद एक मेल कर दिया है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं ताकि सभी को मौका मिल जाए। वारिस अली खान साहब आपका भी मेल आ चुका है। वारुल भाई को आदाब अर्ज है, तुम खुद उलझ जाओगे मुझे गम देने की चाहत में, मुझ में हौसला बहुत है, मुस्कुरा के निकल जाऊँगा। बहुत अच्छी बात है, तो आप करके बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस शो में आप कमर को थिरकवा रहे हैं। अच्छा, लेकिन रजनीगंधा में सॉन्ग सुनकर दिल जरूर झूमेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। एडवोकेट वारिस अली खान साहब संजय नगर इशबाग से आपने हमें ये मेल किया है, और आप बढ़िया गाड़ी वाड़ी में बैठे चले जा रहे हैं, ये फोटो हमें दिखाई पड़ रही है आपकी। कृष्णकांत सिंह जी आपका भी मेल आया जी। डियर आर जी अनवारुल जी नमस्कार, बड़ा खूबसूरत सा मेल आप भी भेजते हैं, कुछ बोल्ड कर देते हैं, कुछ ऐसे ही रनिंग मैटर लिखा

रहता है, कुछ बहुत सारे प्यारे प्यारे इमोजीज भी हैं, कुछ गिटार भी हैं, और एक सितार भी भेज दीजिएगा और एक तानपुरा भी, रात में रजनीगंधा में हमारे काम आएगा, है ना। पॉप टाइम प्रोग्राम जब भी आप होस्ट करते हैं तो सुनकर आनंद आ जाता है। आप 8 बजे शाम की न्यूज़ पढ़ते हैं तो वैसे पता चल जाता है, अच्छा ये भी नई खबर है कि आज 12 बजे रात्रि तक FM रेनबो लखनऊ प्रसारण सेवा पर सुपरहिट गानों की झड़ी लगने वाली है। सुनते सुनते बड़ी अच्छी नींद आ जाती है, जिससे सुबह हम बहुत रिफ्रेश महसूस करते हैं। ये है हमारे स्वीट FM रेनबो लखनऊ के RJs का मैजिक। बिल्कुल अनवारुल जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। कृष्णकांत सिंह जी ने कैसरगंज बहराइच से जहाँ मिठाई मिलती है वहाँ से हमें ये मेल किया है। अब मुझे लगता है मुझे गाना बजा देना चाहिए, कुछ ज़्यादा लंबा हो रही बातें, और ये वाला बजाएंगे, ये डूबा डूबा डूबा डूबा, और आप इस गाने में डूब जाइए। देखिए ए किससे बजेगा, हम यही भूल गए किससे बजा रहे थे। आ गया गाना, हाँ सही बजाया जाए।

जी, लाल लाल लाल ले आओ आप भी, कुछ 9:32 हमारी जो घड़ी है सामने लगी है ये भी लाल लाल ही है, तो इसीलिए मुझे इस गाना जो है अच्छा लगा। आराधना मिश्रा जी, आपका मेल आ चुका है, काफी लंबा, थोड़े से मेल छोटे लिखा कीजिए, क्योंकि मेल काफी सारे भी हैं, और अगर मेल सारे हम पूरे पूरे पढ़ेंगे तो फिर गाने बहुत कम बजेंगे, ये भी अच्छा नहीं होगा। आराधना मिश्रा पांडे जी ने हमें सृष्टि अपार्टमेंट लखनऊ से ही मेल किया है, और आप बहुत बचपन से, चाइल्डहुड से आप हमें सुन रहे हैं, यानी आप रेनबो को सुन रहे हैं, और विद भारती भी आप लगातार सुनते रही हैं, आपने लिखा है, और आपने कुछ अपनी बातें याद दिलाई हैं कि किस तरीके से लगातार आपका जो संबंध है बहुत पुराना रेडियो के साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और आपने अपने हस्बैंड को डेडिकेट किया है, फिलहाल ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, इसलिए गाना तो कोई ना कोई पहुँचेगा, तो आप मान लीजिएगा कि वही गाना आपके हस्बैंड के लिए हो गया। जितेंद्र नामदेव, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, खनक नामदेव, आरोही नामदेव, सौम्या नामदेव, ये मेल हमारे पास ग्राम व पोस्ट खरौदी जिला शहडोल से आया है, यानी मध्य प्रदेश से आया है, और तबीयत आपकी बड़ी खुश हो गई है प्रोग्राम सुन के, आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आसिफ साहब, आपका हम मेल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए सॉरी, हम इस मेल को हम छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बबीता जी, आपका मेल भी बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा कलरफुल, वैसा ही जैसा कि अभी रोशनी रावत जी का था, वैसे ही आपने भी लिखा है, और एड्रेस लिखा है बेली कला गोसाईगंज लखनऊ से। आपको 8 बजे से सुन रही हूँ, गजलों का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, और पॉप टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। अब उसके बाद इंतजार है रजनीगंधा प्रोग्राम का, वो भी बहुत अच्छा, चलिए अब कैसा होगा वो फिर आपने, चलिए शुक्रिया आपको अगर ऐसा लगता है। आपका प्रोग्राम मम्मी पापा विनीता दी रजनीश भाई महन भाई रोशनी रावत जी नीलू दी गुलफशा अप्पी अहमद नवाब साथ में सुन रहे हैं, हम सब आपके प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो आगे तारीफ लिखी है बबीता जी उसके लिए भी। और विजय सिंह जी, दीपू इटहुआ कैसरगंज बहराई से लिखते हैं, नमस्कार मेरे फेवरेट हंसमुख अनवारुल सर जी, इस समय हम खेत में लेटे धान की नर्सरी की रखवाली कर रहे हैं और आपका आनंद ले रहे हैं प्रोग्राम का। सर जी कैसे हैं आप, और आपके नजर बच्चू जी कहाँ हैं, वो सुबह आते हैं हमारे साथ, आजकल कुछ बातचीत नहीं होती, मेरी तो बातचीत होती रहती है, तो जब सुबह किसी दिन मिलेंगे तो फिर उनकी भी बातचीत आप तक पहुंचाएंगे। महेंद्र दीपन जी, आपका भी मेल हम तक पहुंचा, मैं महेंद्र दीपन, एक पोस्टर खुल गया हमारे सामने, बड़ा खूबसूरत सा, हमारी एक तस्वीर बना के भेजी है, सिर्फ आपके लिए रेनबो कैफे, अब हम क्या कहें, कैसे बाकी लोगों को दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मेहनत की, इतना प्यारा सा हमको मेल किया है, और राजस्थान के नागौर जिले के रूण गांव में आपको सुन रहा हूँ, आपका रेनबो कैफे प्रोग्राम न केवल कानों को सुकून देता है, हालांकि इस वक्त पॉप टाइम आप तक पहुंच रहा है, बल्कि दिन भर की थकान मिटाकर मन को ऊर्जा से भर देता है, आपकी बेहतरीन प्रस्तुति और चुनिंदा गानों का चयन इस प्रोग्राम को धमाकेदार बनाता है, और आपने अपने दोस्त बाबू भाई अंसारी, सुल्तान रजा, रोशनी रावत दीदी और बबीता राव जी को भी, उनको भी दीदी लिखा है आपने, उनके भी लिखा है, एक मेल और जल्दी से पल देते हैं, फिर गाना बजाते हैं। आदाब सर कैसे आप, अहमद नवाब ने ये हमें संगलिया से मेल किया है, आबशार का मतलब मुझे पता था, एक दिन मैंने रेनबो पर बताया भी था, अच्छा इसका मतलब मैंने अपने दादाजी से पूछा था, आप बोलते हैं सर मुआजरा चाहते हैं, मैंने आपसे दादाजी से पूछा था, इसका मतलब माफी होता है, मुझे मीनिंग जानना बहुत अच्छा लगता है, पॉप टाइम अच्छा लग रहा है, गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, रजनीगंधा आपका मेरा फेवरेट है, और जिसका दिल टूटा हो उसका भी वो रजनीगंधा जरूर सुने, दिल के जख्मों पर मरहम का काम करता है आपका रजनीगंधा, अहमद नवाब ने संदीला से हमें ये लिखा है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपका ऐसा लगता है, अगर हम किसी काम आ गए आपके, ये देखिए ये गाना भी आपको अच्छा लगेगा, हालांकि एक बहुत पुराना गाना था जिसका ये रीमेक बाद में बनाया गया, लेकिन चल रहा है मार्केट में, तो आप भी सुनिए।

बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि देखने की चीजें हमारी दिलरुबा, बार बार देखो, हजार बार देखो। तो अगर आप इस तरीके से मेकअप करके इतनी खूबसूरती के साथ आएंगे तो फिर लोग देखेंगे भी, फिर आप कहेंगे मैं शर्माऊंगी। नीलू शर्मा जी का मेल रूपपुर चंदेला से हम तक पहुंचा। अनवारुल सर को मेरा सलाम आदाब कबूलो। आपका कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। यासिर भैया मियांगंज से, गुलफशा दीदी संडीला से, पीहू कानपुर से, वंदना रोशनी बबीता, संदीप भैया, राजेश भैया, ओम भैया, सभी को नमस्कार बोल दीजिएगा। चलिए, सभी लोग जो भी सुन रहे हैं सभी को नमस्कार मैंने भेज दिया है। विकास यादव जी आपका भी मेल हम तक है, और दो मेल क्यों दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, 10 मिनट पहले आपने जो भेजा है हम इसको पढ़ते हैं जो नीचे आपने। अच्छा, आपने दो बार भेज दिया, आपको लगा कि शामिल नहीं होगा। बिल्कुल शामिल होगा, अगर आप मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए तो बिल्कुल ये गारंटी के साथ यकीन रखिए कि आपके सारे मेल पढ़े जाएंगे। नमस्कार, हम विकास यादव आपका प्रोग्राम यूपी के सुल्तानपुर से सुन रहे हैं। हमें भोजपुरी गाने सुनने में मजा आता है, तो कल भोजपुरी हम सुना देंगे आपको, ठीक है। भोजपुरी सॉन्ग का इंतजार कब निकल जाता है यानी ये पता आपको नहीं चलता। बहुत बहुत शुक्रिया हमें लिखने के लिए। बस हाँ, ये जरूर कहेंगे कि आप लोग मेल जो है थोड़ा सा छोटा लिखेंगे तो जल्दी शामिल हो जाएगा और आसानी के साथ हम उसको पढ़ भी पाएंगे। राज कमल यादव जी ने हमें मेल किया है, बरैया शायद जगह का नाम है, ग्राम बरैया पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी। राधे राधे सर जी, कैसे हैं? प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है, हमारे फेवरेट सर जी आए हैं। सर जी आपको भुट्टा भुट्टा कह के ये रुक गए, ये भुट्टा उट्टा खिलाने की बात कर रहे हैं लगता है हमको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, एक मेल और पढ़ देते हैं। पॉप टाइम आज अनवारुल हसन सर जी के साथ, हम सबके अनमोल रतन अनवारुल सर जी को मेरा प्यार भरा सलाम नमस्ते। और कैसी हैं आप, ये हर बार लिखते हैं पता है, खाल मोटी हो गई। अब पॉप टाइम प्रोग्राम बहुत बहुत झनझनुआ चल रहा है, अब हमें बड़ा सीखने को मिलता है आप लोगों से। हनहनुआ सीखा, झनझनुआ सीखा, हपक के सीखा, तो ये आप ही लोगों से हम सीखते हैं। हम आपके साथ पूरे एक दिन यानी अगली तारीख तक रात 12:03 तक रहेंगे। आप अकेले नहीं रहोगे, हम बीच बीच में मेल करते रहेंगे। देखिए मेल तो हम उस वक्त नहीं पढ़ते क्योंकि वो मेल का प्रोग्राम नहीं है, आपको अकेलापन महसूस ना हो। तेज बहादुर यादव, ममता यादव जी ने ये मेल किया है, गाँव मऊ शर्की जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से, पर अभी गुरुग्राम हरियाणा में सुन रहे हैं। चलिए गाना हम आप तक पहुंचाते हैं बढ़िया सा, और ये आ गया।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर।

जी, और अभी नहीं चलेंगे फिलहाल, इस प्रोग्राम से चलेंगे 10 मिनट बाद। मुनेश कुमार राज जी, आपका भी मेल आ चुका है, भानपुर हरोवा जिला लखीमपुर खीरी से आपने, और अनवारुल हसन सर जी को राम राम, राम राम आपको भी। कार्यक्रम रेनबो पॉप टाइम आप सुन रहे हैं और एफएम के दीवाने हैं, और आपकी आवाज से हमें हर कोई जाने है। क्या बात है, थिरकने से पहले ही पसीना पसीना हो रहे हैं, कैसे थिरके। या तो कोई बढ़िया सा भोजपुरी गाना बजा दीजिए, भोजपुरी गाना बजता है आप जब रेनबो कैफे सुनते हैं तो, क्योंकि आज इस वक्त आप पॉप टाइम सुन रहे हैं तो भोजपुरी गाना आपको कल सुनने को जरूर मिलेगा। कल रहिएगा मेरे साथ, नहीं तो बिल्कुल आपको हम सुनवा देंगे। गुलफशा सिद्दीकी, आपका भी मेल आ चुका है, और संडीला से आपने लिखा है, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, इस वक्त मैं अपने मायके में हूँ इसलिए कभी कभी एफएम सुन पाते हैं। और साथ में आपने जिशान खान, रोशनी रावत, बबीता राव, नीलू शर्मा, परवीन साहिबा और हम सब सुन रहे हैं आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही रेनबो के साथ बने रहिए। अरविंद कुमार जी, आपका भी मेल है, आपने शानदार प्रस्तुति के लिए धन्यवाद कहा, और एक से एक बढ़कर हिट गाने आपकी, आपका जो मूड है वो डांस और मस्ती वाला हो गया है, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लिया है। अच्छा, मेरा मेल शामिल कर लीजिए भाई, कर लिया आपका मेल हमने। तन्वी तिवारी, प्रतिष्ठा, श्याम कुमारी, दीपा गोविंद, अरविंद दुबे, ग्राम धर्मदेव, जिला मिर्जापुर से आपने हमें ये मेल किया है।

चलिए टाइम कम है तो जल्दी से हम कुछ और मेल पढ़ देते हैं और एक गाना भी आप तक बजा देते हैं क्योंकि फिर लौट कर आना भी है। अरविंद कुमार दुबे जी का मेल हम तक पहुंच चुका है और मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से आपने हमें ये मेल किया है, इसके लिए शुक्रिया। राजकमल यादव जी, आपका भी मेल संगीता यादव ग्राम बरैया पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी से आपने लिखा है। नमस्कार सर जी, प्रणाम, कैसे हैं? आपकी नियमित श्रोता हूँ सर जी, आम खाने के लिए आपको बुला रहे हैं, आप आइए। अच्छा, तो इस पते से पहुँच जाएंगे हम। हमारे साथ राजकमल यादव जी भी हैं, चलिए शुक्रिया। राजकमल जी भी अगर रहेंगे तो हम आम जरूर खाएंगे। जावेद अख्तर साहब, आपका भी मेल हम तक पहुंचा और आपने हमें ये मेल रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से लिखा है। शमशुर कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा और शाहीन, और प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा और गानों का इंतखाब कमाल का है, बस इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है कि वक्त कम है तो अगर अभी आपने मेल नहीं लिखा है तो प्लीज़ अब मत लिखिएगा क्योंकि फिर बेकार जाएगा, फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे, फिर आप शिकायत करेंगे कि भैया हमारा मेल नहीं पढ़ा जाता है। तो बस मेल ज़रूर पढ़ा जाता है। रजनीगंधा की खुशबू बहकाने के लिए 10 बजे हम फिर वापस लौटेंगे समाचारों के बाद, और फिलहाल हम पॉप टाइम से आपसे हम इजाज़त मांगते हैं तो बढ़िया सा एक गाना आप तक पहुंचा देते हैं और फिर वापस लौटेंगे। तो बस बाय बाय, टेक केयर।

नमस्कार, रात के 10 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री एवं गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी मंत्री बृजेश सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। वे आज जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था, राजस्व तथा मुख्यमंत्री के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में प्रभारी मंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए निवास, आय और जाति प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान आयुष्मान भारत योजना, गोल्डन कार्ड, टीकाकरण, एम्बुलेंस सेवाओं और स्वास्थ्य संस्थानों की सुविधाओं का जायजा लिया गया। जनपद बदायूं के डाइट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने बाल विकास एवं पोषण कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर उनके सुखद व सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। विभिन्न जल कल्याणकारी व लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सभी पात्रों को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कार दिए हैं, उनका हमें अनुसरण करना चाहिए और अपने रीति रिवाज को पूरे हर्ष के साथ मनाना चाहिए। गोरखपुर एयरपोर्ट पर आज उस समय उत्साह का माहौल देखने को मिला जब इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर सुनीत जाधव के आगमन पर उनका भव्य और यादगार स्वागत किया गया। JJID कोड के डायरेक्टर एवं फिटनेस गुरु ई मास खान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में फिटनेस प्रेमियों, युवाओं और समर्थकों ने एयरपोर्ट पहुंचकर उनका जोरदार अभिनंदन किया। सुनीत जाधव के एयरपोर्ट पहुंचते ही उनके समर्थकों ने फूल मालाओं से लादकर और जोरदार नारों के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान पूरे परिसर में उत्साह और जोश का माहौल बना रहा। बलरामपुर में मुहर्रम सहित आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं आपसी भाईचारे के साथ संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन एवं पुलिस अधीक्षक विकास कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि सभी त्योहारों को आपसी प्रेम, भाईचारे एवं शांति के साथ मनाएं तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

भला जब्त की भी कोई इंतहा है, कहां तक तबीयत को अपनी संभालें, कभी हौसले दिल के हम भी निकालें, इधर आओ तुमको गले से लगा लें। वक्त की चौखट पर फिर रोशन हो रहे हैं उम्मीदों के चिराग, सुरमई शाम के आगोश में जवां हो उठा है मोहब्बत का जुनून, और मोहब्बत में भीग कर कहीं ना कहीं फिर से धरती पर उतर रही है एक और जानी पहचानी रात। रजनीगंधा के आंगन में जज्बात की शमा रोशन करने का वक्त और ये जिम्मेदारी आज आपके दोस्त अनवारुल हसन के पास है। तो बस स्वागत करते हम आप सबका इस सफर में। नमस्कार।

आबाद लाखों जहां मेरे दिल में है, आबाद लाखों जहां मेरे दिल में, रहो तो रहो जाविदा मेरे दिल में, उतरती है धीरे से रातों की चुप में, तेरे रूप की कहकशां मेरे दिल में।

जागते भी हैं और दिल भी धड़कता है अक्सर, जोर जोर से, बार बार, घड़ी घड़ी, क्योंकि ये दिल बेकरार हो जाता है जब भी वो नजर आते हैं। मोहब्बत का एक नया एहसास जैसे जाग उठता है, तुम्हारा नाम महसूस होता है हर बार, हर धड़कन में, हर धड़कन जैसे एक नई दास्तान बुन रही हो। ये इश्क, ये बेइंतहा तमन्ना, सब कुछ बस तुम्हारे लिए है। मेरे दिल की ये धड़कन, ये रवानी बस तुम्हारी यादों की महफिल में कहीं ना कहीं मौजूद रहती है, गुजर जाती है चुपके से। और मोहब्बत में दिल धड़कता है बार बार, क्योंकि आप नहीं कर पाते हैं मोहब्बत का इजहार। तो क्यों नहीं कह देते मन की ये बात उनके सामने है।

0: कर पाला।
1: मोहब्बत तो इतनी शिद्दत से है तुमने जो हमसे की, लेकिन कभी कभी लगता है ये सच में है या बस कुछ ख्वाब की तरह तो नहीं होगा, या यह हकीकत है या ख्वाब। कभी कभी हम समझ नहीं पाते, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे साथ, क्योंकि किसी की मुस्कुराहट में कभी कभी कई राज भी होते हैं। हर सन्नाटे में कोई आवाज होना

मुझे और भी तन्हा कर देता है। तुम्हारी आंखों में उतर कर देखता हूं तो लगता है दुनिया है यहां, लेकिन कभी हाथ बढ़ाऊं तो लगता है कि पानी की बुलबुली की तरह टूट तो नहीं जाएगी। कहां से शुरू होता है ये इम्तिहान, ये चाहते हैं, ये ख्वाहिशें, किस मोड़ पर ये हकीकतें बदल जाती हैं पता नहीं चलता। और इसीलिए मैं हर रोज तुम्हारे नाम की दुआ करता हूं, मगर दुआ कहीं कोई दास्तान ना बन जाए, कोई जज्बात टूट कर फिर खामोश ना हो जाए। ये भी डर लगता है, शायद तुम किसी सुबह की किरण की तरह हो, मेरे ख्वाबों में उतरते उतरते कुछ सच्चाई की तरह, एक रोशन ख्याल की तरह, या फिर वो साए की तरह जो मेरे साथ हमेशा चलता है। तुम्हें पहचानना चाहता हूं दिल की गहराई से रूह के सुकून तक, और हर बार जब नजरें उठाता हूं तो कभी कभी लगता है तुम कहीं गुम हो जाती हो, और फिर मुझे यही लगता है कि जैसे मैं अभी भी जान नहीं पाया कि ये ख्वाब है या सच में कोई हकीकत।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: भर लो जी भर लो, आज कितने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज कितने रोका है।

छुप के तकते हो क्यों सामने आओ जी, छुप के तकते हो क्यों सामने आओ जी, हम तुम्हारे हैं हमसे ना शर्माओ जी। ये ना समझो कि हमको खबर कुछ नहीं, सब उधर ही उधर है इधर कुछ नहीं। कहते भी है कि मोहब्बत में आग दोनों तरफ बराबर की लगी होती है। मौसम कोई भी हो आपको बाहर ही दिखाई पड़ती है, हर तरफ फूलों की रंगत जैसे बिखर गई हो, तो बस हर पत्ता पत्ता सरसराहट करता है और आपको लगता है कि बस वो आ गया जिसका इंतजार था। ये सब बताता है कि इश्क की उम्र भी जवान है, तरोताजा है, नशीली भी है। तो देखिए ना वो गुलाब की कली जो कल तक झुकी हुई थी आज सर उठाए खड़ी है। ठीक वैसे ही जैसे मोहब्बत का घूंघट हटते ही चेहरा चमक उठता है, ये दिल की धड़कनें ये आंखों की नमी सब कुछ कह रही है। और ये कह रही है कि शायद आपको इश्क हो गया है और इसीलिए आपका दिल पुकार रहा है पिया पिया। 10:35:37 मोहब्बत की इसी झंकार को आप महसूस कर रहे हैं रजनीगंधा में आज अनवारुल हसन के साथ।

0: गुम्बद ओ मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचा ओ बाजार नहीं।
0: मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।

जवानी मांगती थी ये हंसी झंकार बरसों से, तमन्ना बुन रही थी धड़कनों के हार बरसों से। जवानी सो रही थी हुस्न की रंगी पनाहों में, चुरा लाए हैं हम उनके नाजनी जलवे निगाहों में। और फिर कभी कभी एक सवाल भी, एक और सवाल कि जिसकी पलकें मेरी आंखों में झुकी रहती हैं, तुम वही मेरी ख्वाबों की परी हो के नहीं, कहीं पहले की तरह फिर तो ना खो जाओगी, जो हमेशा के लिए हो वो खुशी हो के नहीं। और अगर जवाब हां में होता है तो भी एक सवाल कुछ इस तरह,

आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

देखकर तुमको किसी रात की याद आती है, देखकर तुमको किसी रात की याद आती है, एक खामोश मुलाकात की याद आती है। जहन में हुस्न की ठंडक का असर जागता है, आँच देती हुई फिर रात की याद आती है।

ऐसी ही खामोशी होती है कभी कभी, और ऐसी खामोशी में अपनी धड़कनें अक्सर साफ साफ सुनाई देती हैं। ये धड़कनें क्यों गिनने लगते हैं हम अकेले में? शायद तब जब कांच की तरह बिखर कर रह गए हों किसी के ख्वाब। फिर याद आते हैं वादे भी, और बहुत सी यादें भी, और वादों को अगर वक्त रहते नहीं सहेजा जाता तो फिर उनकी मियाद खत्म हो जाती है और उम्र भर पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। और फिर क्या होता है? समाचारों के बाद लौटेंगे तो बताएंगे आपको। 10:56 हो चुके हैं रात के। अगर आपको नींद आ रही हो तो आप सो जाइए। रजनीगंधा का यह सफर जारी रहेगा आपके दोस्त अनवारुल हसन के साथ अभी एक घंटा और।